0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

एक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानोल

0: भेजा जा रहा है। दो नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित अंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: जालिम लोशन दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
3: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
4: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
3: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजैक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कोरियरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
5: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इसराइल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इसराइल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इसराइल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
6: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
7: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिंदुस्तान ने लिखा है इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्या बेंजामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है। भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है। गुजरात के मेहसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi today. Union Minister Sarbanand Sonowal to flag off first international cargo voyage from Dibrugarh in Assam this morning. IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed comprehensive economic partnership agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Parmelin will be on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Prime Minister Modi and President Parmelin will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Parmelin will meet President Draupadi Murmu this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will also call on President Parmelin. More from our correspondent.
11: Earlier in February this year, the Swiss president visited India to participate in the AI Impact Summit in New Delhi. The visit assumes added significance in view of his participation in the second India EFTA Prosperity Summit on 7th of this month to mark the first anniversary of the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement coming into force. Among EFTA countries, Switzerland is the largest trade and investment partner of India. India and Switzerland share long-standing friendly relations. This visit will further strengthen bilateral relations, building upon the regular high-level exchanges and deepen cooperation in new areas of mutual interest. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
10: In Assam, Union Minister of

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुरादाबाद, आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, वार्म वेलकम करेंगे आप सभी का। ब्रांड न्यू मंडे है, एक नई सुबह है। और अगर बात करें तारीख की, तो आज 5 अक्टूबर की तारीख है। बहुत ही स्पेशल तारीख है, बहुत कुछ स्पेशल है आज की तारीख में। क्या कुछ खास है आज तारीख में, ये 5 अक्टूबर को, सब कुछ आपको पता लगेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन में। फिलहाल हो गई मेरी ग्रैंड एंट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग कहते हैं हर सुबह का। सूरज सिर्फ उम्मीद नहीं लेकर आता है, अपने आपके सपनों को पूरा करने की पूरी पूरी वो कोशिश भी करता है, लेकिन बस ट्राई आपको करना है, मशक्कत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। जब तक आप वो नहीं करोगे, तब तक हर दिन के सूरज भी कुछ नहीं करेगा, वो डेली निकलता रहेगा, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे अगर आप लगातार कुछ नया और बेहतरीन करने का प्रयास नहीं करोगे। दोस्तों, कहते हैं ना, हर चीज असंभव को संभव बना सकती है, वो है आपकी प्यारी सी सोच और आपकी मुस्कान। हाँ जी, चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लाइफ में कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, अगर आपके पास एक सही पॉजिटिविटी वाला एटीट्यूड है एंड अगर आपके पास एक सही मुस्कान है पॉजिटिविटी वाली, तो यकीन मानिए आप हर एक प्रॉब्लम को ऐसे फेस कर जाओगे ना जूम करके। चलिए जी, आज के सफर की शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन ट्रैक के साथ। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। अभी थोड़ी देर में लौट कर आएंगे, तो आपसे ढेर सारी बातचीत करने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बस अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे, आपसे ढेर सारी बात करेंगे एंड आज के सफर की एक बेहतरीन शुरुआत करेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह 8968968965। एक बेहद ही अमेजिंग गाने से कर रहे हैं आज के सफर की शुरुआत, कुमार शानू अलका याग्निक की युगल आवाजों में। इस गाने को सुनते हैं और आगे बढ़ेंगे जी आज की मॉर्निंग। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, स्टे ट्यून्ड।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

जिंदगी में आपको बहुत सारी लाइफ में ना ऐसे ऐसे पड़ाव देखने को मिलेंगे जब आपको लगेगा यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बट मेरी लाइफ में ऐसे तोते क्यों लग रहे हैं भाई, बट ऐसा एक्चुअली क्यों होता है मैं बताता हूँ। वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, कैसे हालचाल, आप सुन रहे हैं आपके रेडियो वाले दोस्त आनंद को। वक्त हुआ है 8:35 और ये लो 56 सेकंड, अब हो गए 8:36। कोई बात नहीं जी, 5 अक्टूबर की ब्रांड न्यू मॉर्निंग, एक अमेजिंग सुबह है, ताजगी से भरी सुबह है। और मैं आपको बता रहा था यार, देखो लाइफ में ना कभी कभी जब हमारी जिंदगी में बुरा समय आता है ना, तो हमें सही और गलत का पता लगता है। ये आप सभी जानते हैं, बखूबी जानते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग कोई कहावत बनाकर गए हैं, तो वो कोई हवा हवाई बातें नहीं है। और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि यार लाइफ में जब आपकी जिंदगी में कोई डाउनफॉल आता है, तो आपको ना अच्छे बुरे की पहचान बड़े अच्छे से हो जाती है। और कहते हैं ना, कभी कभी अकल बादाम खाने से नहीं, आपको सच में उस सिचुएशन में जाने के बाद आती है जो एक्चुअली आप कभी सोच भी नहीं पाते, कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और कभी कभी ऊपर वाला कहते हैं ना, जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है ऊपर वाले का, उस कायनात का, उस खुदा का। तो इसीलिए लाइफ में अगर कोई भी दिक्कत चल रही, कोई भी परेशानी चल रही, तो बस देखिए दुनिया कुछ बोले ना बोले, दुनिया साथ देना थे, आपको अपने आप पे यकीन रखना है, अपने उस खुदा पर, उस यूनिवर्स पे भरोसा रखना है जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, और अपनी चीजों को जो है सही ढंग से करना है, और बस अपने आप में जो है ना आपने अच्छा करते चले जाना है। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, अगर आपने कभी किसी की लाइफ में गलत नहीं किया ना भाई, अपनी जिंदगी में अगर आपने किसी के लिए कभी गलत नहीं सोचा है या नहीं किया है, तो यकीन मानना प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन वो कैसे छू मंतर होकर चली जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं आपको 100% सच बता रहा हूं। बाकी तो यार देखो क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, चार लोग ये वो सब लाइफ में आते जाते रहते हैं, बस आप मस्त रहो, झकास रहो, खुश रहो और आगे ऐसे ही बढ़ते रहो। जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक है ना, हम इंसान ही AI नहीं, प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, लेकिन उन्हें डील कैसे करना है, सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उस पर भी बात करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ 9837896896 पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सुबह मेरे पास एक बड़ा, बहुत ही बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, थोड़ी देर में भी लौट के आऊंगा तो बात करूंगा आपसे इस क्वेश्चन के बारे में। एंड फिलहाल आपकी मैसेज जरा इमीडिएटली पढ़ लेता हूँ। हाय गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है, माय नेम इज फारूक। हाय फारूक, गुड मॉर्निंग। एक मैसेज आया है, आनंद भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ एंड सुन रहा हूँ आपका शो, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू मेरे भाई। एक मैसेज और पहुंच गया मेरे पास, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है, रामपुर दोराहा से हूँ मैं एंड इस वक्त अपनी डेस्टिनी पे जा रहा हूँ। हाय माय नेम इज शुवेब, गुड मॉर्निंग भाई। एक मैसेज आया, हाय माय नेम इज लतिका, आई एम फ्रॉम गायत्री नगर, हाउ यू आरजे आनंद, क्या हालचाल, आपकी आवाज अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच यार। मतलब जो खुद अच्छे होते हैं उन्होंने हर चीज अच्छी लगती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार। हेलो आरजे, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल है, वेरी गुड मॉर्निंग जी, ये लिखती है रेडियो वाले आनंद को प्यारी सी गुड मॉर्निंग, और रेडियो वाले आनंद की आवाज सच में बड़ी प्यारी है, अयो जी ये मेरे को पता नहीं था वैसे, वेल थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए एंड बहुत बहुत धन्यवाद यार। एक मैसेज और पहुंचा है मेरे पास सुमन का, इन्होंने मेरे को लिखा है, सर सुबह सुबह बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप एक सही सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो लाइफ आपको बहुत कुछ देती है, आई एग्री विद यू। एंड मुझे लगता है कि लाइफ में ना हमेशा अच्छा सोचने का, लाइफ में बुरा सोचना ही नहीं है, और देखो यार बुरा सोचने के लिए दुनिया पड़ी है, आप अपने लिए प्लीज अच्छा सोचो, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। और मैं कह रहा हूं जब आप खुद के लिए अच्छा सोचोगे ना, तो यकीन मानो सब बहुत ही अच्छा होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा, आने वाला बेहतरीन गाना अलका याग्निक एंड उदित साहब की बेहतरीन आवाजों में। ओए होए, आप कहीं मजाई रेडियो की

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क. यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल. तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद.
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें. श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है. मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन. आज ही अपॉइंटमेंट ले. श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद. कॉल करें 7060002430.
4: यार, सोना कितना महंगा हो गया है. काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता.
5: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए.
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना. पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर. 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर. किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी. 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस. उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक. आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद. कॉल करें 7055070552.
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना.
7: अरे भैया, नाचना है.

0: तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
2: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
0: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पर आज के दिन के बारे में बताने वाला हूँ। आज का दिन क्यों खास है, क्या स्पेशल है, इस विषय में बात करेंगे थोड़ी सी देर में। लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही बढ़िया गाना आपकी सुबह को थोड़ा सा फैबुलस बनाएगा। देखो मॉर्निंग में ना आप उनको डोज चाहिए होता है यार, आप उनको ना थोड़ा पॉजिटिव डोज चाहिए बाबा, इसीलिए मैंने सुखविंदर सिंह की आवाज में

यार एक बात तो सच है, जो बॉलीवुड वाले गा सकते हैं ना वो अपुन नहीं गा सकते हैं। मतलब हर किसी का काम हर कोई नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। सुनिधि चौहान सुखविंदर सिंह की आवाज एंजॉय कर रहे हैं आनंद के साथ।

सुबह सुबह यार ऐसे गाने सच में अगर सुनने को मिल जाए तो किसका मंडे अमेजिंग नहीं होगा भाई। गुड मॉर्निंग, चलो जी जो बनठन की सुबह सुबह जा रही है बहुत अच्छी बात है। देखो भाई बनडे की सुबह है और जब आप बनठन की जाती हो तो एक अलग ही पॉजिटिविटी वाली वाइब आती है। आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा जी आप जहां भी जा रहे हैं बनठन के जाओ क्योंकि उसकी बात ही अलग होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। शो का नाम बताओ जरा भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। आज 5 अक्टूबर को क्या खास है उस पे हम एक नजर डालेंगे। वक्त हुआ है 8:51। हमने आपको शुद्ध हिंदी में बताया, अब आप रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा लो यार। चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। देखिए 5 अक्टूबर का दिन देश और दुनिया के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं की उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। लेकिन आज की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आपको बताता आपको जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ आज के दिन से जुड़ी हुई, जो आज के दिन को थोड़ा सा अलग बना देती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ हुई, देखो श्रोताओं, आज के दिन 1789 में फ्रांस की क्रांति के दौरान पेरिस की महिलाओं ने रोटी की कमी और महंगाई के खिलाफ वसाई की ओर ऐतिहासिक मार्च जो है वो निकाला था। आज के दिन एक नए मतलब एक मोर्चा निकाला था बेसिकली। इसके अलावा आपको बताते चलिए 1962 में प्रसिद्ध फिल्म श्रृंखला जेम ब्रांड्स की पहली फिल्म डोर नो रिलीज हुई थी आज के दिन। एंड आपको बताते चले इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट डेज है वो ये है कि भैया विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। दुनिया भर में शिक्षकों के योगदान और उनके सम्मान को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एग्जैक्टली विश्व, ये वो वाला नहीं जो हमने सेलिब्रेट किया 5 वाला, ये है वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है, समझ गए जी आप। बाकी आज के दिन और क्या कुछ खास रहा है इतिहास के पन्नों में, कौन कौन से महान कलाकारों ने जन्म लिया है और अपना कंट्रीब्यूशन देके कुछ नया और अलग किया है, उन पे भी एक नजर डालेंगे हम।

आपको पता है आज के दिन एक बहुत खास चीज हुई थी श्रोताओं, सन 2005 में आज के दिन खुश मिजाजी में भारत चौथे नंबर पर जो है शामिल हुआ था। एग्जैक्टली आज का वो दिन था 5 अक्टूबर, जब आज के दिन एक नई रिसर्च हुई थी, इसमें सन 2005 में खुश मिजाजी में भारत अपने चौथे नंबर पर था। मतलब कैन यू इमेजिन कि आज अगर हम भारत का आंकड़ा चेक करेंगे तो आई डोंट नो कितने नंबर पे होगा, क्योंकि आजकल तो फेक खुश ज्यादा रहते हैं, लोग रियलिटी में कम खुश रहते हैं और रील की दुनिया में ज्यादा खुश दिखते हैं लोग। बात कर लेते हैं आज के दिन जन्मे कुछ खास लोगों की, तो सबसे पहले मधुमती जी का नाम आता है जो पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी है, 1964 में जन्म हुआ था इनका श्रोताओं आज ही के दिन। और आपको बताते चलें आज ही के दिन जो है सिक्किम के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री थे नर बहादुर भंडारी, सन 1940 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। और इसके अलावा आपको एक और खास नाम के बारे में बता दें, किशोरी लाल जी का जन्म हुआ था आज के दिन। जी हाँ, समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी थे, सन 1890 में जन्म हुआ था श्रोताओं आज ही के दिन। और एक ऐसा नाम जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, जिनका नाम है रानी दुर्गावती, भारतीय ऐतिहासिक की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रही ये, सन 1524 को जन्म हुआ था इनका। जी हाँ श्रोताओं, आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ट्यून इन रहिएगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ ढेर सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं। और अभी अगले घंटे में आपको लेकर चलेंगे, कुछ खास बातों से रूबरू कराएंगे आज के दिन के बारे में। बाकी आप कुछ भी कहना चाहते हो, व्हाटएवर, आप मुझे मैसेज करो, वॉइस नोट करो, या आप मुझे इंस्टेंट व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कहां जा रहे हो, आप जो भी करो, व्हाटएवर, आप मुझे मैसेज करो, मैं एक सवाल लेकर आता हूं फटाफट से इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही सुनते रहो आनंद को, और बढ़िया बढ़िया गानों के लिए, अच्छी अच्छी बातों के लिए प्लीज कीप लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिलहाल एक खूबसूरत गाना मैं आपके रेडियो पे निकाल रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है, एंड आई डोंट नो क्यों ये गाना, मुझे नहीं, आप सभी को भी बहुत पसंद होगा डेफिनेटली, बिकॉज इस गाने की वाइब ही कुछ अलग है। यू नो SR खान एंड मलाइका अरोड़ा, गाना एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है यार, काफ़ी फेवरेट गाना है ये। और ऑफकोर्स आपने इसको कितनी बार सुना है मुझे नहीं पता है, लेकिन सच में यार जो इस गाने में बात है ना, वो इसकी वाइब ही अलग है यार, इस गाने को बहुत ही डिफरेंट बना देती है ये जो गाना है सच में। अब आप सोच रहे हो आनंद जी जैसे गाने की तारीफ तो कर रहे हैं, बेटे गाना तो चला दे, कौन सी गाने की बात कर रहा है तू, हाँ इतनी देर से बोले तो जा रहे हैं लेकिन गाना नहीं बजा रहा है। तो चलो जी, अब बिना किसी देरी के मैं आपको ये गाना सुनवा देता हूँ, मैं कौन सी गाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो 3, 2, 1 गो स्टार्ट, शुरू करते हैं इस गाने को, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, एंड चलो बात एक गाने शुरू। अरे भाई मैं वो गाना, भाई मैं गाना ढूंढने चला गया था, मिल गया मेरे को गाना। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहो, आप बिल्कुल ट्यून इन रहो, समझ गया ना। सपना अवस्थी की आवाज, साथ में सुखविंदर सिंह देंगे साथ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
6: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: था मेरी कसम,
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय,
9: बिंदास मॉर्निंग
6: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
10: सोमवार है और आपकी मॉर्निंग को रिचार्ज करने के लिए अच्छे अच्छे गानों के साथ अच्छी अच्छी बातें लेकर आता हूँ। ये ब्रांड न्यू मंडे मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग, आनंद के साथ हैं आप। हाय, कैसे हाल चाल है? यू आर लिस्निंग टू FM मुरादाबाद 89.6 विद मी, जहां ढेर सारी बातें होती हैं। आपका कम्युनिटी रेडियो है, आप अपने योगा सेशन से आ रहे हो या जा रहे हो, सीरियसली आई डोंट नो, बट आप जहां भी जा

ऑल द बेस्ट यार। चलो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अभी आज जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वर्ल्ड टीचर डे भी आज हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। इसके अलावा अक्टूबर का आज 5 अक्टूबर ये क्यों खास है, मुरादाबाद में क्या स्पेशल हो रहा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आज की सुबह मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटा सा सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास कभी तो ढेर सारे कपड़े होते हैं, कभी कभी ढेर सारे कपड़े होते हैं, लेकिन कभी तो एक भी नहीं होता है यार, मैं क्या बताऊं। और कभी कभी इनके पास इतने सारे कपड़े होते हैं कि इनको खुद को भी नहीं पता होता है कपड़े कहाँ रखें, किधर रखें, वो कौन सी चीज़ है। आप दिमाग सोचो, दिमाग पे जोर डालो, प्रेशर डालो, मेरे को बताओ ज़रा। सुबह सुबह मैसेज करके मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है आपने ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास कभी कभी तो बहुत सारे कपड़े होते हैं और कभी कभी बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते। मैम आप गाड़ी चला रही है, हाँ थोड़ी स्पीड हल्की रखो ना, सीट बेल्ट लगा ली आपने, वेरी गुड। यही मैं सोच रहा था कि इतनी स्पीड में क्यों भाग रही हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे मुस्कुराते रहिए और बाकी जिन लोगों को समझ में आ गया वो जरूर मुझे मैसेज करते रहिए साइड में 9837896896 पे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, अगेन रिपीट कर रहा हूँ नंबर 9837896896 नंबर पे आपको मेरे को मैसेज करने का और मेरे को बताने का जी जो अभी मैं आपसे पूछ रहा लाइक सवाल कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास कभी तो ढेर सारे कपड़े होते हैं और कभी उसके पास कपड़े नहीं होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है तो जल्दी से बताइएगा, मतलब जल्दी ही बताइएगा। अगर आप देर कर दोगे ना फिर कोई और आएगा और मौका जीत कर ले जाएगा, फिर आप मत कहना कि आनंद जी देखिए आपने हमको विनर नहीं बनाया, हमको नहीं जिताया। ये एक था टाइगर, अरे बाबा पिक्चर का नाम ले रहा हूं मैं, कुछ भी कोई कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको आने वाले गाना उसकी बात कर रहा हूँ ब्रॉस। चलो जी एंजॉय करेंगे इस गाने को मेरे साथ, एक था टाइगर मूवी से, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक, म्यूजिक साजिद वादिद का, बहुत ही खूबसूरत गाना है, सुनेंगे साथ में मेरे। हे व्हाट्सएप करो, इंतजार कर रहा हूँ, इन ट्रैफिक है तो मैसेज करी बताओ। और आप ऐसे स्टे ट्यून रहो आनंद के साथ, आई विल बी राइट बैक, कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ। वेरी गुड मॉर्निंग है जी।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: ऐसे ही हैपनिंग गाने सुनने के लिए, ऐसे ही बढ़िया गाने सुनने के लिए आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आना है जी? एफएम मुरादाबाद 89.6 की फ्रीक्वेंसी पे आना है, जहां ढेर सारी बातें होती हैं दिल से दिल तक। वेरी गुड मॉर्निंग है मंडी की जुबान, 9:15 हो रहे हैं जी। और मैं आपको बता दूं, 5 अक्टूबर की ब्रांड न्यू मॉर्निंग। और भैया आजकल ना बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, मोबाइल की लत ने इतना ज्यादा बच्चों को बिगाड़ दिया है, कह सकते इतनी एडिक्शन हो गई बच्चों को कि बच्चे कुछ भी कर रहे होते हैं। भाई अभी एक बड़ा अजीबो गरीब मामला सामने आया, मैं एक स्टडी कर रहा था, इसमें पता लगा भैया कि मोबाइल की लत ने 3 साल के बच्चे को भाई साहब परेशान कर दिया, इतनी एडिक्शन हो गई उसको कि वो दीवारों से बातें करने लगा, घर वाले भी परेशान हो गए। ये अपने उत्तर प्रदेश का ही मामला है जी। एंड उसके बाद जो है ये घटना काफी दूर तक पहुंची और काफी इनफैक्ट ये देखिए आप हिस्सा बन गई सोशल मीडिया का भी। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखो भाई इतना भी ज्यादा बच्चों को फोन मत दो कि उनका नींद खाना उनका सारा ध्यान सिर्फ फोन पे ही आए और जो वो एक नेचुरल खेल कूद है वो सब कुछ भूल जाएं, जो फिजिकली एक्टिविटी है वो भूल जाएं। और छोटे छोटे बच्चों को तो मैं कहता हूं यार बिल्कुल फोन देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है ना कि आजकल का लाइफ स्टाइल इतना सुपर फास्ट है, पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं, बच्चों को दिमाग यू नो उनका भटकाने के लिए उनको वो फोन पकड़ा देते हैं। और मुझे कि ये नहीं करना चाहिए, अक्सर हम यही गलती करते हैं। एंड इतनी बारी हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज को लेके बात करती है कि प्लीज यार ये मत करो, बहुत जरूरी है, चाहे बच्चा अगर रो रहा है तो रोने दो, बट फोन उनको प्लीज प्रोवाइड मत कराओ। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे एकदम से रोने का वो करते हैं, छोटा सा मतलब एक्ट करते हैं और पेरेंट्स एकदम पिघल जाते हैं और उनको फोन पकड़ा देते हैं। देखो यार एक पर्टिकुलर टाइम सेट करके रखो छोटे बच्चों को और जितना हो सकता है उनको प्लीज दूर रखो, उन्हें बाहर लेके जाओ, उनको जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कराओ, जो पहले वाले अपन के गेम्स होते थे ना वो वाले गेम्स कराओ यार, जो हम खेलते थे छुपन छुपाई और भी बहुत सारे गेम्स खेले हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं होंगे यार आज की डेट में। चलो जी फिलहाल मैच की बात करें तो मैच देखिए बहुत ही कमाल का था, एंड इस मैच ने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। बाकी तो आप कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करके, आपके जो मैसेज आए हैं मैं डेफिनेटली शामिल करूंगा। लेकिन अभी जरा कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, इन एड ब्रेक के बाद अभी वापस आता हूं, एक छोटा सा एड ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक। ओके जी,
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM। सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
0: मॉर्निंग। हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक है और एक बार फिर से बिंदास मॉर्निंग में आप आनंद को सुन रहे हैं, जहां ढेर सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर आपने जो सवाल पूछा है ना उसका ये वाला जवाब है, उसका ना ये वाला जवाब है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गूगल पे भी नहीं मिलेगा इसका जवाब, मैं ऐसा सवाल लेकर आया हूँ आज की सुबह। चलो जी बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी के, अब ये कौन है भाई? खतरों के खिलाड़ी के 15 नंबर के जो विनर है वो बन गए हैं अविनाश मिश्रा जी, उनको ट्रॉफी पर अपना हक जमा लिया है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के खिताब में जो है अविनाश मिश्रा जी ने अपने नाम कर लिया है। एंड इस पूरे सीजन में शानदार स्टंट और बेहतरीन प्रदर्शन के बाद जो है उन्होंने इस प्रतियोगिता को अपने नाम कर लिया और 20 लाख रुपए का प्राइज भी जीत लिया है। ओ माई गॉड, चलो जी आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ 9837896896 पे, ये बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है, कभी तो उसके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और कभी उसके पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते। अगर आपको पता है क्या है इसका राइट आंसर तो आप मुझे ज़रा बताओ, दिमाग लगा के मैसेज करो 9837896896 पे। एंड आज वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है, हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे। जो टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, जो अपने स्कूल कॉलेज जहाँ भी जा रहे हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ जी। टीचर्स हमारे जीवन में वो काम करते हैं जो स्टूडेंट हम बड़े होके उनकी बातों पर चलते हैं तो बहुत बड़ा काम हम भी कर लेते हैं यार। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए अभी मैं आपको मुरादाबाद की कड़क लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ, कहाँ क्या चल रहा है। इसके अलावा कुछ रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जरा सी देर में इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए, अभी लौट कर आते हैं, उसके बाद आपको खुश खास बताते हैं कौन है वो युवक जिसने कौन बनेगा करोड़पति से जीते हैं पूरे 5 लाख रुपए। ये क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए फिलहाल एक और अमेजिंग सा गाना जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी ऑसम। अगर आपको समझ आ गया है भैया हमने आपसे जो पूछा है उसका जवाब, तो मैसेज कर दो ना यार 9837896896 पर। आज का दिन सच में बड़ा गजब का है यार, आई डोंट नो क्यों बट फीलिंग बहुत अच्छी है। जुबिन नौटियाल की बहुत ही प्यारी आवाज, एंजॉय करो इस गाने को। वॉल्यूम बढ़वा लो सर से। भैया गाड़ी चला रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा दो जरा, मैडम को आवाज नहीं आ रही है। अरे बढ़ा दो, वेरी गुड।

हेलो जी, कैसे हाल चाल? सुनो काम की बात। गाना बहुत अच्छा लगा रहा हूँ, मतलब मैं आपको 90s वर्जन का सुना रहा हूँ, यो यो हनी सिंह का डोप शोप। मजा आएगा आपको सुन के। ना वी ना डोप शोप मारिया करो, क्या बात है। इसमें कैसा लिरिक्स है ना जो दिल को टच कर जाता है। हाय क्या गाना है यार?

0: क्या बात है यार, डोप शो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा है गाना, मतलब 90s का एक नया ऐसा वर्जन, एंड ऑफ कोर्स आपने इसको और भी पहले भी सुना होगा, एंड अभी तो फिलहाल मुझे सुनकर बहुत मजा आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इतने सारे आप लोगों ने ऑनेस्ट वाले मैसेज भेज दिए ना, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है इनको देख के, लेकिन बहुत सारे गलत जवाब आ रहे हैं, थैंक यू गलत जवाब देने के लिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं यार, अभी ना मैं एक्चुअली आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अगर मुंह की सेहत के लिए ना, आपकी ओरल हेल्थ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लौंग जो आपके किचन में रखा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे बहुत सारे लोगों को पता भी है इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर आप लौंग वाली चाय पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है यार, नहीं पीते तो जरूर पिया करो। फिलहाल बात करते हैं, देखिए लौंग मुंह की देखभाल में उपयोगी मानी जाती है, इसमें मौजूद जो है यूजिनॉल में काफी कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके मुंह में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया को नियंत्रण करने में काफी हेल्प करता है। लौंग का सेवन या इसका जो तेल होता है वो आपके दांतों के लिए, आपकी दुर्गंध को दांतों की दूर करता है, आपके दांतों को बहुत ही ज्यादा ये मतलब स्ट्रांग बनाने में भी हेल्प करता है। आपने देखो ना बहुत सारे टूथपेस्ट में लौंग वगैरह दिखाते हैं, तो लौंग आपकी ओरल हेल्थ के लिए, आपके दांतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर आप लौंग वाली चाय पीते हैं तो ये भाई साहब चकाचक बना देती है, बता रहा हूँ, आपकी हेल्थ भी चकाचक करती है, आपके दांतों को भी स्ट्रांग करती है, और आपकी अंदर के माउथ को भी बढ़िया करती है। भैया मैं कह रहा हूँ अगर आप लौंग का इस्तेमाल करो तो बहुत बढ़िया, आप किसी ने अपने मुंह में लौंग रख के निकल जाओ अपनी सफर पे, आपको मजा आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी मिर्ची आपको लगेंगी लेकिन आपका गला खुल जाएगा बॉस एकदम, आप भी मेरे स्टाइल में बोलोगे गुड मॉर्निंग मुरादाबाद। चलो भाई अभी मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ, कई बार लोग कहते हैं ना यार घर में कांच टूट गया, पता नहीं ये शुभ तो नहीं होगा, कांच टूट गया तो भैया कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बड़ा लोग उससे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देते हैं तुरंत ही, उस पर मैं अभी बात करूंगा। हाँ ठीक है जी, आप अपने जो भी मैसेज किए हैं उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करता हूँ, और अभी मैं आपको 5 अक्टूबर में जो अपन शिक्षक दिवस मना रहे हैं उसकी शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है जी। और आपको पता है ना आज से नवरात्रि तो नहीं कह रहे हैं, अभी नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और अपना जो काली माता का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ना अपने मुरादाबाद में, उसमें भी बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। एंड इसके अलावा आपको बताते चलें अपने रामलीला ग्राउंड में भी जो है रामलीला का शुभारंभ आज से हो रहा है, क्योंकि आज शाम को आप आने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा, हो सकता है हम भी आपको भटकते हुए वहीं मिल जाए। बाकी अभी मुरादाबाद से जुड़ी 3 बातें आपको बताएंगे जो बहुत ही काम की होंगी, और इससे पहले वेदर की बात कर लेते हैं, तो आज जरा मौसम क्या कहता है इसके बारे में बात करना जरूरी है। मौसम की हलचल क्या कह रहे हैं भैया, देखो यार फिलहाल 2 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, करंट टेम्परेचर 26 डिग्री है, अगर बात करें हाईएस्ट की तो ये 30 डिग्री पहुंचेगा, लोएस्ट की बात करें तो 24 डिग्री पहुंच सकता है। तो ये था आज का मौसम, कुल मिला के आपको गर्मी का हल्का फुल्का एहसास होता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे अब जो अक्टूबर आएगा और ये गर्मी को कैसे सर्दी में तब्दील कर देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सोचना मुझे अभी ये है कि 9:31 हो रहे हैं, इसी बीच एक छोटा सा एड ब्रेक आ रहा है, अगर अपनी शादी का आप तैयारी करने का प्लान कर रहे हो, मतलब शादी करने का प्लान करो यार, तो आप इधर जाओ ना।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड banquet with 120 plus rooms, spa and much more.
2: Book now 92582-530-81 and for more details WhatsApp 92582-530-81.
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
0: ये जो मैडम ने बोला है ना जब तक है जान मैं नाचूंगी, मैं भी कह रहा हूँ जब तक है जान चलता रहेगा रेडियो स्टेशन, आप मत होना परेशान, अच्छे गाने ऑफ कोर्स बजाने का है मेरा काम। प्यार से कहते हैं बंदे को आरजे आनंद जी, कैसे हाल चाल है, सुबह का एक बढ़िया वाला सलाम। चलो जी आप जहां भी निकल चुके हैं ऑल द वे बेस्ट, एंड मैंने पूछा था आपसे एक छोटा सा सवाल, मैंने कहा था ऐसी कौन सी चीजें, कभी तो होते हैं इसके पास ढेर सारे कपड़े, कभी इसके पास एक भी कपड़ा नहीं होता है। अब आपने मतलब जो लिखा है ना उसे मैं पढ़कर थोड़ा सा पानी भी हो सकता हूँ, नहीं बर्फ बर्फ भी हो सकता है, मतलब क्या पहुंचा रहे हो यार। नेहा कक्कड़ जी थोड़ा सा आप डांस कराओ, थोड़ा सा हो सकता है डांस के बाद भैया भाभी का दिमाग सेट हो जाए और वो सही जवाब बता दें। अच्छा आपने जो मैसेज किए वो भी आपका नेम गेम करने वाले हैं यहाँ पर, उससे पहले गाड़ी चला रहे हो बहुत अच्छी बात है, आराम आराम से फिलहाल के लिए अभी एंजॉय करो। ओए होए आते हैं अभी लौट करके इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप ऐसे जुड़े रहिए और ऐसे ही फैंटास्टिक बातों के लिए, फैंटास्टिक गानों के लिए प्लीज कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद पे आरजे आनंद को, ढेर सारी बातें आपके साथ हम लगातार करते हैं। इसी प्रोग्राम में आपको तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं, तमाम वो बातें आप तक पहुंचाते हैं जो इस प्रोग्राम के जरिए आपको काफी कुछ जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए भाई साहब, कम से कम एटलीस्ट हमारे प्रोग्राम के जरिए लोगों को कुछ तो पता लग रहा है। और दोस्तों अभी थोड़ी सी देर में मैं आपकी हेल्थ के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय बन गया है आज की सुबह ये। आखिर मैं क्यों इस पे चर्चा कर रहा हूँ, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। जो हमारी बॉलीवुड एक्टर है नुसरत भारूचा, हाँ जी, तो उनकी थोड़ी सी तबीयत नाशाद है एंड वो एक हादसे का शिकार हुई थी, लेकिन थैंकफुली अभी वो ठीक हैं, पहले से बेटर हैं। उनकी अभी कड़क अपडेट आई है। आपने अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी 786 में देखा होगा नुसरत भारूचा को, बहुत ही अच्छा जो है कमाल के उनके गाने भी है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी करती हैं। She's absolutely mind-blowing actress. और बस बॉलीवुड की काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं। और अभिनेत्री नुसरत भारूचा हाल ही में एक बली में एक हादसे का शिकार हो गई थी एंड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेत्री की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। एंड फाइनली अभी उनकी ये अपडेट आई कि फिलहाल उनका इलाज मुंबई हॉस्पिटल में चल रहा है एंड पहले से उनकी सेहत में थोड़ा सा सुधार है। एंड आई विश गेट वेल सून, वो जल्दी से ठीक हो जाए, हमारी बेस्ट विशेज हैं यार। एंड बाकी अपने मुरादाबाद संभल वाले लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि भैया बताया जा रहा है संभल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही कि जल्दी तैयार होगा एक नया बस स्टैंड वहाँ पर जो है बनेगा नया एंड काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन तरीके से जो है बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे हमारे लिसनर्स हमें संभल में भी सुनते हैं, जो संभल लिसनर्स हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि शहर में रोडवेज बस अड्डे का निर्माण कार्य तेज़ी से जो है वो चल रहा है और जल्द ही यात्रियों को एक आधुनिक सुविधा के साथ जो है यहाँ पर एक बहुत ही फैंटास्टिक उनको जो है कुछ नई चीज़ मिलने वाली है, उनको पता चली गया है अब। हाँ जी, तो उनके लिए एक नया बस स्टैंड तैयार हो रहा है संभल वाले लोगों के लिए, एक अच्छी गुड न्यूज। बाकी अभी एक रिसर्च हुई है जिस रिसर्च में जो है पता लगा है फिटनेस के बारे में रिसर्च की गई है, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। और आपने जो मैसेज किया है उसके लिए शुक्रिया। मेरे पास शबाना का मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू शबाना जी, बहुत ही अच्छा हूँ। शबाना जी आपने जो लिखा है ना कि सर आपने पूछा था कभी तो एक चीज़ है वो कौन सी चीज़ जिसके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो आपने जो लिख के पहुँचा है ना इसमें मैं हंस भी नहीं सकता हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, आपने बड़ा सीरियस वाला मुद्दा पहुँचा दिया है। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है, माय नेम इज तबस्सुम, गुड मॉर्निंग जी आपको भी, बस इन्होंने ये लिखा है गुड मॉर्निंग सर, वही गुड मॉर्निंग। एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर रिधमा का, गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू, कितनी प्यारी आवाज़ है, अच्छा जी आप उधार लेके चली जाओ। हमारे पास मैसेज पहुंचा है कश्मीर से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर कैसे हालचाल है, ये महराजुद्दीन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पहुंचा है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शरीफ शारिक अली जी लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर कैसे हालचाल है, आपको सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इन्होंने लिखा है जिससे पॉपकॉर्न बनाते हैं, वाह क्या बात है, ये मतलब कमाली कर दिया नफीस साहब, आपने कमाली कर दिया, क्या ही मतलब आंसर किया है आपने। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है माय डियर आनंद, हाउ यू, आई एम एब्सोल्युटली गुड सर, लिखते हैं आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते लिखते और अब हम सोच रहे हैं कि क्या ऐसा सीखें। देखो यार मुझे लगता है ना जिंदगी में सीखने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बट आप जब कुछ बेहतरीन सीखना चाहते हो ना तो जीवन में आप आगे बढ़ ही जाते हो। एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी है इन्होंने, आगे लिखते हैं कि आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते और सीखा क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, आए हाय बड़ी सच्ची वाली बात करते हो भाई साहब, कभी कभी तो लगता है मैं क्या ही बताऊं, रेडियो छोड़ के ना भाग जाऊं। हाय आनंद भाई, गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है जी, थैंक यू सो मच। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, कोई वेलविशर ही हमारे हैं जो इतनी अच्छी बात लिखते हैं सबसे पहले बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आपके घर पर आपके फादर जी साहब वापस आ गए हैं सकुशल जी, और जिस धैर्य के साथ और जिस विश्वास हिम्मत मेहनत के साथ आपने अपने पिताजी को ढूंढने की कोशिश की आज उसी का सुखद परिणाम जो है आपके सामने है। जिस तरह आप FM पर आते हैं, एंकरिंग करते हैं और अपने श्रोताओं को हंसाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन एक कलाकार और एक एंकर की जिंदगी में हमेशा जो है उतनी अच्छी और पॉजिटिव चीजें चलती तो हैं, लेकिन उतनी वो दिखती नहीं है जितना लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो दिख भी जाती है। मैं अग्री करता हूं सर आपकी बात से, लेकिन आगे क्या लिखते हैं पहले उसको पूरा करते हैं, उसके बाद इसमें हम अपनी बात को एड ऑन करेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। ये लिखते हैं, एक कलाकार और एक एंकर की जिंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती है जितनी पर्दे या माइक के सामने दिखाई दे रही होती है। चेहरे पर मुस्कान रखकर दूसरों को खुश रखना और अपने दिल में तकलीफ को अंदर ही अंदर छुपाए रखना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत होती है, और आपने ये किया है अपने FM पर अपने श्रोताओं के लिए, उनके सामने अच्छे कार्यक्रम किए हैं, उनको हंसाया, उनके मन को बहलाया है, लेकिन शो खत्म होते ही अपने पिताजी को ढूंढने गए, फिर निकल पड़े और आपने संघर्ष किया है। बिल्कुल जी, कितना मुश्किल और भावुक पल रहा होगा इसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। और बस सर आपने जो इतना प्यारा मैसेज लिखा ना, शायद अगर मैं

0: पढ़ूंगा तो बहुत सारा समझ आएगा, लेकिन आई एग्री विद यू, वेल थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, जब आप अच्छे होते हो, आपका दिल अच्छा होता है, आपकी नीयत साफ होती है, तो आपके साथ ऊपर वाला भी होता है यार। थैंक यू सो मच। लाइफ में कुछ मिले ना मिले यार, एक चीज जरूर मिलनी चाहिए, वो है अपने माता पिता का आशीर्वाद। अगर उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है तो आप जिंदगी में वहां पहुंच सकते हो जहां आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते खुद को। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मस्त रहो, झकास रहो। जिसके पास पेरेंट्स हैं वो खुद को बस लकी माने और हमेशा उनके थैंक्सफुल रहें यार, आप जो भी हैं उनकी वजह से हैं।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा।
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
7: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
8: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.
0: अभी बजाएगा ना भिड़ो। चलो जी, एक बढ़िया गाना है और बिल्कुल आपको मजा आना चाहिए। और एक छोटा सा सवाल जो मैंने पूछा था वो तो था ही सवाल, लेकिन अभी एक और अच्छा सवाल पूछने वाला हूँ आज की सुबह। उसका जवाब देकर आप कुछ अच्छा सा पा सकते हैं आज की ब्रांड न्यू मॉर्निंग मंडे की सुबह। आने वाला गाना गुरु रंधावा की आवाज एंजॉय करेंगे आप, साथ में तुलसी कुमार देंगे साथ। डोंट गो एनीवेयर, अभी लौट कर आता हूँ।

पर आओ अरिजीत सिंह की आवाज, बहुत ही बढ़िया गाना जवान फिल्म से अभी आपने सुना था। मैं तो चल रहा तेरी और पाजी, मैं किसी की ओर नहीं चल रहा, मैं सिर्फ अपने रूट पे चल रहा हूँ, आई मीन अपने रेडियो पे चल रहा हूँ भाई। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, बंदे का नाम आनंद है। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मंडे की सुबह है एंड अभी वक्त हुआ है 9:54, 9:54 हो गया स्टेशन क्लॉक में 5 अक्टूबर की सुबह। एक अच्छे से क्वेश्चन का टाइम हो गया है, मतलब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे इमीडिएटली। अगर आप इसका जवाब देंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा यार। Exactly, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बंदे के नाम आनंद है और आज की सुबह मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा गाना आइडेंटिफाई कराने वाला हूँ। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग, बस ये जो गाना है वो आइडेंटिफाई करना है। कौन सा गाना है यही आपको बताना है। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा बाबा, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। कि दिमाग लगाओगे तो लगाओ भाई, बताओ मुझे मैसेज करके 9837896896। बहुत ही अच्छी और हैपनिंग डांडे नाइट के पास आपको देने वाला हूँ आज की सुबह। अगर आप जीतना चाहते हैं इस डांडे नाइट के पासेस तो आपको क्या करना है, बस मुझे बताना है कौन सा गाना है। चलो जी मैसेज करियो, उठाइयो अपना फोन, पाजी टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 9837896896। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके बताना है। अभी जो मैं आपसे एक गाने का बेसिकली बीच का बार एक गाने का म्यूजिक है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग, ऑफकोर्स नवरात्रि की बीट्स पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ये गाना। अभी नवरात्रि डांडिया गरबा एकदम ठा करके लोग इस पे रील्स बनाने वाले हैं। कौन सा गाना है? व्हाट्सएप करके बताना है आपने मेरे को 9837896896। फटाफट मैसेज करो यार और जीतो ये अमेजिंग डांडे नाइट कॉन्सर्ट पासेस। अगर आपको चाहिए मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ यार। देखो सब कुछ यहाँ पर फ्री में तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ चीज़ें मिल जाती हैं यार, है ना। तो जल्दी से मैसेज करो, इंतजार कर रहा हूँ, बस अब इंतजार की घड़ियाँ खत्म करा दो यार। एंड अभी फिलहाल मैं खत्म करता हूँ इंतजार की घड़ियाँ इस गाने के साथ। वाइल्ड की आवाज अरिजीत सिंह देंगे साथ, ब्यूटीफुल ट्रैक हीरी है, एंजॉय कर रहे हैं आप आनंद के साथ। आई विल बी राइट बैक, इंतजार करो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: कहा मेरी कसम?
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय
8: बिंदास मॉर्निंग।
5: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
9: जरा कान लगा के काम की बात सुन लो भाई साहब। आप ही काम की बात करने आता हूँ मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ। हाँ जी, सुबह के 10 बज गए, यही बताना था आपको। ढेर सारे लोगों ने मैसेज किए मुझे, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले वो पिछले घंटे मैंने पूछा था ना, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास कभी तो ढेर सारे कपड़े होते हैं और कभी एक भी कपड़ा नहीं होता है, ये आपको मुझे बताना था दिमाग लगा कर। बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगा दिया, हैंगर, रस्सी और पता नहीं क्या क्या बताया भाई साहब। चंडीगढ़ तो नहीं पता, लेकिन मुरादाबाद के लोगों का दिमाग बहुत तेज है भाई। मतलब ऐसे ऐसे जवाब आए भाई, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया यार। ओए होए, फिलहाल आने वाला गाना बादशाह नेहा कक्कड़ की आवाज, ओए होए, फ्रॉम द फिल्म बार बार देखो से काला चश्मा। एंजॉय करो, अगर आपने लगा रखा है तो वेरी गुड।

बहुत ही बेहतरीन गाना अमर आशीष एंड बादशाह नेहा कक्कड़ की आवाज, साथ में इंदीप बख्शी का म्यूजिक, इतना अच्छा गाना भी आपने सुना काला चश्मा मजा के सुन के। वेलकम बैक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने अमेजिंग मैसेज करने के लिए। मैं बस आपको यहाँ से थैंक यू ही बोल सकता हूँ यार, इतने प्यारे मैसेज आप करते हो सच में यार, मतलब मजा आ जाता है आप लोगों के मैसेज पढ़ के। 10:04 हो गए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ऐसी कौन सी चीज़ें, कभी तो उसके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और कभी उसके पास एक भी कपड़ा नहीं होता है, पता नहीं क्यों ये मेरी इंस्टाग्राम पे आया और मैंने सोचा मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन इसका सही जवाब पता है क्या है, मतलब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, मुझे खुद को भी पता होना चाहिए तभी तो बता सकता हूँ, लेकिन क्या लगता है आपको, मुझे पता है या नहीं पता है? अच्छा चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप लोगों ने जो रस्सी और ये हैंगर और पता नहीं वो पॉपकॉर्न बनाने की मशीन और पता नहीं क्या क्या बाहर कपड़ों में टांगने वाली रस्सी और भी बहुत कुछ, मतलब ऐसे ऐसे जवाब दिए ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे को पढ़ पढ़ के ना ऐसे चक्कर आ रहे हैं, पानी वानी पिलाओ यार, ताली आपके लिए। और सच बताऊँ तो यार सच में मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, बस वो आया था दिमाग में तो मैंने पूछ लिया, अगर मेरे को पता होता तो मैं आपको बता देता यार, लेकिन सच में मैंने सोचा चलो आपसे पूछ लेता हूँ शायद आपको पता होगा, लेकिन मजे की बात ये है कि आपको भी नहीं पता है सही जवाब। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ही इस भीड़ चाल में चल रहा हूँ, लेकिन समझ रहा हूँ ना, मतलब चलिए जी मजाक होती रहेगी। 10:05 हो गए, सुबह की ताजगी भरी वाली गुड मॉर्निंग, और क्या बोलूँ मैं, अभी फिलहाल ये गाना पहचानो, ये अगर आपने पहचाना तो मैं आपको डांडिया पास दूंगा।

मैसेज करो यार 9837896896 पे, व्हाट्सएप करना है आपने मेरे को। इसमें कोई मजाक नहीं है, इसमें कोई जोक नहीं है। 14 और 15 को बहुत ही अच्छी डाणी राइट हो रही है। व्हाट्सएप करके बताना है जो म्यूजिक चल रहा है वो कौन सी गाने के। दिस इज वेरी पॉपुलर सॉन्ग। चलो जी मैसेज करो और आपको बता देता हूँ। देखिए आज 5 अक्टूबर है, अगेन रिपीट करो, हमारे साथ रामलीला कमेटी से कोई कनेक्ट होने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ही इज वेरी वेरी बिजी। और आज का दिन बहुत ही अच्छा है, रामलीला ग्राउंड का शुभारंभ, रामलीला ग्राउंड में आज रामलीला का शुभ आरंभ हो रहा है। और वैष्णवी कला मंच के कलाकार जो है आज से रामलीला का जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। धाकड़ वाली परफॉर्मेंस जो है आपको बैक टू बैक मिलेंगी बहुत अच्छे से जो है रामलीला ग्राउंड में। मेले की तैयारियाँ भी हो गई हैं भाई और खूब जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। अगर आप इधर आ रहे हैं या आ चुके हैं तो मुझे बताना 9837896896 पे व्हाट्सएप करके। एंड बाकी अभी के लिए आपको मेरे सवाल का भी जवाब देना है, अगर आप दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अब तो सारे लोग मिलके करेंगे, है ना जी, लव रात्रि का ही गाना। चलो माहौल बनाते हैं। और आज कौन कौन से नेशनल इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं इस पे बात करूंगा और अभी अगले 2 घंटे भी आपके साथ हूँ यार। एग्जैक्टली, खुशी तो अभी है नहीं स्टूडियो में, तो मैं आपके साथ 12 बजे तक हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradaba 89.6 FM.
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022।

हाय गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, यू आर लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी। 10:11 हो रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। आरी संधु का गाना जो आपको बनाएगा थोड़ा सा दीवाना। कहीं मत जाओ, बताता हूँ क्या है राइट आंसर, कौन है मेरा आज की सुबह का लकी विनर एंड कौन जीत रहा है आज के डानी नाइट कॉन्सर्ट। अभी के लिए हॉरी हॉरी सॉन्ग। मंडे की सुबह मंडे ब्लूज भी होने चाहिए, इस गाने को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: संधू इतना बढ़िया गाते हैं भाई, इनकी गाने सुन के हर किसी को मजा आ जाता है, हर किसी को जो है मोहब्बत हो जाती है हाडी भाई से। इतना अच्छा गाना भी आपने एंजॉय किया, अगली अच्छी आवाज आप एंजॉय कर रहे हैं आनंद की, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं नहीं आनंद जी आपको तो पता होगा उसका जवाब। यार हर चीज का जवाब हर किसी को नहीं पता होता है। और देखो यार मैं एक बात कहता हूँ, इंसान है AI नहीं, तो हर चीज हर किसी को पता हो ये जरूरी नहीं है, और हर चीज ना पता हो ये भी जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपसे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। ये कौन सा गाना था यही आपने आइडेंटिफाई करना था। बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरे पास आज की सुबह, आई एम सो हैप्पी इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी। एंड सच में यार हैंड्स ऑफ है आपको, इतना बिजी लाइफ स्टाइल होता है हर इंसान का, फिर भी आप मैसेज कर देते हो, थैंक यू सो मच। आज के जो राइट आंसर सबसे पहले मेरे पास पहुंचे हैं ना, वो दो लोगों के पहुंचे हैं। सबसे पहले मेरे पास मेघा जी का पहुंचा है। सबसे पहले मेघा कंग्रेचुलेशन, मैं पता नहीं क्यों फंबल कर रहा हूँ आपका नाम, कंग्रेचुलेशन मेघा। एंड इसके अलावा मेरे पास श्रुति का मैसेज पहुंचा है, इन दोनों लोगों ने जीते हैं 14 और 15 के अमेजिंग रानी नाट के पासेस, कंग्रेचुलेशन आप दोनों को। एक बार यहाँ पे घंटी बजा दो यार, पाजी दालिया, ओ पाजी गाना भी चलाओ यार, एग्जैक्टली थैंक यू सो मच। एंड अब राइट आंसर भी सुन लो भाई, नगाड़े संग ढोल बाजे, दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एग्जैक्टली वही था राइट आंसर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने भी सही जवाब दिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन लोगों ने, बट इन्होंने थोड़ा सुपर फास्ट काम किया है, तो आप दोनों को कंग्रेचुलेशन। अपने पास कैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी कॉल के थ्रू। बाकी लोगों के लिए तालियां, थैंक यू सो मच। 10:16 हो गए हैं, अभी जरा सी देर में यहाँ से इजाजत लेके वापस आने वाला हूँ यार आपके रेडियो स्टेशन पे। आपकी फरमाइश है, आपकी रिक्वेस्ट पूरी करनी है, आपको ढेर सारी और अपडेट भी देनी है। देखो बहुत सारी तैयारी शैयारी करके आया आज आपका भाई जो है ना, बहुत सारी प्रिपरेशन करके आया, मुझे बताया आज 2 घंटे नहीं अपन को 4 घंटे बोलना है, तो उसी हिसाब से कॉन्टेंट बना के लाए हैं आज की सुबह। तो आप बिल्कुल कहीं मत जाइए, पहले आपके नाम को जल्दी जल्दी शामिल करूं। हाय गुड मॉर्निंग, गुलाम जिलानी पाशा मेरे साथ जुड़े थे आज की सुबह, थैंक यू सो मच गुलाम जिलानी पाशा साहब। आप यू नो हमेशा हमारे रेडियो पे पार्टिसिपेट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लिसनर्स हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। अरे सर गाड़ी
1: सर जो आपने सवाल किया है,
0: हाँ जी,
1: वो ये गाना है दिन तड़क आ जाके ये वाला।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप कहाँ गा रहे थे कहाँ पहुँच के, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है अक्सर, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जय माता दी, राधे राधे, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना कांठूट लड़वली से मेरे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। गुड मॉर्निंग आनंद भाई, कैसे हालचाल है? मैं रामपुर से रिहाना बात कर रही हूँ, एंड ऑल राइट ये कनेक्ट हो गई मेरे साथ, एंड इस सवाल का जवाब है एग्जैक्टली वैसे ये हो सकता है टीलर इन्होंने लिखा है, एंड साथ में लिखती है नहीं नहीं आनंद भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो सवाल किया होता है आपको जवाब उसका डेफिनेटली पता होता है, कभी कभी नहीं होता है जुड़ी तरी पे नहीं करानी भाई साहब, ये तो मतलब कमाल ही करते, स्ट्रीम लेवल का आंसर बजाए, कहते हैं सर धूप धूप धूप धूप, मतलब काश मुझे भी पता होता। हाय निशांत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच ये अपडेट देने के लिए, मैं डेफिनेटली चेक करूंगा निशांत भाई, आपने जो ये लिख के भेजा है ना मुझे, डेफिनेटली मैं इस पे अभी रिसर्च करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। भाई आप ऐप डाउनलोड करो, FM मुरादाबाद की प्ले स्टोर पे जाओ, FM मुरादाबाद 89.6 की एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिल से दिल तक कनेक्ट हो जाओ यार।
2: बेबी लेट्स गो
0: राइट नाउ,
2: देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ।
0: रामलीला फिल्म का ट्रैक है, गुड मॉर्निंग सर, एंड नगाड़े संग ढोल, दिस इज द राइट आंसर, थैंक यू। नफीस हरथला से जुड़ रहे हैं भाई, हेलो हाय दुर्गेश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लिखते हैं हमें गाने का नाम नहीं पता है, कोई बात नहीं यार। हाय हेलो हाउ आर यू आनंद, आई एम एब्सोल्युटली फाइन यार, ये मैसेज किसी का पहुंचा है सुनते हैं।
3: गुड मॉर्निंग
0: सर, मैं बढ़िया हूं
3: सर, सालिम अंसारी
0: जी, सालिम साहब
3: ये जो सॉन्ग चलाया है ये है धिन तड़क,
0: अच्छा जी
3: साल की आवाज में,
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलो जी थैंक यू सो मच। कुछ लिसनर है हमारे बड़े इंटेलिजेंट, नो डाउट, मानना तो पड़ेगा यार, मानने वाली बात है ही यार। डॉक्टर वर्षिका वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, लिखती हैं सबसे पहले तो आपको वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, एंड सेकंड थिंग भले ही आज वर्ल्ड टीचर डे है पर आज के टाइम में टीचर्स से हाय हाय हाय ऐसी बात लिख दी ना, मैं इसको पढ़ने में भी डर रहा हूँ। हाय हाय, क्या ही लिख दिया आपने।
2: तूने जो वो तेरी बूट पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लावर।
0: बट कोई बात नहीं मैम, मैं समझ सकता हूँ आपकी इस दर्द को, इस तकलीफ को। आप टीचर हैं, आई अंडरस्टैंड, बट इसको पब्लिक नहीं कर सकता, अपने दिल में लिख सकता हूँ। साथ में लिखते हैं, हेलो सर, आपके क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ लेडीज का ही होता है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है। नगाड़ी संग ढोल बाजे डॉक्टर वर्षिका, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप जहाँ भी जा रही हैं, कपड़े सुखाने की डोर, ये राइट आंसर कौन लिख रही है हमारे पास, आई डोंट नो राइट है या नहीं। अलका वर्मा बुद्धि बिहार से जुड़ रही है मेरे साथ, और मंसूरी कॉलोनी से भी हमारे प्रिय दोस्त जुड़ गए हैं अरशाद साहब, एंड हमारे साथ अविनाश सतनागर जुड़े हैं, साथ में कोमल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, अमित वर्मा जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर, एंड रिहाना जुड़ी है, विक्की सागर लिखते हैं रेडियो वाले आनंद वेरी गुड मॉर्निंग। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्यारे मित्र मुमताज आलम और साथ में राकेश वर्मा, गुड मॉर्निंग आनंद जी, बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन जी, बिल्कुल समझ आ गया है मुझे, एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लक्ष्मी जी सूर्यनगर मुरादाबाद से मेरे साथ जुड़ रही हैं आज की सुबह, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आनंद जी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। बिल्कुल जी चमनलाल साहब, सब बहुत बढ़िया है। गाइस जिन लोगों ने टेक्स्ट मैसेज किए या मैसेज किए उनके लिए दिल से थैंक यू। अभी लौट कर आ रहा हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप मेरे साथ ऐसे ही ट्यून इन रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
2: बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी। तो
0: वापस लौट कर आते हैं फिर आपके साथ और बातें करेंगे। मैं काम करता हूँ, कुछ जल्दी से खा पी के आता हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करके आता हूँ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाओ, अपने नाम के साथ बढ़िया बढ़िया मैसेज करो, कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखो, एंड मैं लौट कर आऊंगा, फिर आपके गाने बजाऊंगा और ढेर सारी आपसे बात करेंगे। 10:20 हो रहे हैं, मैं इमीडिएटली जाता हूँ, आई हैव टू गो, कहाँ जाने वाला हूँ ये नहीं बताऊंगा, फटाफट ब्रेकफास्ट करके जल्दी से

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद, उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
2: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ, है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। प्रोग्राम आपका अपना है मॉर्निंग मसाला, ढेर सारे बातों के मसाले, बहुत सारे गानों के मसाले, एक्सक्लूसिवली आपकी बातचीत, सब कुछ मिला जुला के जो प्रोग्राम बनता है बहुत ही खूबसूरत जो लेकर आती हैं आपके लिए आरजे खुशी। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हमारी जो है भाई साहब एंट्री हो गई है और अब 12 बजे तक हम आपके साथ इस प्रोग्राम में रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा सलाम, हमारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग कबूल करें जनाब। आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। 5 अक्टूबर की एक नई सुबह है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की सुबह। कहते हैं हर दिन का सूरज, हर दिन की सुबह एक नई उम्मीद और एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, है ना। वैसे ही आज की सुबह भी आपके लिए ढेर सारी उम्मीद और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, बस आप अपने काम पे डटे रहिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं मुरादाबाद की धड़कन के साथ। यह है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, एंड अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं 9837896896 के माध्यम से, कुछ इन्फॉर्मेशन एंड साथ ही साथ कुछ बढ़िया गाने और कुछ आपकी बातें। देखिए ब्रेकफास्ट किया यानी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको अच्छे गाने सुनवाने वाला हूँ। ढेर सारे मैसेज पहुंचे मेरे पास। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? माय नेम इज प्रेम बदा। गुड मॉर्निंग सर, सुबह सुबह खुशी जी कहाँ चली गई? खुशी थोड़े से काम से व्यस्त है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर हैं तो लोड नहीं लेनी है आपने। हेलो आनंद जी, एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन है इस प्रोग्राम में, और आज की सुबह हमें एक बहुत ही अच्छा गाना सुनना है जिसको सुनकर बहुत मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू डेफिनेटली। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है प्रेम भाई का। अरे वाह प्रेम, मुझे प्रेम याद आ गया, सलमान भाई जान। प्रेम भाई मुझे मैसेज करते हैं हनुमान मूर्ति से, लिखते हैं आनंद सर वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह दोबारा आपको सुनने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे एक बढ़िया सा नया गाना सुनवा दो यार, लविंग वाला, मजा आ जाए सुन के। अरे वाह डेफिनेटली भाई, जरूर सुनवाएंगे। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है आनंद सर सुप्रभात, कैसे हाल चाल है? ये मैसेज मेरे पास बरेली से पहुंच रहा है। अरे वाह क्या बात है, आज बरेली के भी श्रोता हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ गए हैं। एक मैसेज पहुंचा है सर गुड मॉर्निंग, अभी फिलहाल गुरहट्टी पर है, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, आप प्लीज आ जाइए, नहीं किया है तो। यार थैंक यू सो मच, पूरा पूरा मन है, लेकिन अभी मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं, कुछ और फटाफट से लेकर छोड़ू सा आ गया हूं ब्रेक, है ना। गाइस आप कुछ सुनना चाहते हैं तो फटाफट आप मेरे साथ जुड़िए 9837896896 पे और हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। बहुत सारे मैसेज मेरे पास पहुंच रहे हैं जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। आज बहुत सारी फिल्में अपने जो है एनिवर्सरी कंप्लीट कर रहे हैं उस पे अभी हम बात करेंगे, और एक लविंग शविंग वाला गाने की रिक्वेस्ट डाली थी मुझे मेरे प्यारे से प्रेम भाई ने, तो प्रेम भाई मैं डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा सा गाना निकाल रहा हूं आज की सुबह, आप इसको सुनिए आपको अच्छा लगेगा। आप कुछ सुनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें 9837896896 पर, सुनते रहिए ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। आई विल बी राइट बैक। फिलहाल के लिए अमेजिंग अरिजीत सिंह की आवाज,
1: सुबह सुबह
0: इस गाने को सुनिए और अपनी सुबह को बनाइए फैंटास्टिक।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

10:37 हो रहे हैं, इस गाने को एंजॉय कीजिए। वही वही मोस्ट लविंग सॉन्ग, अक्षय कुमार, करीना कपूर, सुष्मिता सेन, बहुत ही अच्छा गाना है, एंजॉय करते हैं इस गाने को। इस गाने की रिक्वेस्ट किसने भेजी, इस गाने के बाद बताऊंगा उनका नाम। डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो एनीवेयर यार, ये गाना चाह रहा मतलब कहीं मत जाओ, मेरे साथ ऐसे ही रहो, ट्यून इन रहो। अभी आता हूँ एक अच्छे से बढ़िया से बातों के साथ, और कुछ अच्छी बातें आपको बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा सुन के।

0: 10:43 हो रहे हैं फिर मुरादाबाद पे आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ढेर सारे मैसेज आपके पहुंच रहे हैं, हम आपके मैसेज को जरूर शामिल करेंगे। आप जो भी प्रोग्राम में गीत सुनना चाहते हैं, आई मीन कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई ब्यूटीफुल नंबर सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए बस आपको छोटा सा मैसेज करना है। मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल एक मूवी आपको बता रहा हूँ, ये मूवी आपको गेस करके बतानी है कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। अगर जब मैं आता हूँ कुछ कुछ नया नया लेकर आता हूँ, तो आज की सुबह आपको आइडेंटिफाई करना है एक मूवी। चलिए अब वक्त है एक फिल्म को गेस करने का। तो पिक्चर बहुत अच्छी है, मूवी की स्टोरी बहुत बढ़िया है। एक सीधा साधा लड़का जिसके सपने हैं बड़े, नौकरी और बेहतरीन ज़िंदगी के, मुंबई आता है यही ख्वाब लेके कि एक बड़ी नौकरी करूंगा तो शायद बेहतरीन ज़िंदगी जी पाऊंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो जैसे ही मुंबई पहुंचेगा उसे वहां उसका प्यार भी मिल जाएगा। ज़िंदगी में कुछ जो है अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन लाइफ इस मोड़ पर आती है जहां उसे अपने ही कुछ चीज़ों के बीच में लेकर, अपने सपनों को लेकर के उसे लड़ाई लड़नी होती है और पहचान मतलब अपनी बनाने के लिए उसे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। बहुत ही अच्छी फिल्म होती है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेक्स है मूवी का, स्टोरी बहुत अच्छी है। एक लड़का है जो बहुत सीधा साधा है, लेकिन जिसके सपने हैं कि एक बड़ी नौकरी और एक बेहतरीन ज़िंदगी। मुंबई आता है लेकिन यहाँ उसे प्यार भी मिल जाता है और ज़िंदगी कुछ ऐसे मोड़ पर भी ले आती है जहाँ उसे अपनी पहचान और अपने सपनों के लिए लड़ना भी पड़ता है। अगर आपको समझ आ गई है कौन सी बॉलीवुड की हिट मूवी है, बहुत ही बढ़िया मूवी है, सुपरस्टार बहुत अच्छे हैं इसमें, तो ज़रा मुझे गेस करके बताओ ये कौन सी फिल्म है। अगर आप समझ गए हो मुझे मैसेज करो आज की सुबह 9837896896 पे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको क्लू दूंगा थोड़ी देर में जब लौट कर आऊंगा, तो आपको हिंट भी दूंगा। फिलहाल कुछ एड ब्रेक का टाइम है, उसके बाद ओ माही ट्रैक सुनेंगे। आप ही की रिक्वेस्ट पे ये गाना है, किसने पहुंचाया है बताऊंगा अभी।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स,

0: Banquet with 120 plus rooms, spa and much more.
1: Book now 9258253081 and for more details WhatsApp 9258253081.
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: रघु भाई की मुझे रिक्वेस्ट आई है इस गाने की, MDA से। लिखते हैं आनंद जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका रेडियो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच। जंकी फिल्म का ओ माही, अरिजीत सिंह की आवाज, प्रीतम का म्यूजिक, अरशाद कामिल ने लिखा है, बहुत ही बेहतरीन गाना आप सुन रहे हैं आनंद के साथ। और ऐसे ही सुनते जाइएगा, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मॉर्निंग मसाला। ब्यूटीफुल ट्रैक है, एक मूवी मैंने दी है आपको गेस्ट करने के लिए, कौन सी मूवी है, लौट कर आ रहे हैं उसके बाद बात।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

देखो यार, बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट आप लोग पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो। और अभी यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। एक मैसेज ये जो गाने की रिक्वेस्ट आई है बबलू जी की मेरे पास पहुंची थी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल हैं। और अभी लिखते हैं आनंद भाई, जय श्री राम, मैं मुंबई महाराष्ट्र में हूँ और हमारे बड़े प्यारे रेगुलर लिसनर हैं और इन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट डाली थी, ये गाना अंबर का। यार ये गाना मैं पहली बार सुन रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा सा अच्छा सा लग रहा है सुनने में। फिलहाल आपको सुनना चाह रहे हैं, मैसेज कर दो।

तो यार मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब हम क्या सुन रहे होते हैं और क्या चल जाता है, हमें भी नहीं पता होता है। वेल कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है यार। वेलकम बैक वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। 11 बजने हुए हैं सुबह के, आप जहां भी जा रहे हैं आप सुन रहे हैं आनंद को, ऐसे ही सुनते रहिएगा। कुछ काम की बात आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप कॉफी पीने के बहुत बड़े शौकीन हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। अगर आप कॉफी लवर हैं, अगर आप ऑफिस में बहुत ज्यादा कॉफी पीने के शौकीन हैं तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बात बता दूं, देखिए नवरात्रि आपको बताइए कब से शुरू हो रहे हैं, लेकिन दुर्गा पूजा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुरादाबाद में बहुत अच्छे से होती है दुर्गा पूजा, एंड मुझे भी नहीं पता था, रिसेंटली मुझे पता लगा, ओ माई गॉड चलो इस बार दुर्गा पूजा में जरूर जाएंगे। तो आपको बता दें दुर्गा पूजा सन 2026 महापर्व मुख्य शुरुआत 16 अक्टूबर 2026 से हो रही है। हाँ जी, 16 अक्टूबर से जो है दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और नवरात्रि तो ऑफ कोर्स आपको पता है शुरू होने ही वाले हैं, जिसको लेकर बहुत सारी एक्साइटमेंट बनी हुई है मुरादाबादीज में। इनफैक्ट मुरादाबाद में क्या पूरे देश भर में एक्साइटमेंट बनी हुई है। और अभी मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आप भी कुछ हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं 9837896896 पर। एंड अभी मैं आपको कुछ एडब्री की तरफ लेके जाऊंगा 11 बजते ही, उसके बाद लौट कर आऊँगा तो आपको एक और ख़ास बात बताऊँगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अब मेन्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पेशली अपनी यूपी की मैं बात करने वाला हूँ। तो एक बहुत ही अहम खबर पे अभी जिक्र करेंगे हम इसी स्टेशन पर। एक फिल्म मैंने आपसे पूछी जिसको आपको गेस करना है, आइडेंटिफाई करना है, अभी आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा तो शायद आप पहचान लोगे मैं कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: चलो जी, हमारी एंट्री हो गई है फिर से। वेलकम बैक है आप सभी का। थैंक यू भैया वेरी वेरी मच, इतने प्यारे प्यारे आप लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। और ऐसे ही थैंक्स हम आपका करते रहेंगे, और आप भी हमारे साथ ऐसे ही जो है जुड़े रहिए, टिके रहिए और ऐसे ही ट्यून रहिए ढेर सारी बातों के लिए। प्लीज़ कीप लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6। आपके ढेर सारे मैसेजेस जो आ रहे हैं ना, मुझे बहुत हैप्पीनेस फील करा रहे हैं। भले अभी तक कुछ ऐसा खाया पिया तो बहुत बड़ा वाला नहीं है मैंने, बट सो मतलब फिर भी इतनी जो अच्छी फीलिंग आ रही है वो आप लोगों के मैसेजेस के वजह से आती है। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप पहुंचाते हो ना, ये वो मैसेज होते हैं जो हमें थोड़ा सा अंदर से और ज्यादा मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। तो आपका दिल से थैंक यू, और आप लोग जो गाने सुनने की रिक्वेस्ट डाल रहे हो ना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच यार। सच में अगला जो गाने की रिक्वेस्ट पहुंचाई है मुझे तारुण भाई ने, ये तो बहुत ही कमाल का गाना है, मेरा भी ऑल टाइम फेवरेट है एंड बहुत ही मजेदार सॉन्ग है। आप लोग लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।

जाने से पहले मैंने एक फिल्म के बारे में बात करी, इस फिल्म को आपको पहचानना है, ठीक है। एक फिल्म में बहुत ही प्यारी मूवी है ये, और इस मूवी का स्टोरी आपको बता रहा हूँ। एक सीधा साधा लड़का होता है एंड वो अपने सपनों को लेकर के बहुत ही बड़ा मैनिफेस्ट करता है। एक बहुत सीधा साधा लड़का जिसके सपने एक बड़ी नौकरी और बेहतरीन जिंदगी के हैं, इसी ख्वाब को लेकर मुंबई आता है, लेकिन यहाँ उसे जॉब और इसके साथ एक बेहतरीन उसे मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है एक नए प्यार की, उसे मतलब एक प्यार भी मिल जाता है। जिंदगी कुछ ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि भैया जहाँ उसे अपनी पहचान और अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। एंड सबसे बड़ा हिंट ये है कि ये फिल्मों के हीरो जो है ना भाई साहब, भीड़ में इनको बॉलीवुड का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार कहते हैं, सुपरस्टार के रूप में हम इनको देखते हैं। बताइए कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टोरी बहुत शॉर्ट बनाई है मैंने। एक सीधा साधा लड़का है जिसके सपने हैं एक बड़ी नौकरी और बेहतरीन जिंदगी, और वो ये सपना देखते हुए मुंबई पहुँचता है, लेकिन यहाँ उसे प्यार भी मिलता है और जिंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आता है जहाँ उसे अपनी पहचान और अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। कौन सी फिल्म है, बहुत प्यारी मूवी है, अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हो तो वेरी नाइस। चलो पूरा क्लू आपको दे देता हूँ, इस मूवी में जो है शाहरुख खान साहब है। शाहरुख खान की बहुत ही प्यारी मूवी है स्टारिंग बाय शाहरुख खान, इनके साथ जो वो एक्टर उनका नाम नहीं बताऊंगा, बस आप आइडेंटिफाई करो आप कौन सी फिल्म में शाहरुख खान जो है एक बड़ी नौकरी का ख्वाब लेकर मुंबई आते हैं, अगर आपको पता है तो बताओ। बाकी आप लोगों ने मैसेज किए हैं, रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है आनंद भाई, मुझे एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा। निशा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, बहुत बहुत थैंक यू। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है, नमस्ते, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नफीस हरथला से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एंड आनंद जी कैसे हाल चाल है, बहुत ही बढ़िया हाल चाल है हमारे साथ। अजीत कसाना, माए देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली से जुड़े हैं और बहुत ही प्यारी बातें लिख रहे हैं, थैंक यू सर। कश्मीर से महराज दीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह, इनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। हमारे पास लतिका का मैसेज पहुंचा है, साथ में ऋषिका हमारे साथ जुड़ी है। मझूली से मेरे पास संदेश पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, एंड साथ ही साथ ये पीली कोठी चौराहा से भी एक संदेश पहुंच रहा है, गुड मॉर्निंग का। अब लौट कर आऊंगा, आपके टेक्स्ट मैसेज शामिल करेंगे, तो जो लोग टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं ना उनको पढ़ेंगे।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: यू आर लिसनिंग टू द बिगेस्ट हिट्स, द बिगेस्ट हिट्स नॉन स्टॉप।

0: जिसको जिसकी याद आ रही है उसे मैसेज करो, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया सुपर फास्ट है, मेरी याद आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप करो 9837896896 पे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है, वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। सुनते हैं आपके शहर का अपना मस्त वाला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। 11:17 हो गए यार, ओ माय गॉड पता नहीं चल रहा यार टाइम कितनी तेजी से भाग रहा हो। पाजी किससे जा रहे हो? मैं कह जी किथे जा रहे हो परजाई जी? और यार मैं सच बता रहा हूँ मेरे को इतनी जोरों की भूख लग रही है ना अभी, मैं तो ऐसा लग रहा है भाई यार मैं जल्दी से किट्ठो जाके क्या ही खा लूँ भाई, इतनी भूख लग रही है ना संग मैं की बताऊँ यार। चलो जी कोई नहीं, और थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि इधर आसपास में कुछ अच्छा खाने को मिलता नहीं है, तो अभी अपन निकलेंगे इधर से बाहर 12 बजे, तभी कुछ ब्रेकफास्ट कर पाएंगे। ब्रेकफास्ट तो नहीं बोल सकते, उसे ब्रंच बोलेंगे अपन, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही मिला के हो जाएगा ब्रंच। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए उसके लिए थैंक्स अ लॉट यार, एवरीबॉडी पीपल थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल मैसेज के लिए, मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। मैंने एक मूवी के बारे में पूछा था, इतनी अच्छी मूवी है यार स्टारिंग बाय शाहरुख खान, एंड आप लोगों ने मैसेज किए जोरदार तालियां। बस कुछ ही लोग हैं जो उस मूवी को आइडेंटिफाई कर पाए हैं, कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ डेफिनेटली बताता हूँ। ये वाला गाना सुकृति ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, आज की सुबह लिखती है, गुड मॉर्निंग सर कैसे हाल चाल है, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी। एंड ग्रीन ऑर्चर्ड से मैसेज आया मेरे पास, लिखती है सर कैसे हाल चाल, आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज प्ले माय फेवरेट ट्रैक सतेंद्र सताज।
1: दसो जी हुण की लिखिए,
0: देखो आज मेरी डांस क्लास है, मैं कोशिश करूंगा इस गाने पे भी थोड़ा थोड़ा

चलो ये गाना मैं अब तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच जिसने भी गाना पहुंचाया, मतलब नाम तो मुझे पता लग गया है। थैंक यू सुकृति फॉर अ वंडरफुल सॉन्ग, इतना प्यारा गाना बताने के लिए। गुलाम जलानी पाशा मेरे साथ जुड़े हैं कुंदरकी से, गुड मॉर्निंग सर। और ईदगाह से शफी अहमद अंसारी एंड ये कौन है रईस दूल्हा अंसारी, इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट डाली है, डेफिनेटली प्ले होगा। लेकिन अब टेक्स्ट मैसेज पढ़ता हूँ। हेलो सर, हाय कैसे हाल चाल है? फिरोज फातिमा, मुझे गाना सुनना है। क्या बात है, इनकी बेस्टी लाइबा के साथ इस गाने को सुनना चाहती हैं ये। थैंक यू सो मच अफरोज। अगला मैसेज पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? लालू वाला से रईस साहब मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह टेक्स्ट मैसेज पर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? एंड प्लीज प्ले माई फेवरेट ट्रैक। ऑल राइट, थैंक यू। हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शाजिया। गुड मॉर्निंग शाजिया, इन्होंने भी मुझे मैसेज पहुंचाया है आज की सुबह। गुड मॉर्निंग, नमस्ते आनंद, नेहा स्वाति बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाय माय नेम इज नामिका फ्रॉम लाइन पार मंझोला। जीना सिर्फ मेरे लिए प्लीज प्ले माय ट्रैक। नगाड़े संग झोल बाजी, गुड मॉर्निंग। ये अच्छा था यार। हेलो हाय आनंद, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो आनंद जी? सुबह सुबह ड्राइव करते हैं और आपको सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। थैंक यू सो मच यार। गुड मॉर्निंग, मूवी का नाम है हमारी अधूरी कहानी। ये कौन है? शादाब अली मुरादाबाद। सर गलत हो गया जवाब, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पिक्चर को दोबारा रिपीट करूंगा, आप आइडेंटिफाई कर लूंगे। मेरे पास कोमल ने सही जवाब पहुंचा है। कोमल थैंक यू सो मच यार, आप बड़ी सुपर फास्ट है, आपको पता लग जाता है कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं। तालियां आपके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आइडेंटिफाई कर लो एक बार फिर से, मूवी आपको दे रहा हूँ, बहुत प्यारी मूवी है, स्टारिंग बाय शाहरुख खान एंड बहुत ही अच्छी फिल्म है। चलो मैं आपको इमीडिएटली बताता हूँ जिस पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, पिक्चर आपको आइडेंटिफाई करनी है। दिस इज वेरी वेरी फैबुलस मूवी, इस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक मूवी है शाहरुख खान साहब की, जिसमें एक सीधा साधा सा लड़का दिखाया गया है शाहरुख खान साहब को, एंड इनके सपने होते हैं एक बड़ी नौकरी और एक बेहतर जिंदगी, और यही सपना लेकर मुंबई आते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है यहाँ उन्हें साथ ही साथ प्यार भी मिलेगा, और प्यार तो मिलता है लेकिन जिंदगी कुछ अलग ही मोड़ पर ऐसे हालात बना देती है जहां पर उनको अपनी पहचान और अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छे स्टार कास्ट है इस मूवी में, शाहरुख खान साहब तो हैं ऑफ कोर्स इस मूवी में। बहुत ही प्यारी फिल्म है यार, एक लड़का जो मतलब एक ऐसा सीधा साधा प्यारा सा लड़का जो आता है मुंबई, आंखों में एक बड़ी नौकरी के सपने लेकर एक बड़ी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन लाइफ ऐसे ट्रैक पर आ जाती है जहां उसे अपने सपनों के लिए और अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ता है। मूवी बहुत अच्छी है, क्लाइमेक्स अच्छा है मूवी का, बहुत प्यारी फिल्म है। और इस मूवी की एक और खास बात बताऊं, इस मूवी के गाने बहुत अच्छे हैं यार। फिलहाल सुकृति का गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बाकी कुछ लोगों के और व्हाट्सएप मैसेज पहुंचे हैं पढ़ लेता हूँ। हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शाजिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। ये व्हाट्सएप पे भी पहुंच गए। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? दुर्गेश जी मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं मोहम्मद उस्मान, आई एम फ्रॉम रामपुर दुराहा। लेकिन आज हम निकल रहे हैं टर्मिनल 1 के लिए, दिल्ली हम जा रहे हैं, पागवाड़ा है, तो कोई अच्छा सा गाना सफर के मुताबिक प्ले करिए। ये गाना बहुत बेहतरीन सर, इसको सुनिए, वॉल्यूम बढ़ाइए और ऐसे ही सुनते जाइए। आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मूवी के बारे में पकड़ लिया है आपने, चलो हिंट देता हूँ। इसमें शाहरुख खान का साथ देती हैं जूही चावला, बहुत ही अच्छी फिल्म है। जूही चावला शाहरुख खान की कौन सी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान साहब एक सीधा साधा लड़का होता है एंड शाहरुख भाई मतलब एक बड़ी सी बेहतरीन नौकरी ढूंढने के लिए मुंबई निकल आते हैं और उन्हें एक बेहतरीन लाइफ चाहिए होती है। उस नौकरी के चक्कर में उन्हें यहाँ जूही चावला मिलती है, इनसे प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार तो होता ही है लेकिन कुछ गड़बड़ भी होता है। ये अमीर बनने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हैं, खोने लगते हैं, जूही चावला को ऐसा लगता है, बट लास्ट में एंड ऑफ द मोमेंट हर मूवी में यही होता है, एंड ऑफ द टाइम शाहरुख खान एंड जूही चावला एक हो जाते हैं। लेकिन मूवी बहुत अच्छी है, इस मूवी में शाहरुख खान साहब को अपने सपनों के लिए, अपनी पहचान के लिए कैमरी लड़ाई भी लड़नी होती है। बहुत अच्छी फिल्म है, कौन सी मूवी है बताओ मुझे नाम मूवी का। 9837896896 पे 11:22 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop.
3: देखो जी मजा तो आपको आ ही रहा है क्योंकि आप आनंद के साथ हैं एंड बहुत सारे व्हाट्सएप मेरे पास आ रहे हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। और बहुत लोगों ने मुझे अब सही जवाब दे दिया। ओ माय गॉड, मतलब अनबिलीवेबल यार, इतने सारे व्हाट्सएप अब आप मुझे कर दोगे, इतने सारे क्लू, अनबिलीवेबल। मतलब इतने सारे, मतलब मैंने आपको हिंट दे दिए क्या, इतने मैसेज आने लगे यार। चलो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। आप सुन रहे हैं आनंद को आज की सुबह, आपके सफर का साथी, आपका को पैसेंजर हूं यार। फिलहाल के लिए डोंट गो एनीवेयर। 11:27 हो गए स्टेशन क्लॉक में।

0: आयुष शर्मा की बहुत ही प्यारी फिल्म आई थी आज ही के दिन, एंड आज 5 अक्टूबर को रिलीज हुई थी ये मूवी। इतनी फैंटास्टिक मूवी थी, इसका गाना भी हमने सुना 10 बजे के आर्मी मैंने प्ले किया था, एंड आज इसको 8 साल हो गए रिलीज हुए हुए। 2018 में बहुत ही अच्छी मूवी आई थी, बहुत ही बढ़िया थी। नवरात्रि डांडिया के एकदम फुल ऑन वाइब इस मूवी में देखने को मिली, बहुत ही अच्छी मूवी थी। ऑफकोर्स आयुष शर्मा को आप पहचान के होंगे, है ना भाई, इतने बढ़िया जो है एक्टर नहीं कह सकते हैं लेकिन कोशिश पूरी पूरी करते हैं ये। इनकी मूवी देखने के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है हाँ यार चलो अभी नींद से जागने का टाइम हो गया है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। लेकिन चलिए कोई नहीं, फिलहाल नवरात्रि मूवी अच्छी थी, ऑफकोर्स आप समझ गए नाम के साथ ही, बहुत ही अच्छी फिल्म है। आज ही के दिन रिलीज हुई थी 2018 में। आज के दिन एक और मूवी रिलीज हुई थी 2018 में, अंधाधुन, दैट इज वेरी वेरी एब्सोल्युटली अमेजिंग मूवी। आयुष्मान खुराना की मूवी थी, साथ में टबो एंड राधिका भी थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत ही अच्छी सुपरस्टार थी एंड अच्छी मूवी थी। और आज पूरे के पूरे ये भी अपने 8 साल कंप्लीट कर चुकी है मूवी। इंग्लिश की बात करूँ तो आज के दिन रिलीज हुई थी 2012 में, श्रीदेवी की कमाल की जो है एक ऐसी मूवी थी, इसमें कमबैक किया था श्रीदेवी जी ने। एंड सच बताऊँ इंग्लिश देखने के बाद ना सच में बहुत कुछ मुझे मजा आया देखने के बाद, बहुत सही चीज़ें पता लगी एंड बहुत ही अच्छी फिल्म थी एंड श्रीदेवी का कमबैक था, बहुत ही अच्छी फिल्म। 14 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस मूवी को, आज ही के दिन रिलीज हुई थी। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी फिल्म थी जो रिलीज हुई थी आज ही के दिन, एंड किस्मत लव पैसा दिल, ये 2012 में बहुत ही अच्छी फिल्म, विवेक ओबेरॉय मलिका शरावत की फिल्म थी। आज 14 साल कंप्लीट कर रही है ये मूवी भी। तो ये कुछ फिल्म थी जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी 5 अक्टूबर को, मैंने आपको बता दी। इसमें से आपकी कौन सी फेवरेट है? जोरदार तालियां, मतलब आई लव दिस मूवी स्टारिंग बाय आयुष्मान खुराना, ऑफ कोर्स यार वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट। अंधाधुन मुझे अच्छी लगती है फिल्म, बहुत अच्छी मूवी है, नहीं देखी है तो आप जरूर देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी आप लोगों ने जो मैसेज किए हैं उसके लिए थैंक यू। और आज की सुबह मैंने आपसे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था जिसपे बड़े कमाल के आंसर किए आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पूरी क्या कह रही है पाजी से? हाँ बताओ यार क्या कह रही है, चलो मैं कंप्लेन लिखता हूँ। 3, 2, 1 गो। पैसे नहीं है, अच्छा मेला आने दो, एक तो लद वंगला लद, इसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ फिलहाल पाजी आयुष्मान खुराना यार अभी श्राद्ध चल रहे हैं तरस दे रहे सोने, कुछ गानों में पंजाबी इतनी क्लियर होती है ना, सर करके आप बोलने लग जाते हो, मतलब उन गानों के साथ साथ जब आप गाते हो रिपीट करते हो तो आपको लगता है हाय मेरे को पंजाबी आ गई यार, कितनी अच्छी पंजाबी गाने हैं, कितने अच्छे लिरिक्स हैं। चलो ये गाना किसकी रिक्वेस्ट पे आ रहा है? शगुन ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है मुझे। हाय शगुन, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आप कहाँ से जुड़ी हैं प्लीज बता दें। अच्छा ये जो वेंडर्स होते हैं ना फेस्टिव टाइम में, क्या होता है ना जो हमारे आसपास में जब फेस्टिव सीजन आता है स्पेशली, तो कुछ वेंडर्स को जो है ना हटाने की बात की जाती है। तो भैया अब जो है उनके लिए अच्छी गुड न्यूज है, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं ना, तो भैया नवरात्रि दिवाली छठ पूजा के दौरान उन्हें बेवजह नहीं हटाया जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के तहत भैया अगर उनको हटाया भी जाता है, अगर वहां पर रिक्वायरमेंट है कि उनको हटाना पड़ रहा है, तो उससे पहले उनको दूसरी जगह प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि वो वहां पर अपना स्टॉल लगा सके। जो वेंडर्स होते हैं उनके लिए अच्छी गुड न्यूज है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए त्यौहार सबका होता है ना, और सबके साथ त्यौहारों को मनाना चाहिए, लोकल फॉर वोकल। मैं अभी भी वही बोलूंगा कि कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी त्यौहार आता है, हर किसी के चेहरे पर रौनक आनी चाहिए। फेस्टिवल का मतलब क्या है? हैप्पीनेस, है ना, हम त्यौहार मनाते हैं अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, है ना। तो ये जो बेचारे आसपास में वेंडर्स होते हैं, जो बेचारे रेहड़ी पटरी पर अपने स्टॉल्स लगाते हैं, है ना, अगर उनसे शॉपिंग करें, उनका ख्याल रखें तो कितना अच्छा होगा। और बाकी उनके लिए तो अच्छी ग्रेट न्यूज है ही, तो भैया आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। बाकी मैं अभी आपको एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो बहुत ही कमाल की कड़क अपडेट है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, एंड आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए। आप लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सएप किए हैं, आपको जो भी गाने सुनने हैं डेफिनेटली बताऊंगा। दुष्यंत 3 का जलवा देखने को बहुत ही अच्छा मिल रहा है भाई, 2 दिन में 177 करोड़ पार कर गई अजय देवगन की मूवी, बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर रही है। अगर आप इस वीकेंड जाने का प्लान कर रहे थे तो जरूर आपको जाना चाहिए था, नहीं गए तो भाई चले जाना। अभी इनकी बात सुनते हैं, और बाकी आपको सुनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें मुझे 9837896896 पे। व्हाट्सएप में बड़े बदलाव हो रहे हैं, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, अरे यार मैं कैसी बात करूं, हर कोई तो व्हाट्सएप यूज करता है,
1: सारी दुनिया
0: को बताऊंगा अभी व्हाट्सएप पे क्या फीचर आने वाला है। आप ऐसे ही ट्यून इन रहो आनंद के साथ, डोंट गो एनीवेयर।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: कहें बहुत अच्छा लग रहा है आपका परिवार पूरा हो गया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। एंड साथ में लिखता है बड़ी खुशी की बात है, हमेशा आप स्वस्थ रहें और आपकी फैमिली हैप्पी रहे। आनंद जी आपकी आवाज बहुत ही प्यारी लगती है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और आपकी बातों के साथ जब सुबह की शुरुआत होती है तो दिन और भी अच्छा लगने लगता है। ओ माय गॉड, सारा मतलब जो है लगता है ये दिल आज एक ही दिल है वो चुरा कर ही मानेंगे आप। हाँ, अंत में एक छोटे से गाने की रिक्वेस्ट है, जो गाना आपने प्ले करवाया था साहब वही गाना चल रहा है, थैंक यू सो मच। और जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं वो है ये, क्या बात है, सही जवाब, ये मेरे सर से बाहर जा रहा है। दीपिका पादुकोण जी कभी मिलेंगे तो मैं जरूर पूछूंगा ये चेन्नई एक्सप्रेस के गाने में जो आपने डाला था आखिर इसकी जरूरत क्या थी, वो तो वैसे भी प्यारा गाना था यार।
1: गुड मॉर्निंग आनंद, गुड मॉर्निंग जी, मूवी पूछ रहे हैं वो है राजू बनिया जेंटलमैन, जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला हैं, जिसमें शाहरुख खान के सपने साकार होते हुए देखती है वो।
0: अच्छा जी।
1: और उसे फिर बाद में समझ में आता है कि हाँ मुझे कहीं बड़ा सपने पा करके उसको जो है इतना एटीट्यूड नहीं आना चाहिए था, फिर वो दोबारा अपनी अच्छी जिंदगी जीता है।
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पे मैं बोलना चाहता हूँ, आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए का नकली चेक। शायद ये आप तक पहुँचने में थोड़ा सा मुश्किल वाला टाइम लगा दे, लेकिन फिलहाल सही जवाब है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल अगर आपको पता है क्या सच में वो यही मूवी है तो आप मुझे बताओ 9837896896। शाहरुख खान जूही चावला की एक मूवी है जिसमें शाहरुख खान एक बड़ा सीधा साधा इनोसेंट सा बंदा होता है जिसकी लाइफ में बड़े सपने होते हैं, बड़ी लग्जरी होती है, एक बड़ी जॉब होती है, बेहतरीन जिंदगी होती है, लेकर मुंबई पहुंचते हैं जहां जूही चावला मिलती है उनको, उनसे प्यार हो जाता है। लेकिन क्या करें, जिंदगी का भाई दस्तूर है एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे ट्रैक पर ले आती है शाहरुख खान की लाइफ जहां उनको अपनी पहचान और सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। और कभी कभी वो अपने प्यार में जो है भाई साहब इतने ज़्यादा मशरूफ हो जाते हैं कि अपना काम भूल जाते हैं, क्योंकि क्योंकि काम में इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं कि भैया वो अपनी प्रेमिका को भूल जाते हैं। इस चक्कर में बहुत बड़ी पंगे भी होते हैं इनके बीच में। अगर आपको पता है कौन सी फिल्म है तो प्लीज़ फटाफट मुझे बताओ 9837896896 पे। ये मेरे पास हल्का वर्मा बुद्धि भी अरसे से जवाब दे रहे हैं। गुलाम चरणी पाशा मुझे गाने की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं जी, ज़रूर मैं आपका गाना लगाऊंगा, थैंक यू सो मच। रिजवान खान साहब ने गाने की रिक्वेस्ट की है, एक चुम्मा तो बनता है, बिल्कुल जी ये लीजिए, आपको चुम्मे वाला गाना भेज रहा हूँ, आप इंजॉय कीजिए आज की सुबह इस गाने को, थैंक यू सो मच यार, और बहुत बहुत शुक्रिया। राम बिजना से हमारे साथ जुड़े थे हमारे प्यारे श्रोता, मतलब क्या गाना लेकर आए हैं जी आप। लिखते हैं आनंद भाई, गुड मॉर्निंग, आप जिस फिल्म की बात कर रहे हो वो यस बॉस की बात तो नहीं है सर, ये थोड़ा सा गलत जवाब नहीं, पूरे गलत जवाब है। व्हाट्सएप में कुछ गड़बड़ी हो रही है, रिजवान खान साहब लिखते हैं गाना चला दीजिएगा। चलिए आपकी रिक्वेस्ट शॉर्टलिस्ट कर ली मैंने, शफी अहमद साहब आपका गाना डेफिनेटली प्ले होगा थोड़ी देर में। एंड कोमल थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, सही जवाब के लिए शुक्रिया। सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीज मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, एक बहुत ही खूबसूरत और आइकॉनिक गाने की रिक्वेस्ट की है, जरूर थोड़ी देर में मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा।
2: मैंने तुझे बचाया है, गुंडों से छुड़ाया,
0: पता नहीं भाई
2: मैंने, तुझे बचाया,
0: मैंने नहीं देखा।
2: हाँ, पूछ ले,
0: 11:44 स्टेशन क्लॉक में बक पागल आदमी, कैसी बातें करो हैं क्या गाने बने यार बॉलीवुड में, ऐसे अपने दिल की बात क्यों मत सीधा प्ले कर दो। मैं कुछ जो है सोच रहा था आपको व्हाट्सएप के बारे में बताने के लिए, लेकिन चलो ये गाना, उसके बाद कुछ एड ब्रेक, फिर मैं आता हूँ, सारी जानकारी इमीडिएटली बताता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। जो मैसेज आपने किए हैं, जो सही जवाब दिए हैं और जो गाने आपने भेजे हैं, वो सब कुछ यहीं पर प्ले होंगे इसी स्टेशन पर।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: आंखों में तू सवाल करे।
1: काश ऐसा सच में हो जाता भाई। जरा तू बोल बोल बोलो।
0: मीठी मीठी बातें है कमाल,
1: सच्ची बात।
0: आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई।
1: हाय हाय, कौन है वो, नाम बताओ मुझे उसका।
0: दिल दे किन्ने मर दे।
1: ओह माय गॉड,
0: एक किन्ने
1: पे ब्रांड न्यू हाई रेटेड गबरू
0: नखरा तेरा नहीं। हाई रेटेड गबरू रुमारे हाई।
1: 11:51 मेरा चलने का समय हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं अभी WhatsApp के बारे में, एक फीचर के बारे में बता रहा था आपको। तो आपको बता दें भैया, WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को तेजी से नए नए फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है ताकि यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सके। और अब WhatsApp चैनल को लेकर एक बड़ी जो है बात सामने आई कि वो एक बदलाव करने जा रही है और जल्द ही नई जगहों पर आपको ये चैनल्स देखने को मिलेंगे और इसके फायदे भी होने वाले हैं। अब इसे क्या करने वाला है WhatsApp अपडेट, उसके लिए तो आपको WhatsApp से पता लग ही जाएगा यार। हाँ जी, व्हाट्सएप एंड्राइड यूजर्स के लिए बताया जा रहा है कि जो लोग चैनल्स के थ्रू सीधा चैट करने में जिनको मतलब चाहिए कुछ नए नए एडवांस फीचर्स, जिनको चाहिए एडवांस वाले फीचर, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब क्या क्या होने वाला है इसमें नया नया अपडेट, ये तो आपको डेफिनेटली पता लगेगा, लेकिन ये फीचर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। और चेंज करना बहुत ज़रूरी है ना, जैसे ये कर रहे हैं व्हाट्सएप वाले, लगातार कोई ना कोई धड़ाधड़ चेंज करते जा रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा था खाने पीने की बात, मैंने बताई थी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो अपने उत्तर प्रदेश में मेन्यू पर लिखना होगा सब्जी कौन से तेल से बनी है। अच्छा हो जाएगा ना यार, आपको पता तो होगा कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके लिए कितना सही है, आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। उत्तर प्रदेश में होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें, आप कुछ प्रस्थानों और मेन्यू कार्ड में ये बताना होगा कि सब्जी किस तेल में बनाई गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की तरफ से नए निर्देशों के मुताबिक बताया जा रहा है कि भैया आप जो है, आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो वहां पर आपको ये प्रूफ देना होगा कि आपने जो सब्जी बनाई है वो कौन से ऑयल में बनाई है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट हमें इससे काफी हेल्प मिलने वाली है और बहुत ही अच्छी चीज हो गई है ये, तो बहुत ही बढ़िया।
0: मीठी बातें हैं कमाल,
1: ताकि अपने यूपी में ही अभी लागू हुआ है, यूपी वालों के लिए एक अच्छी बात तो यही हो गई। मैं कह रहा हूँ भाजी, जितना व्यस्त रहोगे ना उतना ही लाइफ में आप टेंशन से कम फ्री रहोगे।
0: मीठी बातें हैं कमाल कर गई।
1: थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। इन शॉर्ट आपके मैसेज को डेफिनेटली शामिल करूंगा। एंड अगर आप कॉफी पीने के बहुत बड़ी शौकीन हैं तो मैं इमीडिएटली आपको बता दूं
0: कि ने पहला तुम्हारे हनी है नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू रुमारे हनी मुंडे पागल हो गए।
1: अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं तो भैया ज़रा थम जाइए, रुक जाइए। एक दिन में आप कितनी कॉफ़ी पीते हैं ये आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं व्हाट्सएप पर। कॉफ़ी पीना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए गड़बड़ भी हो सकती है। ब्लैक कॉफ़ी अगर आप ले रहे हैं तो फिर तो सॉलिड है बॉस।
0: हाई रेटेड गबरू नुमारे हनी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक।
1: मैंने चीज देखी है, लड़कों को चाय अक्सर पसंद होती है, लड़कियों को भाई साहब हर जगह पर कॉफी चाहिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सी लड़कियां चाय लवर भी हैं। एंड इस पे हम फिर कभी मुद्दे पे बात करेंगे, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। समय कम है क्योंकि मुझे भूख बहुत जोरों की है। फिलहाल इरशाद हुसैन अंसारी साहब जुड़े हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, लिखते हैं सैयद शायरी कली जी का नाम, मेरा अंसारी बाबू अंसारी। गुड मॉर्निंग सर, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी, थैंक यू। हेलो जी, सवाल का जवाब है शाहरुख खान एंड इस मूवी का नाम है। बिल्कुल जी, आपने सही जवाब दिया है। एंड बचपन में मूवी देखी थी, आज आपने याद दिलाई है, तो दोबारा इस फिल्म को देखेंगे, बहुत ही अच्छी फिल्म है। इसका एक गाना मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं डेफिनेटली प्ले करूंगा। थैंक यू हरिओम जी, हरिओम महेश्वरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। सना एंड नाजिया तुर्क हमारे साथ जुड़ी हैं, ये अपने यूट्यूब चैनल पर इन्होंने कोई सॉन्ग अपलोड किया है जिसको सुनना चाहती हैं। बिल्कुल जी, हम भी सुनना चाहेंगे, लिखती हैं सर हमारा भी मैसेज शामिल कर लो एंड हमारा सॉन्ग भी आप प्लीज प्ले कर दीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए एक मैसेज को और शामिल करेंगे। हाई मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, आपको भी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी वेरी मच। आनंद भाई कैसे हाल चाल है, इस सवाल का प्लीज आंसर करके जाना। ऑल राइट, शर्त नहीं लगा रहे भाई। हेलो आरजे जी, प्रोग्राम प्रसारक को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, प्रणाम, कैसे हालचाल। आनंद जी आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बीबी आलिया, नौशाद सलमानी, निसार सलमानी हमारे साथ जुड़े हैं। आयान बाबू, शुक्रिया जी हमें प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। अरे भाई थैंक यू जी। साथ में सुशील देवी एंड हमारे पास मैसेज आया कुमार गौरव जी का,
0: तेरे बिन नहीं मैं जीना।
1: ये बात तो मैं रेडियो के लिए बोल सकता हूँ। राजू बन गया जेंटलमैन बहुत ही अच्छी फिल्म थी, जिसको देखकर मुझे बड़ा मजा आया। रिसेंटली मैंने मूवी देखी और मैं जब भी कोई फिल्म देखता हूँ उसकी स्टोरी को जरा ध्यान से देखता हूँ, क्योंकि मैं उसी स्टोरी से तो सवाल निकालता हूँ आपके लिए। कांग्रेचुलेशन भरत नागपाल जी एंड अलका वर्मा जी एंड साथ में कोमल, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। बिल्कुल यार, मूवी को ध्यान से देखा करो। अब देखो मूवी जो है रेडियो पे भी आ गई है, आपको इन शॉर्ट स्टोरी बताते हैं और आपसे पूछते हैं, तो इसीलिए जरा ध्यान से देखा करो। बाकी जिन लोगों ने मैसेज किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके गाने डेफिनेटली प्ले होते रहेंगे। अभी मैं लूंगा अपनी वाणी को यहाँ पर दूंगा विराम और आपसे लूंगा इजाजत, क्योंकि अभी थोड़ा सा करना है आराम। मेरी जुबान और मेरा गला दोनों ही आराम मांग रहे हैं और साथ में कुछ खाने पीने की चीज भी मांग रहे हैं। तो आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ फैबुलस आफ ये जो दिन है वो आपका जाए फैबुलस, मॉर्निंग जाए, आफ्टरनून में तब्दील होने वाली मात्र 3 मिनट के बाद 12 बजेंगे। एक तरफ से हैव अ गुड डे, ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मंडे की ब्रांड न्यू एक अमेजिंग मॉर्निंग थी, आप जहां भी जा रहे हैं गुड लक, ऑल द बेस्ट, एक नई ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, ढेर सारी ऊर्जा एंड पॉजिटिविटी आपको मिले। आप जो भी चाहते हैं क्रॉस योर फिंगर मैनिफेस्ट कीजिए, डेफिनेटली अच्छा होगा। एंड पूरे दिन में कोई ये काम जरूर ऐसा कीजिए जिससे आपको रात को राहत की नींद आए। अभी के लिए आरजे आनंद कहता है साइनिंग ऑफ, जल्दी होगी मुलाकात इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं, तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
7: कौन है ये?
1: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, 3 से 5 मंडे टू सैटरडे, करती है आपसे दिल की बात।
8: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
9: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
10: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी। और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान भी उपस्थित है हमारे बीच में। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से हमारे साथ एके सिंह वरिष्ठ प्रबंधक जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज सर के साथ बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं स्टूडियो में और ढेर सारी जानकारियां जो है किसान भाइयों आज आपको मिलने वाली है। तो आइए सर का स्वागत करते हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? नमस्कार।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ आनंद जी, और जो आपने स्वागत किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत जो धन्यवाद, और जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार।
0: जी किसान भाइयों, आज का विषय रहेगा मक्का की फसल में कृषि कार्य। और
1: जी हाँ,
0: तो सबसे पहला प्रश्न होगा भारत सरकार की जो ये
1: पीएम प्रणाम योजना है,
0: पीएम प्रणाम योजना के बारे।
1: और पीएम प्रणाम खास तौर से जो हमारी खेती है, जो हम जो मतलब फसल उगाने का तरीका है
0: जी,
1: उसमें जो पोषण का तरीका है उसका संज्ञान भारत सरकार ने वैज्ञानिकों के द्वारा लिया है। और उसमें प्रयास ये है कि जो उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है
0: जी, जी।
1: वो संतुलित हो और सही ढंग से हो, जिससे कि उनका जो अतिरिक्त इस्तेमाल है या सही ढंग से जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उससे जो होने वाले नुकसान है उनसे हमारी खेती बचे, नंबर एक। तो उसका ये उद्देश्य है
0: जी।
1: तो उसके लिए सरकार ओवरऑल बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, जैसे कि शैक्षणिक योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां लोगों तक जो उपलब्ध जो हो रही है सरकार की तरफ से, जिससे उनको जो जानकारी मिल रही है कि संतुलित उर्वरक उपयोग क्या लाभ है। बहुत सारे उर्वरक ऐसे भारत सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं जिनमें एक संतुलन के रूप में ही जो पोषक तत्व उपलब्ध है, जिनको कि हम एनपीके बोल देते हैं। बहुत से एनपीके ऐसे भी हैं जिनमें सल्फर का भी पोषक तत्व है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये सारे पोषक तत्व करीब करीब उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ओवरऑल एक ही उर्वरक में हमें सारे पोषण उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमें अलग से उर्वरक और किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की कुछ योजना है। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल अगर हम जो देखें तो एक समग्र रूप में जो खेती में जो खर्चा है उसको कम करना का उद्देश्य है। तो वो ऐसा खर्चा नहीं है कि खाद के ऊपर ही, मतलब सरकार ये चाहती है कि जो अपना खाद है उसके ऊपर ही खर्चा कम हो, जो हमारे किसान है जो वो खेती पे खर्चा करने में भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि जब उनके खर्चे में कमी होगी तो उनकी आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि भी हो। दूसरा ये है कि जो हमारे अपने जो संसाधन है, अपने संसाधन जैसे गोबर की खाद है
0: जी,
1: कंपोस्ट खाद है
0: जी,
1: इसके अलावा जो फसल अवशेष है, फसल अवशेष मान के चलो जैसे कि हमने धान उगाया, धान का ऊपर का हिस्सा हमने अनाज ले लिया, पुआल रह गया उस, ठीक है, अब जो वो है हम उसको सुधारे तो बेकार की चीज है, नहीं, जितना पौधे ने जो पोषण उसमें से खेत में से लिया है लगभग उसका 50-60% जो भी उसने उसमें से तत्व लिए वो उस चीज में उपलब्ध होते हैं, 30-40% सिर्फ अनाज में गए हैं, बाकी पौधे में। अगर वह पौधे का जो अवशेष है जिसको हम फेंक रहे हैं, अगर हमने उसको सड़ा के खेत में ही इकट्ठा किया या खेती जो मिट्टी उसमें मिला दिया, तो वो एक तरह से उर्वरक का ही काम करेगा, पोषण का ही काम करेगा। और अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे, मिट्टी की जाँच कराएंगे, तो उसी अनुपात में हम जो उर्वरक का इस्तेमाल है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं, जिससे हमारे खर्चे कम होंगे। तो भारत सरकार का बड़ा ही एक अहम जो एक तरह से मतलब प्रयास है कि कैसे भी टिकाऊ खेती की तरफ हम जाएं, जो हमारी जो उर्वरक जो आयतित उर्वरक हैं उनके जो इस्तेमाल में जो मतलब जो है एक तरह से अंधाधुंध उनका जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो कैसे कमी लगाई जाए या जो उनका असंतुलित जो उपयोग हो रहा है उसको जो एक तरह से संतुलन में लाया जाए और जो हमारे खेती में संसाधन अपने हैं जो कि पोषण है हमारी फसल के लिए जो कि एक तरह से जो हमारी खेत की मिट्टी है उसके लिए आहार है वह हम ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, हम उसके बारे में जानकारी रखें और उसका हमारे किसान लाभ ले सकें जिससे कि हम धीरे धीरे टिकाऊ खेती की ओर बढ़े। टिकाऊ खेती से अर्थ ये है कि ऐसा न हो कि हम इसी तरह से जो हमारे उर्वरक हैं या जो मतलब पोषण है उसका असंतुलित इस्तेमाल किए और जो हम लगातार जो फसलें उगाते जा रहे हैं उससे बहुत अत्यधिक जो मतलब जो दोहन करते रहे तो एक दिन ऐसा न हो कि हमारे खेत अच्छी फसल न उगा पाए। तो ये पीएम प्रणाम का एक अहम उद्देश्य जो ये है इसके लिए सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है, हम लोग भी जागरूकता का अभियान अपनी ओर से जारी रखते हैं, किसानों को समझाते हैं, गांव गांव जाके मीटिंगें अन्य कार्यक्रम इस तरह से आयोजित करके संतुलित उर्वरक उपयोग में हम अपनी जानकारी देते हैं। हमारी कृषि की प्रयोगशालाएं भी हैं, उनसे मिट्टी की जांच हमारे यहाँ पे जो फ्री होती है लगभग साल के लगभग 3000 सैंपल हम जो चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट सीधे फार्मर तक पहुँचाते हैं और उसके साथ साथ उनको समझाते भी हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरह से आपने जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है और अपने खेत को कैसे स्वस्थ रखना है।
0: इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा सर कि प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में जो संबोधन दिया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को भी दीजिए।
1: आनंद जी, वो जो संबोधन है वो खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है कि जो भी उर्वरक है उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें। अगर सही ढंग से इस्तेमाल होगा तो उनकी सही मात्रा का इस्तेमाल होगा। अगर सही ढंग से हम जो है उसको जो है मतलब नहीं करते हैं तो ज्यादा मात्रा का हम इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा संबोधन दिया है और उसकी एक रिकॉर्डिंग है, तो आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो आप अवश्य किसानों को सुनाएं, उससे उनको एक मार्गदर्शन जो आएगा कि वो उर्वरक के उपयोग में सावधानी बरतें और उसका सही जो इस्तेमाल हो उसके बारे में संज्ञा।
0: थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं बिना किसी देरी के आइए जरा सुनते हैं इस ऑडियो को।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
0: बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये जानकारी और मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको भी अच्छी लगी होगी। इसी बीच अनिल कुमार सर आपका स्वागत है एक बार फिर से और अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, मक्का की फसल में कृषि कार्यों में जिसे आज का विषय है इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल होगा कि मक्का की फसल के बारे में आप थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
1: जी हाँ, मक्का की फसल आनंद जी,
0: जी
1: पहले होता था कि एक इसी सीजन में हम मक्का की खेती करते थे,
0: बिल्कुल
1: खरीफ में
0: जी,
1: रबी में कुछ ऐसे हिस्से हैं हैं, जैसे कि अगर हम जाए तो दक्षिण का हिस्सा कह लें, बिहार का कुछ हिस्सा था वहाँ होती थी, बाकी किसी अन्य क्षेत्र में रबी में मक्का नहीं होता। जायद में भी बहुत कम मक्का चारे वगैरह के लिए उगाते थे, अनाज के लिए नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में मक्का एक बड़ी अहम फसल हमारे पूरे भारत वर्ष के लिए हो गई है और बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है, बहुत अच्छी फसल भी हो रही है
0: जी।
1: और वो होता है आपका जो जो है मतलब एक तरह से मक्के को जो हम सोचते थे खरीफ में होती है, लेकिन अब वो जायद सीजन में भी अच्छी मक्का होने लगी है।
0: ओके।
1: और खरीफ में तो होती होती है। तो इसके उपयोग के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि इसकी रोटियां बनती हैं, इसके कॉर्न बनते हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी खाने की सामान जो कि जो है इससे तैयार होते हैं मक्का से, एक तरह से एक बहुत अच्छा भोजन, स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन है हम सबके लिए मक्का
0: जी।
1: तो एक तो ये हो गया, लेकिन इसका औद्योगिक भी इस्तेमाल है। इससे स्टार्च भी बनाया जाता है, इससे तेल भी बनाया जाता है, जैसे इथेनॉल हम बोल देते हैं, फ्यूल है। इससे जो कैटल फीड भी बनाया जा सकता है, इससे जो हमारे पोल्ट्री फार्म है जो मुर्गियां हैं उनके लिए खास तरह का भोजन तैयार किया जाता है। तो मक्का के बहुत सारे एक तरह से बोले जो खाने में इस्तेमाल है, औद्योगिक इस्तेमाल है, और अन्य और भी ऐसी चीजें हैं जहाँ इसके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं धीरे धीरे वो होने लगे हैं, इसलिए इसकी मांग भी अधिक होती चली जा रही है और अच्छे भाव भी किसानों को मिलते हैं और थोड़े समय में लगभग करीबन 3 से 4 महीने के बीच में ये फसल जो तैयार हो जाती है, अच्छे बीज उपलब्ध है आज की तारीख में जो अच्छा उत्पादन देते हैं, और उर्वरक तो जो उपलब्ध है ही है, और अच्छे अच्छे जो यंत्र भी उपलब्ध है। इन सारी चीजों को देख के कहें तो मक्का आज के समय में भारतवर्ष की एक बहुत ही अहम फसल हो रही है और किसान इसको अच्छे से उगा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसको और अच्छे ढंग से करें, क्योंकि अभी और अधिक उत्पादन लेने की संभावनाएं है। मक्का की जो उत्पादन अभी ले रहे हैं उससे और भी ज्यादा उत्पादन आने वाले समय में हम ले सकते हैं, ऐसी वैरायटी हमारे पास आ रही है। हमें और अच्छी तकनीकी के साथ इसको उगाना होगा और हम उगाएंगे तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा तो उसका लाभ भी हमें होगा और आर्थिक रूप से हमारे किसान संपन्न हो।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी सर। इसी बीच एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मक्का की फसल में पोषण प्रबंधन के बारे में थोड़ा बताइए किसान हाँ, भाइयों को।
1: पोषण प्रबंधन के लिए जैसे कि आपने अभी मैंने कहा था आपको कि बहुत अच्छा उत्पादन होता है और आगे भी उत्पादन की संभावनाएं हैं, तो जब आप उत्पादन ले रहे हैं तो उसी अनुपात में आपको उसको पोषण भी देना, उसी अनुपात में खेत का स्वास्थ्य भी आप अच्छा रखना होगा, उसी अनुपात में आपको आसपास का वातावरण भी अच्छा रखना। तो अब मैंने ये 3 चीजें कही, आप कहेंगे अरे पोषण हो गया, वातावरण क्या होता है, फिर आपने कहा होगा कि खेत का स्वास्थ्य क्या होता है। खेत स्वस्थ है तो वो उसमें जो भी आप उर्वरक इस्तेमाल करेंगे उसका पौधा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएगा, और खेत स्वस्थ नहीं है वो उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान के चले कोई आदमी अगर एक बीमार है, उसको हम अच्छा खाना भी दे रहे हैं, एक तो पहले वो हजम नहीं कर पाता, और फिर अगर हजम नहीं कर रहा तो उसके शरीर को भी नहीं लगे, तो उसका स्वस्थ अगर है तो जो भी भोजन देंगे उसको अच्छे से हजम होगा और उसके शरीर को लगेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसीलिए खेत का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आसपास की आबोहवा से अर्थ ये है कि हम अपने खेत के आसपास पेड़ पौधे भी थोड़े बहुत रखें, जिसमें कि जीव रहें, बहुत से पंछी रहें और सभी का एक तालमेल उसमें रहा है। ऐसा क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मक्के की जब फसल होती है तो जब हम खेत में हली चला रहे उस समय पर बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि हमारी फसल के लिए उतने अनुकूल नहीं, तो वो जो पंछी हैं उनका सेवन करते हैं और एक संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, ये आप कर सकते हैं। और दूसरा उर्वरकों का या जो पोषण का है, जैसे पोषण उर्वरक नहीं है, खाद के कट्टे ही नहीं है जो हम दुकान से लेके आ रहे हैं, पोषण हमारे खेत पे भी उपलब्ध है, जो भी फसल अवशेष है वो भी पोषण है, अगर हम उनको खेत में अच्छे से सड़ा के मिट्टी में अगर ऐड कर देंगे तो उनसे भी बहुत अच्छा पोषण मिलता है। और ये मैं कोई किताबी बात नहीं कह रहा, जो किसान खेती कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। जैसे कहीं कहीं होता है कि अरे साहब मक्का काटी उसके बाद समय नहीं मिला कि उसको उसके जो अवशेष हैं उनको अलग अलग किया जाए, तो हमने तो क्या किया, उसको खेत में ही मिला दिया और उसका असर हमने अगले फसल में देखा कि हमारी अगली फसल बहुत अच्छी हुई। आप देखिए कितना बड़ा अनुभव है उनका खुद का। किसान वैज्ञानिक हमेशा से कह रहे हैं कि फसल अवशेषों में बहुत पोषण होता है, तो उर्वरकों के साथ साथ फसल अवशेषों को खेत में मिलाएं। अब ये बात मैंने कुछ सैद्धांतिक बातें कही थी
0: जी,
1: अब आपको करना क्या है। अक्सर बोलते हैं कि भाई यूरिया डालना है हमें मक्का में, तो जो पहले आपने खाद दे दिया वो ठीक है, अच्छी बात है। जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, जब उसमें मंजरी, ऊपर वाली मंजरी की बात कर रहा हूँ, निकलना शुरू हो, उस समय एक एकड़ में लगभग 30 से 40 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत में लगाना। यूरिया लगाते वक्त आपने सावधानी क्या रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि अगर खेत पे पानी गिरा है इस समय पर, बारिश हुई है, तो भीगे पत्तों पे यूरिया का छिड़काव न करें, क्योंकि वो पत्ते के ऊपर जो रह जाएगा और पत्ते को सड़ा देगा और फसल को नुकसान होगा। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जो अपना प्रयास करें कि मिट्टी के ऊपर ही गिरे, फसल के ऊपर नहीं गिरे। उसके लिए फसल आपने लाइन में लगानी चाहिए, उसमें थोड़ा अंतर रहेगा, आप जाके भी कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, तो एक आप एक्सपेरिमेंट आप अपने से कर सकते हैं, एक खेत में आप ऐसे डालें और एक एकड़ में आप स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के लिए 100 लीटर पानी में और एक अगर आप देखें तो एक एकड़ जो खेत के लिए इस अवस्था पर 150 लीटर पानी आप ले सकते हैं या 200 लीटर ले सकते हैं। उसमें अगर 100 लीटर पानी के हिसाब से 2 लीटर यूरिया मिला लें, 2 लीटर का 2 किलो के हिसाब से आप यूरिया मिलाएं, थोड़ी जिंक मिला लें। जिंक बहुत फायदे का काम करती है मक्का के लिए। उसमें जिंक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्वास्थ्य भी पौधे का अच्छा होगा और उपज भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो यूरिया जिंक मिलाएं, जैसे 2 किलो 100 लीटर में यूरिया मिला लिया और करीब करीब 1 किलो जिंक मिला लें, मिला के आप स्प्रे करके दें। स्प्रे ऐसा करिए कि उसके बाद लगभग करीबन 8-10 घंटे बारिश न हो, पत्ते उसको अच्छे से सोख लेंगे। और स्प्रे करने के लिए जो स्प्रे की जो आप है उससे फुहारा ऐसा न बने, बूंद बूंद न बने, वैसा धुएं जैसा हो जाए, तो वो अच्छे से पौधों पे ओस की तरह समा जाएगा। और जब ये स्प्रे करें तब थोड़ा प्रयास ये करें कि थोड़ी धूप निकली हो, जिससे कि दाग खुल जाता है, उसके अंदर छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं और वो अच्छे से उसको सोख लेते हैं। ये भी करके देखिए, बस अंतर देखिए, इससे फायदा क्या होगा, बहुत कम यूरिया लगेगा, पौधा अच्छा विकसित हो, क्योंकि जो जो आपकी 40-45 दिन की मक्का होती है तो उसके पत्ते काफी चौड़े हो जाते हैं और वो अच्छे से पानी को सोखने में सक्षम होते हैं। पानी सोख रहे हैं तो उसके साथ आपने उर्वरक दिया है, पोषण दिया है, उसको भी सोखेंगे, उनका अच्छे से विकास होगा। तो एक तो ये यूरिया के बारे में बात होगी। फिर उसके बाद आप अगर चाहें तो आपको कुछ लगता है कि और पोषण आपको देना है तो आप और भी कोई उत्पाद हैं उनका कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिंक और यूरिया अगर आप देंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिले।
0: बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से इस विषय पे जानकारी दी। और इसी बीच एक और प्रश्न रहेगा कि मक्की फसल में सिंचाई एवं जल निकासी के बारे में थोड़ा बताएं।
1: हाँ, सिंचाई के बारे में ये है कि शुरुआती जो अवस्था है उसमें नमी बनाए रखें
0: जी,
1: नमी हमेशा ही रहनी चाहिए, लगभग नमी की आवश्यकता उस समय जो कम हो जाती है जब पौधे में दाने लगभग एक तरह से पकने की तरफ आ जाते हैं, उस समय हमें पानी की जरूरत नहीं होती, पौधा भी नहीं लेता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर पानी जो है इंद्रदेव की तरफ से आ रहा है, बारिश हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खेत के आसपास आप जाते हैं आपको मालूम पड़ जाता है फसल सूख रही है नहीं सूख रही है, पर जो फसल हरी है, जो हरी भरी है और नमी है। तो अगर कम पानी है तो आप हल्की सिंचाई करें, सिंचाई ज्यादा न करें। ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आपने पानी बहुत लगा दिया और अगले दिन अच्छी बारिश होगी तो उसमें पानी रुक जाएगा खेत, और रुका हुआ पानी मक्का को नुकसान पहुंचा। तो सिंचाई का प्रबंध करें उतना, जिससे कि खेत में नमी बनी रहे, और पानी निकास का भी कुछ अरेंजमेंट रखें, जिससे कि अगर ज्यादा पानी हो जाए तो वो उस पानी को निकाल सके। वो पानी निकालने का तरीका ये तो एक तो ये है कि आप खेत से बाहर निकालें, अगर ऐसा नहीं है तो जहां ढाल है खेत में, ढाल की तरफ नुक्कड़ की खड्ड में एक जो खड्डा खोद दे, और वो पानी उस खड्डे में एक जगह ही तो इकट्ठा होगा, सारे खेत में तो नहीं इकट्ठा होगा, तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो उससे सारी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है कि आपके 100-200 पौधे खत्म हो, लेकिन पूरी फसल आपकी बच जाएगी। तो पानी निकास की ये व्यवस्था आप अवश्य करें खरीफ मौसम में, क्योंकि ज्यादा बारिश भी हो सकती है और जो अगर कम है तो आप सिंचाई कर ही देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है सर,
0: बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी थोड़ा बताइए।
1: हाँ, खरपतवार के बारे में जैसे मैंने कहा था कि खरपतवार अगर है तो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: उसका भोजन खा लेते हैं और उसके विकास को अवरुद्ध करते हैं मुख्य फसल। तो इसके लिए वैसे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि आप हाथ से निकालें, अगर कोई छोटा रकबा है आपके, आपने बहुत ज्यादा मक्का नहीं लगाई और आपके पास श्रम उपलब्ध है, तो खुरपी से अगर आप करें गुड़ाई तो वो सबसे उत्तम होती है। उसका फायदा ये, एक तो पौधा निकला, दूसरा फायदा ये है कि खेत को हवा लग गई, क्योंकि खेत का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हवा लगनी चाहिए, उसको लग रही है अपने आप, लेकिन जो नीचे जड़ें हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उनको भी हवा लगने, जब हम इसमें जब मतलब जो खुरपी निकालेंगे तो वो खुल जाती है मिट्टी, अच्छे से हवा लगती है, उनका अच्छे से विकास होता है और वो ज्यादा पोषण ले पाती है फसल, तो पौधा सशक्त बनता है। तो खुरपी से करें अगर संभव है। एक इसका उपाय है, एक दवा आती है हमारी उत्तम पौन के नाम से, इसका करीबन 100 से 125 ml आप ले, मात्रा एक एकड़ के लिए है, और करीबन 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसको छिड़कें, और इसको छिड़कना कब है ये आपको ध्यान रखना है, जब फसल आपकी जैसे 20 दिन की हो उस समय पे आपको इसका छिड़काव करना है। तो ये लगभग जो खरपतवार है उनको रोकने का प्रयास करेगी, ये पहली अवस्था होगी। उसके बाद भी हो सकता है कुछ खरपतवार आपको दिखे, तो जब आपको समय मिले खुरपी से निकलवाइए श्रम के, उसके बाद फिर दवा का इस्तेमाल न करें, कोई उससे लाभ नहीं होगा, खर्चा होगा आपका। और मैंने कहा खरपतवार नाशी का सिर्फ एक बार ही प्रयोग करें, बार बार प्रयोग खेत में न करें, इससे आप बचें।
0: एक प्रश्न और है मेरे पास कि मक्का की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में अगर आप जानकारी दें तो।
1: हाँ, कीट इसमें आते हैं, जैसे कभी कभी हम देखते हैं मक्का का भुट्टा है, हमने खोल के देखा तो उसमें एक इल्ली दिख जाती है, तो उतने बीच में उसने दाने खा लिए, वो दाने खत्म हो जाते तो दूसरे खाती है।
0: जी जी।
1: इसके अलावा जो उसका पौधा है उसमें भी इल्ली पाई जाती है, इल्ली का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसको हम अगर कहें तो एक तरह से बोल देते हैं लट बोल देते हैं, है जी। इसके अलावा उड़ने वाले चेपा वगैरह होता है, ये भी आसरा है। तो जो इल्ली वाले हैं उसके लिए दवा एक आती है हमारी उत्तम प्योटा, 60 ml दवा ले लें, 200 से 300 लीटर पानी ले लें। पानी ज्यादा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आकार काफी बड़ा होता है फसल।
0: ओके।
1: तो ये पानी में आप घोलें और इसका स्प्रे करें, इससे लगभग इल्ली से संबंधित जो जे हैं वो करीब करीब आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और स्प्रे करने के लिए, क्योंकि मक्का के खेत में आप घुसेंगे कैसे, बड़ी समस्या है क्योंकि बड़ी होगी, तो स्प्रेयर जो लें वो आप ओवर स्प्रेयर है तो उसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। आपके पास नहीं है, किसी और किसान के पास है, आजकल रेंट पे मिलते हैं, लोग करते भी हैं, ट्रैक्टर के पीछे अपनी टंकी लगा के ले जाते हैं, एक चार्ज लेते हैं आपसे। ध्यान यही रखें कि उस जो भी स्प्रे करने आ रहा है उससे पहले बात कर लें कि टंकी साफ करके लाए, उसमें किसी भी खरपतवार नाशी की कोई अंश नहीं होना चाहिए, वो अगर हुआ तो पूरी फसल को खत्म कर सकता है उस टाइम पे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, साफ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर पानी में मिटी है तो दवा का असर कम हो जाता है। अच्छे से कराएं, जितनी मात्रा कही जा रही है उतनी प्रयोग करें, कोई और चीज इसमें न मिलाएं, क्योंकि आप दुकान पे जाते हैं दुकानदार कुछ और दे दे, हमें लगता है चलो एक बार में ही सब कर दो, ऐसा लोभ न करें। हाँ, आपको अगर कोई रोग है तो फबून नाशी आप इसके साथ जरूर मिला सकते हैं, रोग में जैसे कि आपकी धारियां बन जाती हैं, लीफ ब्लाइट रोग होता है, इसके अलावा चारकोल राट रोग होता है, आपका रतुआ रोग होता है, ये बहुत अलग अलग रोग होते हैं जो कि पत्तियों पे आपको देखने मिलते हैं, वो जरूर आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए एक दवा आती है VRM-45 है, एक मैंजे में हमारी दवा, ये बड़ी सटीक जो खरपतवार नाशी है ये लगभग सब रोगों में थोड़ा बहुत काम करेगी और ठीक कर देगी। इसकी दवा 600 से 800 ग्राम में, पानी की मात्रा उतनी रख सकते हैं और इसका इस पर अगर रोग है तो, अगर रोग नहीं है, फसल आपकी रोग से स्वस्थ है, सिर्फ कीड़े हैं, तो कीटनाशी का प्रयोग करें और रोग के लक्षण दिखें तो इसका आप स्प्रे करें तो वो सबसे अच्छा होगा। हालांकि आजकल जो बीज आप इस्तेमाल करते हैं उनका पहले उपचार होके आता है, रोग रोधी होते हैं, तो आमतौर पर रोग आने की संभावना कम रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपको रोग के जो मतलब अगर देखें लक्षण, तो कोई भी फफूंदनाशी जो मैंने आपको नाम बताए, मेंजिम है, VRM-45 है, इनमें से कोई एक दवा आप ले सकते हैं। VRM-45 है, इसकी करीबन 800 ग्राम दवा की आवश्यकता होती है। मेंजिम 400 ग्राम दवा की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा आप 300 लीटर के आसपास रख सकते हैं। ये रोग को नियंत्रण करने के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन रोग के नियंत्रण में जो आपको विशेष चीज ध्यान रखनी है, रोग की शुरुआत अवस्था में ही करें। ऐसा नहीं बहुत रोग आ गया जैसा तो हम स्प्रे करेंगे। उसमें क्या है कि जो जो आपका पौधा है जिसमें रोग आ गया और जो रोग से खत्म हो गया हिस्सा, वो फिर ठीक नहीं होता। रोग को रोकता है वो आगे के लिए, लेकिन जो उसका एक तरह से नुकसान हो गया उसको वो उल्टा नहीं कर सकता, रिवर्स नहीं कर सकता। तो रोग दिखे तो फौरन आप स्प्रे करिए, उसमें लेट नहीं होइए। और इनका बार बार स्प्रे न करें, इंतजार करें ठीक होने का। और ठीक होते हैं अच्छी दवा लाएं। तो मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि दुकान से जब भी दवा लें, रसीद जरूर लें। बिना रसीद के कोई दवा नहीं लिखें। उसमें वो दवा का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, रेट लिखेंगे और कितनी जो मात्रा आपको दी गई है वो देंगे। दूसरा, आजकल जो ये जो भी पैकिंग होती है उस पे कस्टमर केयर नंबर होता है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए उससे आप पूछ सकते हैं, फोन करके दुकानदार से भी पूछ सकते हैं, दुकानदार भी आपको जानकारी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लगभग अब हम अपने अंतिम चरण की ओर हैं, प्रोग्राम की जो है समाप्ति का समय हो गया है। लेकिन जाते जाते एक और मेरा अंतिम सवाल रहेगा, मक्का की फसल में रोग प्रबंधन के बारे में थोड़ा जानकारी।
1: हाँ, रोग प्रबंधन के में जैसा मैंने आपको कहा था, क्योंकि मैंने कीट प्रबंधन के साथ कह दिया जी, रोग के लक्षण दिखाई दें वैसे ही कोई न कोई फफूंदनाशी का आप प्रयोग करें, तो उससे आप फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, उसका लाभ मिल सकता है। आजकल बीज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, उपचारित बीज होते हैं, तो उसमें संभावनाएं उतनी अधिक नहीं रहती कि रोग आएगा। लेकिन फिर भी रोग आता है तो फफूंदनाशी का आप प्रयोग करें। फफूंदनाशी में चंबल फर्टिलाइजर के एक मेंजिब है, एक VRM-45 है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। VRM-45 800 ग्राम के आसपास है और जो 300 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे करें, मेंजिब है वो 400 ग्राम के आसपास है। इस तरह स्प्रे करके रोग आने के लक्षण दिखाई उसी समय पर आप इसका स्प्रे करके रोगों की रोकथाम कर सकते।
0: अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना इम्पोर्टेंट समय आप हमारे स्टूडियो में निकाल कर आए और हमारे किसान भाइयों के लिए तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर, तमाम बिंदुओं पर आपने जो विस्तार से चर्चा करी, तो आपका FM मुरादाबाद और RJ आनंद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है। चलते चलते कोई एक संदेश जो आप सभी को देना चाहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो मक्का जो हमारी फसल है ना साहब
0: जी,
1: ये एक पत्ती वाली फसल है, मतलब संकरी पत्ती वाली
0: जी जी।
1: अगर इसके साथ चौड़ी पत्ती वाली फसल हम उगाते हैं तो काफी फायदा होता है। उससे एक तो क्या है कि खरपतवार रोकने में सहायता मिलती है, दूसरा बहुत सारे जैसे कि जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे हैं, जैसे कि मक्का के साथ आपने उड़द उगाई, मूंग उगाई बीच में जो कि उसके फारे हैं, तो वो उड़द और मूंग के जो पौधे हैं वो जब 31 दिन के लगभग हो जाते हैं तो वो हवा से ही नाइट्रोजन लेने लगते हैं, जो हमें यूरिया से मतलब एक तरह से हम मान के चलें कि वो यूरिया तैयार करने लगते हैं। तो उस फसल में हमें नाइट्रोजन अलग से देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, फ्री में ही हमें खाद मिल जाता है। इसके अलावा मक्का के साथ आपको दूसरी चीज भी मिल रही, फसल भी मिल रही है। फिर जब आप जो मतलब मक्का निकाल लेते हैं तो जो उड़द की है आपने उसकी फलियां निकाल ली, तो उसके फसल अवशेष को जब आप खेत में मिलाएंगे तो खेत को और ताकत बरकत जो अच्छा करते हैं, पोषण करते हैं
0: जी जी।
1: उसके बाद जो भी आप अगली फसल लेंगे उसमें उर्वरक की मात्रा कम कर सकते हैं, फिर भी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस कार्यक्रम में आए और विशेष जानकारियां साझा करी। श्रोताओं आप ऐसे ही सुनते रहेंगे FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से हमारे साथ वरिष्ठ प्रबंधक AK सिंह जी स्टूडियो में मौजूद थे, आज तमाम सारी बातें कर रहे थे और उम्मीद करता हूँ कि किसान भाइयों आपको ये जानकारी तमाम महत्वपूर्ण लगी होंगी और आप इनको जरूर अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए, थैंक यू सो मच, आपका दिल से धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया
0: जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं फिर मिलेंगे आपको एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर और नए प्रोग्राम्स में, तब तक के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार श्रोताओं।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: चंबल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक श्री अनिल कुमार संघी को। सर आपका हार्दिक स्वागत है।
1: स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद FM रेडियो रंग, और मैं शायद आपके यहाँ प्रथम बार आ रहा हूँ, और सभी श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार।
0: सर आज मूंगफली की फसल के बारे में हमारे किसान साथियों को बताएं।
1: जी जी,
0: और सबसे पहले तो आजकल किसान भाइयों के बीच में PMKSK इसकी बड़ी चर्चा है, इसके थोड़ा प्रकार।
1: PMKSK एक तरह से भारत सरकार की योजना है, और खास तौर से जो उर्वरक मंत्रालय है, और आप देखते होंगे कि जो भी खाद की दुकानें हैं वहां पर आज के समय में PMKSK लिखा हुआ है या उस तरह के कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि खेती अगर देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष का एक मुख्य काम है। लगभग 60-70% लोग खेती के ऊपर आश्रित हैं। हमारा खाद्यान्न, अधिकांश खाद्यान्न है वो खेती से ही आता है, और खेती में जो उर्वरक इस्तेमाल होते हैं वो इन खाद की दुकान के द्वारा जाते हैं, तो वहां से लोग खाद ले जाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो भारत सरकार ने सोचा और उन्होंने उर्वरक मंत्रालय को आदेश दिया कि जितनी भी उर्वरक की ये दुकानें हैं उनको हम इस तरह से जो चैनलाइज करें कि वहां पर जो किसानों को खेती से संबंधित सेवाएं भी मिले, क्योंकि जो उत्पाद ले रहे हैं अगर वहां से सेवाएं भी मिलेंगी तो जो उत्पाद उन्होंने लिए हैं उनका अच्छा उपयोग हो सकेगा। अगर सपोज कोई किसान यूरिया लेके जा रहा है या कोई DAP लेके जा रहा है, ले तो गया वो, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में अगर उसे जानकारी नहीं है तो उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता है। अब भारत जो उर्वरक मंत्रालय है उसकी ओर से ये सुनिश्चित किया गया है कि जितनी भी उर्वरक की दुकान है वहां से उर्वरक की या जो भी खेती में जो इस्तेमाल होने वाले आदान है उन जो उनकी बिक्री तो होगी ही, लेकिन साथ के साथ उनके उपयोग की सलाह और क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में भी पूरी जानकारी जो किसानों को दी जाएगी। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जब भी कोई वो उत्पाद खरीदे, या तो वो पहले से लेके आ रहे हैं तो उसके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं, कोई शंका है उनको, लगता है कि इसके बारे में और जानकारी ली जाए कि इसका सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाए जिससे कि मुझे अधिक से अधिक लाभ हो सके, तो जो भी दुकान से आप उर्वरक ले रहे हैं उनसे जानकारी आप लें, और अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है, वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उनसे ये पूछिए कि कौन हमें सही ढंग से जानकारी दे सकता है। उसमें जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र है आपके यहाँ पर, बहुत से ऐसे फोन नंबर होते हैं जो आपके सलाह के एक तरह से जो फोन नंबर होते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं उनके नंबर होते हैं, जैसे कि हमारी चंबल फर्टिलाइजर है उसका भी एक फोन नंबर है हेलो उत्तम का, तो वहां फोन लगाएंगे, वो हर दुकान पे वो नंबर लिखा हुआ है, तो वो जो वहां पर जो हमारे एक्सपर्ट है वो फोन उठाएंगे और आपका जो सवाल होगा उसका वो सही उत्तर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज आप लेके जा रहे हैं उसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, खेती से संबंधित कोई और भी आप सलाह चाहते हैं, या आपको लगता है कि मैं कोई नई खेती करना चाहता हूं, या आपको लगता है कि मेरे यहाँ कोई और इस तरह की समस्या आ रही है उसका मुझे समाधान चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो वो जो वैज्ञानिक है वो उसमें मार्गदर्शन भी करते हैं। हमारा एक जो उत्तम का ऐप भी आता है उससे भी आपको सलाह दी जाती है। तो मतलब कहने का ये, चंबल फर्टिलाइजर नहीं अन्य उर्वरक कंपनियां भी इस तरह की सेवाएं देती हैं। तो PMKSK अब सिर्फ उर्वरक विक्रय या खेती जो आपके खेती के आदान है उनके जो विक्रय केंद्र ही नहीं है, वो सलाह केंद्र है, सेवा केंद्र है, और वहां पे आपको जानकारी मिलेगी, साहित्य मिलेगा, और मैं आपसे अनुरोध यही करता हूं कि आप अवश्य वहां जाकर पूछा करें। आप पूछेंगे तो अगर उनके पास वो सुविधा नहीं है तो उसको वो एकत्रित करेंगे, कंपनियों से मांगेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेंगे, और वो सेवाएं आपको उपलब्ध अवश्य कराएंगे। तो PMKSK के बारे में मैंने ये कुछ जानकारियां आपको दी। किसान भाइयों, मुझे लगता है कि आप इसे लाभान्वित होंगे और आगे जब भी किसी दुकान पर जाएं तो इन सेवाओं का लाभ अवश्य लें।
0: सर इसका मतलब यह है कि सरकार इन केंद्रों को वन स्टॉप सेंटर के रूप
1: में, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने सही जो कहा कि सिंगल स्टॉप सेंटर है और जहां खेती की सभी आपको सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध होंगे।
0: सर इस समय वैसे तो धान की खेती हमारे तरफ जो है वो जोर शोर पे चल रही है
1: जी,
0: लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है या मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है वहाँ पर लोग अक्सर मूंगफली की खेती करते हैं।
1: जी जी,
0: तो सर मूंगफली की फसल के बारे में थोड़ा हमारे साथियों को बताएं।
1: हाँ, मूंगफली की खेती के

0: बारे में मैं जो अवश्य जानकारी दूंगा, क्योंकि आज का विषय ही यही है। इससे पहले जो किसान भाइयों, जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा संज्ञान लिया, उन्होंने कहा कि जो उर्वरक का उपयोग है उसमें कहीं न कहीं प्रासंगिकता नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी तरफ से हो जाता है। यह सोच के कि हम उर्वरक का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमें लाभ होगा, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य ये नहीं कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भाई उतना ही डालिए जितना आवश्यक है, जैसा कि जो हर फसल की मांग अलग अलग होती है। जैसे कि मान के चले हमारी भूख 4 रोटी की, और अगर हम 7 खाए भी लेंगे तो हमें शायद बहुत तकलीफ भी हो जाएगी, और उसका जो सही मायने में उससे जो पोषक तत्व तो नहीं मिलने चाहिए, जो आने चाहिए थे, वो हम अच्छे तरीके से उसको ग्रहण नहीं कर पाते। इसी तरह उर्वरक के बारे में कि एक निश्चित मात्रा में ही फसल जो पोषक तत्वों को लेती है, अगर ज़्यादा उर्वरक आप देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से वेस्ट हो जाएंगे, फसल के काम नहीं आएंगे। तो उससे क्या नुकसान होगा, एक तो क्या है, आर्थिक नुकसान हुआ आपने जो अधिक इस्तेमाल किया, दूसरा उसके अंदर जो रासायनिक तत्व हैं जो फसल इस्तेमाल नहीं कर पाई, वो पानी में मिलेंगे, जमीन में मिलेंगे, तो वो जो रासायनिक अवयव है वो हमारे खेती के पर्यावरण को खराब करेंगे। जो अपनी खेत की मिट्टी है उसका जो स्वास्थ्य है उसमें कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह होंगे। तो इसी के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा संबोधन दिया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो अवश्य किसानों को सुनाएं, तो वो संबोधन आप अवश्य सुनाइए।
1: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, 2 गोली की जरूरत है 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
2: सर इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो है उर्वरकों का अधिक उपयोग
0: जी,
2: जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, वो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए और फसल की स्वास्थ्य के लिए
0: बिल्कुल। और इस संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने यही कहने की जो कोशिश की है, और मैं आशा करता हूँ कि किसान भाई इसको समझ के और उसी हिसाब से उर्वरकों का उपयोग करेंगे।
2: सर अब मूंगफली की फसल के बारे में थोड़ा बताएं।
0: हाँ जी हाँ जी, जैसा कि आपने कहा कि मूंगफली की फसल आपके क्षेत्र में होती है लेकिन उतनी सघनता से नहीं होती, और मेरा मानना भी यही है कि जो लगभग कुछ क्षेत्रों को हम छोड़ दें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में उतनी सघनता से मूंगफली की खेती नहीं होती। हाँ, लेकिन जो खेत उपयुक्त है, जहाँ सिंचाई के साधन शुरू में है, शुरू में मतलब जब आपका खरीफ का आरंभ होता है, बहुत सी जगह जायद में भी लगाते हैं, वहाँ पर मूंगफली की खेती की जाती है। मूंगफली अगर आप देखें तो एक ऐसी फसल है जो कि हमारे जो हमारा खान पान है उसमें शामिल है, और ये एक तरह से स्नैक्स के रूप में भी है, भोजन के रूप में भी, अलग अलग रूप में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूसरा इसके अंदर तेल की मात्रा होती है, मूंगफली का तेल अगर कच्ची घानी से निकाल के खाया जाए जो कि ट्रेडिशनली खाया जाता था, तो वह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत लाभदायक है। मूंगफली की फसल अगर हम देखें तो इसका जो बीज है वो मिट्टी के अंदर लगता है, मिट्टी के अंदर लगता है, तो इसके लिए खेत की तैयारी, ये खास तौर से की जानी चाहिए और उर्वरकों की या जो जो जो इसके अंदर पोषक तत्व है उनकी सही मात्रा उस जमीन के अंदर होना बहुत आवश्यक है। और ये ऐसे समय पर होती है जबकि शायद और कोई फसल हम नहीं ले रहे होते हैं, सरफेस पे होने वाली फसल है। तो इसीलिए मूंगफली की खेती जब भी अगर आपको मौका मिलता है, आपका ऐसा कोई खेत है जहां पर आप ले सकते हैं मूंगफली और इसको आप मेड़ पे भी लगा सकते हैं, समतल जमीन पे भी लगा सकते हैं, जहां पर आप एकदम जो है आप अपने सपाट खेत पे भी लगा सकते हैं, तो इससे क्या है कि अतिरिक्त आमदनी के बहुत सारे साधन आपको खुलते हैं। जैसे कि कभी आप जैसे धान लगा रहे हैं, धान के बाद फिर मुझे लगता है कि आप गेहूं लगाएंगे, ऐसा ही है ना, और गेहूं के बाद खेत खाली है, तो उस बीच में अगर पानी की व्यवस्था है तो आप बहुत सी वैरायटियां ऐसी उपलब्ध है जो कि जायद में भी मूंगफली की होती है, तो वो धान से पहले मूंगफली आपको प्राप्त हो जाएगी, तो एक अतिरिक्त आमदनी का एक साधन हो जाता है। मूंगफली आपने आपने अपने उपयोग के लिए की है वो तो आपके अपने लिए होगी, अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में तो आप उसका विक्रय कर सकते हैं। मैंने जैसे देखा है आपके सड़क किनारे लोग रखे हैं और वो भून के लोगों को देंगे, तो ये एक आम आदमी का काजू है
2: जी,
0: हम कहे तो वो आराम से लेके 100 ग्राम उसने लिया और धीरे धीरे चबाते हुए अपना, और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। और ऐसा भी कहा जाता है साउथ में तो कि मूंगफली को अगर आप रात को भिगो दें और सुबह उसको खा के थोड़ा एक कप दूध पी लें तो वो एक संपूर्ण आहार के रूप में हो जाता है
2: जी।
0: तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छी फसल है, और मैं अनुरोध यही करूंगा कि जब भी अगर आपको मौका मिले और अवसर है तो आप अवश्य मूंगफली की खेती करें।
2: सर, मूंगफली की हमारी फसल अच्छी हो
0: जी,
2: तो उससे अधिक उपज ली जा सके, उसकी गुणवत्ता बेहतर हो
0: जी,
2: इसके लिए पोषण प्रबंधन कैसे किया जाए फसल?
0: जी हाँ जी हाँ, पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो ये कि जब आप लगाने जा रहे हैं उस समय आप खेत में ये देखिए कि कौन कौन से जो है उर्वरकों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला जो उर्वरक है वो है फास्फोरस। फास्फोरस हमें अनेक अनेक जो उर्वरक उत्पाद है जो मतलब आपका पोषण है फास्फोरस है, वो अनेक उर्वरकों से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि एनपीके है जो अलग अलग आते हैं, डीएपी है ठीक है, और इसके अलावा जो सुपरफास्फेट है जो कि सिंगल सुपरफास्फेट भी है, ट्रिपल सुपरफास्फेट भी है, इन सब से हमें फास्फोरस उपलब्ध होता है। तो हम जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय पर फास्फोरस के उर्वरकों को जरूर दें। दूसरा एक होता है कि इसमें प्रोटीन बनता है और जो तेल की मात्रा भी बनती है, तो अगर सल्फर का कोई उत्पाद आपके पास उपलब्ध है तो उसे भी आप खेत की तैयारी की समय पर दें। यूरिया की मात्रा ज्यादा न दें, यूरिया बहुत सीमित मात्रा में दें, क्योंकि जब मूंगफली की फसल करीब करीब 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उस पौधे के अंदर स्वयं इतनी क्षमता आ जाती है कि वो खुद हवा से यूरिया लेकर उसकी पोषण की पूर्ति कर लेता है। अब वो हवा से यूरिया कैसे लेता है उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि जब आप देखें कहीं पर भी आपने मूंगफली लगाई हो, 30 दिन की करीब करीब हो जाए तो उसको उखाड़ के देखें तो उसमें आपको छोटी छोटी गांठें मिलेंगी, तो कंफ्यूज ना हो कि वो मूंगफली की गांठें हैं, वो एक तरह से ऐसी गांठें होती हैं जिनके अंदर खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है जो हमें यूरिया से मिलती है या एनपीके खादों में भी होती है, वो हवा से उस नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उससे वो पौधा अपने लिए पोषण की पूर्ति कर लेता है। तो नाइट्रोजन ज्यादा न दें, फास्फोरस दें, सल्फर दें, ये पोषक तत्व तो शुरू में दे दें, और उससे पहले अगर सपोज कोई जैविक जो है आपके पास व्यवस्था है जैसे कि कंपोस्ट खाद है, गोबर का खाद है, तो वो आप दे सकते हैं, उससे जो जो हवा का आवागमन है वो अच्छा होता है, जमीन में पानी रोकने की क्षमता है उसमें विकास होता है। तो ये जब सारी स्थितियां इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारी मूंगफली फसल को जो जो शुरुआती तौर पर जो है उसको पर्यावरण और जो पोषण की आवश्यकता होती है वो मिल जाता है।
2: सर, हमारे किसान भाइयों को जरा बताएं, जिस तरह आपने बताया कि मूंगफली की फसल वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को अवशोषित करके
0: जी
2: और मिट्टी को बेहतर बना सकती है, स्वयं के लिए भी पोषण जनरेट करती
0: जी
2: है,
0: जी जी,
2: तो ये कुछ अरहर की फसल के जैसे?
0: हाँ बिल्कुल, अरहर भी है, चना भी है, उड़द भी है, मूंग भी है, जितनी भी ऐसी फसलें जिनके बीज की दो दाल हो जाती है
2: जी।
0: जैसे ढैचा है, ढैचा में भी हो जाता है, सनई में भी हो जाता है, जिसकी दो दाल हो जाए अपने आप सहायक तौर पे, उनके जो भी जो उनसे जो आपका पौधा उगता है उसके अंदर ये क्षमता पाई जाती है। तो ये आपका उत्तर रहा। दूसरा मित्र ये है कि अब बात ये आती है कि मूंगफली में ये तो शुरुआती पोषण हमने दिया, खड़ी फसल में भी कभी कभी लगता है कि भाई कुछ ऐसा कर दे जिससे कि और पोषण मिले, हमारा उत्पादन कभी फसल हल्की लगती है तो आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। करीबन 350 ग्राम जिंक और 160 ग्राम आप चूना ले लें, 100 लीटर पानी में घोल लें और ये एक एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। ये आप छिड़काव कर सकते हैं, इससे क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा और स्वाद अच्छा होगा। दूसरा आप देखें कि एक हमारा उत्पाद आता है उत्तम आरिस गोल्ड, इसकी 500 ml मात्रा ले लें और इसको भी पानी में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं ऐसी अवस्था पे जब पौधे की पूरी ऊपर से शाखाएं पत्तियां अच्छी तरह से बन गई हो, क्योंकि जो भी हम स्प्रे करते हैं उसका जो अवशोषण होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, खेत के द्वारा नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसका पोषण करके मूंगफली से अच्छी फसल ले सकते हैं। तो ये जो पोषण के बारे में जानकारी रही। आपका अगला सवाल
2: सर, मूंगफली की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया है?
0: हाँ जी, खरपतवार का नियंत्रण अगर हम देखें तो इसमें क्योंकि ये चौड़ी पत्ती वाली फसल है तो बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं होती है कि हम आगे चलकर इसका वो करें, लेकिन फसल जैसे हमने लगाई है और 20 से 30 दिन के अंदर हम खरपतवारों को रोकने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि हम जो गुड़ाई करें जो खुरपी की सहायता से, अगर बहुत छोटा एरिया है जैसे कि कोई किसान ने आधा एकड़ लगाई है, एक बीघा लगाई है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रासायनिक की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुरपी के द्वारा भी अगर आपके पास श्रम उपलब्ध है तो कर सकते हैं। बाकी रासायनिक नियंत्रण आपने करना है तो उसके लिए एक दवा आती है उत्तम एटलस है, 175 ml ले लें, या एक दूसरी एक दवा आती है जिसका नाम है उत्तम फ्लूजी, वो 400 ml, इनमें से कोई एक दवा ले लें, 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करें तो ये जो खरपतवार हैं जो मूंगफली के अंदर वो नष्ट हो जाएंगे। और ये ध्यान रखें इसके साथ कोई भी पोषक तत्व न मिलाए, क्योंकि एक तरफ तो आप पौधे को मार रहे हैं और उसके साथ पोषक तत्व भी दे रहे हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरा सावधानी ये रखें कि जब स्प्रे करें तो पत्तियां सूखी हो, उनके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, पानी होता है तो ये जो कंसंट्रेशन है इनका ज़्यादा असर नहीं हो पाता। तीसरा ये है कि जब आपने छिड़काव किया है तो कम से कम 8-10 घंटे तक बारिश ना हो तो बेहतर है। इस तरह से खरपतवारों का नियंत्रण हम कर सकते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये जो भोजन आपने फसल के लिए दिया है वो ये खा जाते हैं तो फसल कमज़ोर हो जाती है, तो जो एक उत्पादन आप चाह रहे हैं वो उतना बढ़िया से नहीं मिल पाता है, इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी है उसे।
2: सर, खरीफ का मौसम जो है वो बारिश का मौसम होता है।
0: जी जी।
2: तो अक्सर इसमें कीटों की भरमार हो जाती है।
0: जी जी।
2: तो मूंगफली की फसल में कीटों की रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करें?
0: बहुत बढ़िया। देखिए बहुत से इसमें जो होते हैं, एक तो होता है कि जो इल्ली होती है जो उसकी ऊपर की पत्तियां होती हैं उनको खाता है, और दूसरा एक जो तंबाकू के ऊपर एक जो कीड़ा आता है जो ऐसे चलता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर। ये दो तरह के होते हैं, इल्ली थोड़ी छोटी जो छोटी होती है, कैटरपिलर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इनके लिए एक कीटनाशक है उत्तम पियोटा, ये 60 ml आप लें, 200 से आप 300 लीटर पानी में घोल के, पानी की मात्रा इसलिए अच्छी तरह से आपको अधिक बताई जा रही है कि पौधे का कोई हिस्सा ऐसा छूटे नहीं जहाँ तक कि वो दवा न पहुँचे, और आप इसका छिड़काव करें। छिड़काव करते वक्त ये जरूर देख लें कि कीड़े की संख्या, अगर कोई आपने पूरे खेत में चक्कर लगाया और एक आधी दिख रहा है तो कोई उतना प्रभाव उसका नहीं होगा, जब ज़्यादा इनकी संख्या हो जाती है तो उनको रोकने की ज़रूरत है और समय पर आप छिड़काव करें। दूसरा जो तंबाकू की जो है लट, उसके लिए एक उत्तम योवोटा के नाम से आता है, इसकी भी करीब करीब 60 ml मात्रा है, 200 से 300 लीटर पानी में लेकर इसका आप छिड़काव करें। तो इस तरह से हम कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं और जो है मतलब जो हानि होनी है फसल को वो रोक सकते हैं। जो कीड़े हैं वो लगे हैं या नहीं लगे ये कैसे पता पड़ेगा? अंदाजे से तो नहीं लगेगा, तो इसलिए खेत के चक्कर जरूर लगाते रहें, हर रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के खेत में जाएं, जरूर देखें कि हमारी फसल की क्या स्थिति है और कोई जो नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ इस तरह का नुकसान है तो उसके लिए आप प्रबंध करें तो फसल हमारी ठीक हो जाएगी।
2: इसी बहाने खेत भी घूम लेंगे और
0: हाँ,
2: टहलना भी हो जाएगा,
0: टहलना हो जाता है। और मैं तो एक चीज ये कहूंगा कि आप जितना खेत के पास जाते हैं या टहलते हैं तो खेत पहचानने लगता है आपको, फसल पहचानने लगती है। बड़ा अजीब सा लगता है पर ऐसा नहीं है, पहचानती है। आप कभी देखिए कि आप जहाँ जो अपने घर में रोज रह रहे हैं वहाँ आपको बड़ा सहजता लगती है, है? आपको अच्छा सा लगता है, सहज होता है सब कुछ। आप वहां से कहीं दूसरी जगह जाएं जहां पहले कभी नहीं रुके और वहां आप रुकिए, आप बहुत देर तक असहज रहेंगे वहां। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का जो पर्यावरण है वो आपके लिए, आपके शरीर के एडजस्ट नहीं हो पाया। इसी तरह से जो खेत है हमारे या जहाँ फसल हो रही है वो एक तरह से जीवंत है। हमें तो लगता है चलो हैसी ऐसे काट देते हैं तो ये क्या जीवंत है, ऐसा नहीं है। पर वो जीवंत जगह है, वहां पर एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको पहचानने लगती है, पहचानने लगती है तो फिर उससे आपको संकेत भी मिलते हैं। संकेत इन द सेंस है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नए विचार आपको आ सकते हैं। और तो ये सारी चीजों के लिए हमें खेत के पास जाना जरूर चाहिए। अभी जैसे मैं देखता हूँ कि धान लगा हुआ है, लगा दिया, यूरिया डाल दिया, बस उसके बाद वो देखें काटने कब जाना है, क्योंकि बहुत आसान है। लेकिन कुछ भी नहीं करना, फिर भी जाइए, देखिए, मिलिए, हालचाल पूछिए, तो आपको कोई ना कोई वहां से उत्तर और जवाब जरूर मिलेगा। तो जाना चाहिए
2: के साथ, हाँ, डेवलप करें।
0: हाँ बिल्कुल, तालमेल हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
2: सर अलग अलग तरह की फसलों में अलग अलग तरह के रोग भी हो जाते हैं, तो मूंगफली की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके क्या उपाय हैं? हाँ, रोकथाम कैसे किया जाए ये हमारे किसान।
0: देखिए मूंगफली की फसल या हो या कोई फसल हो, रोग न लगे उसका उपाय बहुत शुरुआत में किया जाता है। उसके लिए बीज का उपचार है तो बीज का उपचार जरूर करें। बीज के उपचार के लिए बड़ी सामान्य सी चीज होती है, कुछ दवाएं आती हैं जैसे M45 है, मैनजीम, जिनको हम फफूंद नाशी बोल देते हैं। रोग फैलता है फफूंद से, उसके छोटे छोटे जीव वो जो जो अणु होते हैं वो जो बीज के ऊपर होते हैं और जब वो जाते हैं खेत में और फसल उगती है तो फिर उनके एक जब सही समय आता है तो उनका विकास होकर वो रोग का रूप धारण कर लेते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बीज से रोग का अंश हमें हटाना है तो फफूंद नाशक से बीज लगाने से पहले उसका उपचार हम जरूर करें। बहुत थोड़ी सी दवा लगती है, बहुत थोड़ा खर्चा आता है, लेकिन उसके परिणाम हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बीज उपचार करें, लेकिन उसके बाद भी अगर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें उसके ऊपर जो भी जो फफूंद नाशक है या जो दवा है उसका स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि रोग से जो पौधा नष्ट हो गया उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन रोग आगे और न बढ़े उसकी रोकथाम तो की जा सकती है। तो उसके लिए ये दवाएं हैं, जैसे कि अगर मूंगफली में आप उखाड़ के देखते हैं पौधा सूख रहा है तो उसकी जो जड़ है उसमें गलन है, तो उसके लिए आप कोई दवा है एक मैं जो उत्तम मैंजिम है 200 ग्राम दवा ले लें, 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से आप जो छिड़काव करें नीचे की तरफ करें जहां पर उसका रूट सिस्टम है, जहां पर उसकी जड़ें हैं, वो अंदर तक जाएगा और उसको ठीक करेगा। फिर एक आता है जो इसकी हरी पत्तियां उन पर छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं उसको धब्बा रोग बोलते हैं, उसके लिए भी यही दवा है मैंजिम करके। तो जब आप जो नीचे की तरफ स्प्रे कर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर भी कर दीजिए इसी मैंजिम का, तो वो उसके लिए चाहे वो रोग है या नहीं है तो भी वो एक लाभदायक होगा। फिर इसके अलावा एक गेरुआ रंग जैसा आ जाता है उसके लिए एक दवाई VRM45 350 ग्राम 1 एकड़ के लिए है और इसके लिए भी लगभग 300 लीटर पानी आप ले लें और इसका आप स्प्रे कर दें। तो ये जो दवाएं ये फफूंद नाशक है, सामान्य फफूंद नाशक है, तो इनका आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा धब्बा रोग, रष्ट रोग, टिक्का रोग, ये बहुत ज़्यादा अगर संक्रमण इसका ज़्यादा है तो फाल जो आपके फलकॉक्स जो नाम की एक दवा आती है ये भी 350 ग्राम दवा है और 250 लीटर पानी में घोल के आप इसका 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरा एक और छोटा सा उपाय है जो किया जा सकता है कि जहाँ पर भी इस तरह की फसलें लगा रहे हैं जिनमें आपको लगता है रोग आने की संभावना रहती है या ज़्यादा संक्रमण होता है तो उसके आसपास उसके आकार से ऊंची फसल कोई लगा दे आसपास खेत में, जैसे कि आपने आज एक एकड़ मूंगफली लगाई है तो उसकी जो मेड़ है उसके पास चार चार पांच पांच कूड़ जो आप जो चारों तरफ ऐसे मक्का के लगा दें, बाजरा के लगा दें, ज्वार के लगा दें, तो उससे क्या होता है कि अगर एक बार दवा का स्प्रे करने के बाद जो रोग के जो वो है वो एक तरह से खत्म हो गए, लेकिन अगर वो उड़ के कहीं दूसरी जगह से आ जाएंगे तो फिर वो उसको संक्रमित कर सकते हैं, तो वो उसको रोकने का काम करेगी बाढ़। और जब आप मुख्य फसल पे स्प्रे करें तो आसपास जो वो और आपके पेड़ है उन पे भी कर सकते हैं, जो मेड़ है उन पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीड़े उड़ के वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं, बहुत सारे रोग के जो अंश है वो भी वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही उनको उचित अवसर मिलता है तो वो आके फिर फसल पे, क्योंकि उनके लिए वो भोजन है, पोषण है, और वहाँ पर वो चाहते हैं कि हमारी वृद्धि हो सके, वंश वृद्धि जिसको बोलते हैं ना, वो करना चाहते हैं, तो इसलिए उनको माध्यम चाहिए। तो उस माध्यम के बीच में कहीं ना कहीं आप अगर एक रुकावट ला देंगे तो फसल हमारी ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहेगी।
2: सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी
0: जी,
2: प्रधानमंत्री किसान के PMKS के योजना के बारे में बताया और वर्कों के उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को सामने रखा
0: जी,
2: और मूंगफली की फसल से संबंधित प्रबंधन जो है किया सकता है उसके बारे में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस जो है इससे बड़े लाभान्वित होंगे, इसका जरूर आपकी सलाह और आपके द्वारा सुझाए गए उपायों का लाभ ले पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, और सभी श्रोताओं को मेरा एक बार फिर नमस्कार।
3: आपको भी श्रोताओं नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, महिला मंच। और आपको पता है जब महिला मंच कार्यक्रम लेकर हम आते हैं तो मैं अकेली नहीं, मेरे साथ में रीना जी होती है या फिर रीना जी के साथ खुशी होती है। तो आज मेरे साथ यहाँ पर रीना जी है और आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, बेटी है तो खर्च होगा, ये सब ये सोच अब धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। आज की बेटियां स्टडी कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, नौकरी करके अपना खर्च खुद उठा रही हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता और परिवार का सहारा भी बन रही हैं। कभी कहा जाता था कि इतना पढ़कर क्या करोगी, आज वही बेटी मेहनत से घर का खर्च संभालने में हाथ बटा रही हैं। ये सिर्फ कमाई की बात नहीं है, ये उस आत्मविश्वास की बात है जो एक लड़की को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत देता है। महिला मंच में आज बात उन्हीं बेटियों की है जो पढ़ रही हैं, जो स्टडी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं और परिवार को भी संभाल रही हैं।
4: ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है, जैसे कि तुम ही देख लो, तुम घर का भी काम कर रही हो, इनफैक्ट मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, तुम नहीं हो और भी जो मेरे साथ है, हमारे साथ
3: बहुत है, सारी है। वुमेन हैं जो घर भी मैनेज कर रहे हैं और स्टडी भी कर रही हैं।
4: हाँ, बहुत सी लड़कियां भाई यही सोच है कि अब तक तो मम्मी पापा ने हमें पढ़ाई है, हमारे ऊपर खर्चा कर रही है, लेकिन अब हम भी खुद पढ़ते पढ़ते कुछ स्टडी कर लेते, जॉब कर लेते हैं और खुद का खर्चा खुद भी निकाल लेते और फैमिली वालों को भी हेल्प कर देते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक है और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना हूँ। आवाज सुनकर तो पहचानेंगे होंगे। आपको अपनी पहली कमाई याद है, वो पैसा कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब अपनी मेहनत का कमाया जाता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। खासकर उस लड़की के लिए जिसने पढ़ाई के साथ मेहनत की, नौकरी हासिल की और पहली बार अपने हाथ में घर में कुछ खरीदा या माता पिता को पैसे दिया। उस दिन सिर्फ पैसा मिले, एक एहसास मिले कि मैं अपने दम पर कुछ कर सकती हूँ। आज बहुत सी बेटियाँ अपने फीस खुद भरती हैं, अपने छोटे बड़े खर्चे खुद उठाती है और घर की जरूरत में भी साथ खड़ी होती है। यही आत्मनिर्भरता, जहाँ लड़की किसी पर बोझ ना हो बल्कि खुद और अपने परिवार की ताकत बनती है और हमेशा यही कहती है कि पापा मैं आपके साथ हूँ, आप अपने आप को कभी अकेला फील ना करें। तो सोचिए उस पिता को कितना गर्व होता होगा कि कहां दुनिया कहते हैं कि बेटियों को मत पढ़ाओ। और जब ये वाली बातें आ जाएंगी ना हर किसी के घर में कि उनकी बेटी कमा भी रही है और पापा से ये बोल रही कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम मिलकर सब मैनेज कर लेंगे, तो एक बाप को ना एक सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व फील होता है कि मेरी बेटी कुछ आगे कर रही है और अपनी जिंदगी में जो करेगी अच्छा ही करेगी। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि बेटियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, बेटियां पढ़ती हैं तभी भविष्य बनता है और अपने घर के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करती हैं और आपको उन पर गर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल भी वो बन जाती है कि शर्मा जी की बेटी ने तो भैया बहुत अच्छा काम कर रही है, जॉब भी करती है, पढ़ाई भी करती है, घर का थोड़ा हाथ भी बटाती है। तो सोचिए आप भी कर सकती हैं। जो लड़कियां सोचती हैं कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, आप बिल्कुल सोचिए मत, जो करना चाहती है बिल्कुल करिए, बस आपकी फैमिली आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है।
3: फैमिली सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है रीना। और जैसे नौकरी के साथ घर मैनेज करना, आपने अभी बात की, नौकरी करना आसान नहीं होता और नौकरी के साथ घर संभालना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। सुबह उठकर घर के काम, फिर तैयार होकर ऑफिस जाना, पूरे दिन काम करना और शाम को वापस आकर घर की जिम्मेदारियां देखना, कई महिलाओं की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है और फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती है क्योंकि वो जानती है कि उनके नाम उनके काम से सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदल रही बल्कि उनके परिवार की जिंदगी भी बेहतर हो रही है। और आज की जो गर्ल्स हैं देखो वो ऑफिस भी मैनेज करती हैं, घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं, वो घर की जिम्मेदारी भी बराबरी का मतलब भागीदारी वो निभा रही हैं। इसलिए ये काम को सिर्फ नौकरी मत समझिए, उसके पीछे उनकी मेहनत, समय और बहुत सारे समझौते भी होते हैं। जब एक लड़की बाहर निकलती है ना घर से जॉब के लिए, तो कई बार तो उसे ताने भी सुनने को मिलते हैं। इनफैक्ट उसको भी मिलते हैं, उनकी फैमिली को भी मिलते हैं कि लड़की को माने के लिए भेज रहे हैं, लड़की के पैसों पर अब माँ बाप राज करेंगे। इस तरह से सोच होती है ना, कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अब तो भैया लड़की काम कर रही है, नौकरी कर रही है और नौकरी लड़की की कमाई खाएंगे, इस तरह से कुछ बोलते हैं लोग।
4: अरे इस तरीके से सुनने को भी आया, बहुत से सुनने को आया है कि एक बात सोच के देखो, जिस माँ बाप ने उसे पाला बड़ा करा, उसके ऊपर इस तरह खर्चे किया, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो फैमिली के लिए कुछ करे?
3: बिल्कुल होती है जिम्मेदारी फैमिली को, अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा रीना?
4: बिल्कुल, जो दुनिया कह रही है कि बेटी के खर्चे पर अब घर चलेंगे, तो वो थोड़ी दे देंगे हमारे खर्चे ला के, वो सिर्फ बात बना सकते हैं।
3: लोगों का काम है बात बनाने का, है ना,
4: ये तो है।
3: तो लोगों की बातों को मत सुनो, आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ आपके ड्रीम्स हैं, तो बस आप अपनी ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लोग पीछे गिराने वाले ना हजार मिल जाएंगे, सपोर्ट करने वाले, आगे पुश करने वाले बहुत कम मिलते हैं, और वो अगर मिले हैं ना तो वो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं जो आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं कि वो आपका नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो। तो बस आप किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स की सुनिए और आप जिंदगी में आगे बढ़ते चलिए।
4: खुद सोच कर देखो, माँ बाप बच्चे पैदा क्यों करते? उनकी हिम्मत बनने के लिए ना, उनकी सहारा बनने के लिए। तो बन रही है तो उनको बनने दीजिए, उनको ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, बल्कि उनका सपोर्ट करिए और आप भी अपने बच्चियों को सपोर्ट करिए,
3: उनको अच्छी एजुकेशन दिलाइए, पढ़ाई कराइए, और अगर वो उनका कुछ ड्रीम है, जॉब करना चाहती हैं, तो उसमें भी आप उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है ना तो ऐसा लगता है रीना कि हमने पूरी दुनिया जीत ली है।
4: ये तो बिल्कुल सही कहा। और अब बात आती है अपनी कमाई, अपना आत्मविश्वास।
3: अरे जब पैसा मिलता है तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है यार।
4: अपनी कमाई का मतलब सिर्फ पास पैसा होना नहीं है, अपनी कमाई का मतलब है अपने फैसलों में आत्मविश्वास। जब लड़की अपनी मेहनत से कमाती है तो उसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए हर बार किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे पता होता है कि अगर कोई चीज चाहिए तो वो मेहनत करके उसे हासिल कर सकती है, चाहे वो अपना फोन हो या पसंद की ड्रेस लेना हो, पढ़ाई का खर्चा उठाना हो या घर में माँ के लिए कुछ खरीदना हो। अपनी कमाई से किया गया हर छोटा काम उसे अंदर से मजबूत बनाता है। इसीलिए बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें हुनर दीजिए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और मैं हर गर्ल्स से यही कहना चाहूंगी कि भैया आप अपने पैरों पर खड़े होइए आप, क्योंकि कल को आपको ना किसी के आगे अपनी हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 2 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए। अगर सोचिए सामने वाले ने आपको मना कर दिया तो उस टाइम क्या बीतती है? उस टाइम दिमाग में यही आता है कि काश मैंने कुछ कर ली होती, ताकि मैं मतलब देखिए फैसले की बात नहीं है, आप अपनी मर्जी की चीजें खुद तो खरीद सकते हैं ना, इतनी आत्मा को तसल्ली तो आप खुद दे सकते हैं कि उससे ही खाना खुश है।
3: और आजकल देखो मैं आपको बताना चाहूंगी, आजकल स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो आप उसको और इंप्रूव कीजिए, एनहेंस कीजिए। जैसे आप अगर अच्छा मेहंदी लगाती हैं तो आप एक अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट बन सकती हैं। आप अगर अच्छा डिजाइन के ड्रेस बनाते हैं तो आप फैशन डिजाइनिंग भी कर सकती हैं, अच्छे सूट डिजाइनिंग के आप बना सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छा स्कोप भी है रीना।
4: ड्रेसेस वाले फैशन में तो बहुत
3: है ना। और देखो आजकल हम नॉर्मल भी ड्रेसेस बनवाते हैं, शलवार सूट बनवाते हैं, तो उसके लिए भी हमें आई रिमेम्बर 300 रुपीज आते हैं ना, और ज्यादा ही देते हैं।
4: सिंपल सूट की महंगाई बढ़ चुकी है।
3: सिंपल सूट की अगर हम नॉर्मल बनवाते हैं तो 300 रुपए जाते ही हैं।
4: 300 नहीं जाते यार, पहले जाते थे वो, अब तो 500 के समथिंग है।
3: 500 सिंपल सूट की?
4: अच्छा,
3: जब मैंने सिलवाया था तो 300 लिए थे मुझसे, नॉर्मली बनवाया था।
4: हाँ, जो पहले के टाइम था वो, मैं भी जब बनवाती थी, लेकिन अब तो रेडीमेड आ चुका है हर चीज।
3: हाँ,
4: रेडीमेड ही खरीद लेते हैं।
3: हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप उसको इम्प्रूव करो एंड घर बैठा पैसे कमाओ। आजकल तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया आपके पास है। आप अगर कोई भी चीज अच्छा, आपके अंदर कोई स्किल है, आप जो कर रहे हैं कुछ अच्छा, तो आप वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाल सकते हैं। उससे भी जब आपकी रिच बढ़ेगी, लोग देखेंगे, तो आपका घर बैठे काम बहुत अच्छा चलने लगेगा। चाहे आप अच्छा कुकिंग करती हूँ, वैसे रीना कुकिंग की बात अभी आई है तो आप बताओ, आप सबसे अच्छा क्या बनाते हो?
4: कुछ भी, एवरीथिंग।
3: कुछ भी बना लेते हो? अरे वाह, नहीं एक अपना फेवरेट जो आपको पसंद हो और आप सोचती हो कि अगर मेरे घर गेस्ट आए तो मैं ये अपना फेवरेट बनाकर खिलाऊंगी जो हेल्दी भी है और जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी होता है।
4: देखो अगर मैं अपनी पसंद की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है छोले चावल, दाल चावल।
3: अरे वाह क्या बात है,
4: मतलब ये ओल्ड टाइम भी कहेगा ना मुझे कि तुम खा लो तो खा सकती हूँ, मेरा इतना फेवरेट है ये, बहुत ज्यादा है।
3: ओके, और मुझे को राजमा चावल बहुत पसंद है।
4: राजमा चावल मेरे पहले थे लेकिन अब मुझे छोले बहुत पसंद आने लगे हैं।
3: मुझे राजमा पसंद है। चलो अपनी बातें तो हम करते रहते हैं, है ना। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करने वाले घर वालों के लिए कमाना। जब बेटी अपनी पहली कमाई से माँ के हाथ में पैसे रखती है ना, तो वो सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, उसमें उसकी पूरी मेहनत छिपी होती है। ऑफिस की थकान, आने जाने की परेशानी, काम का प्रेशर, इन सब के बावजूद जब वही लड़की घर की जरूरत में अपना योगदान देती है तो परिवार को एक अलग ही तरह का सहारा मिलता है। आज बहुत सी बेटियां अपने माता पिता की दवाइयों से लेकर घर के छोटे बड़े खर्च तक में मदद कर रही है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं करती है, उन्हें करना ही है, बल्कि इसलिए करती हैं क्योंकि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहती हैं। बेटी जब परिवार का सहारा बनती है ना तो पूरा घर थोड़ा और मजबूत हो जाता है, क्यों रीना?
4: ये तो तुमने सही कहा है, घर मजबूत हो जाता है और सभी फैमिली मेंबर एक साथ होकर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम अब बात करने वाले हैं, पहले एक यार गाना सुन लेते हैं, मुझे ये लगता है।
3: चलो, लगता नहीं है, सुन लेना चाहिए। हमारे जो लिसनर्स है ना वो भी इंतजार कर रहे हैं। खुशी जी बातें तो बहुत अच्छी कर रही है, रीना भी, लेकिन एक गाना भी हो जाए तो फिर मजा आ जाता है। जैसे हम दाल बनाते हैं ना और दाल के बाद उसमें ऊपर से तड़का लगाते हैं, तो वैसे ही हमारे शो में भी एक तड़का लगना चाहिए गाने का।
4: जी बिल्कुल, चलिए हम आपको बहुत गाना सुनवाएंगे और मिलते हैं आपको इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तो श्रोताओं, आपने बहुत अच्छा गाना सुना है और ये प्रोग्राम भी बेटियों के लिए है, तो बेटियों के लिए गाना ना प्ले किया था, बढ़ती रहो आगे तुम। और लड़कियों की पढ़ाई को सिर्फ नौकरी पाने से मत जोड़िए, पढ़ाई लड़की को सोचने की आजादी देती है, सही और गलत में फर्क समझने की क्षमता देती है और अपनी जिंदगी के फैसले लेने में कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, पढ़ाई के बाद नौकरी मिले तो आर्थिक आजादी भी मिल जाती है, लेकिन अगर किसी वजह से नौकरी नाम भी हो, तभी भी शिक्षित लड़की अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार में फैसलों और अपने भविष्य से ज्यादा समझदारी से संभाल सकती है। इसीलिए बेटी को पढ़ाना सिर्फ उसकी जिंदगी में निवेश नहीं है, ये आने वाली पूरी पीढ़ी में निवेश है। लड़की होकर इतना काम, ये बहुत क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है। आज भी कभी कभी भी किसी लड़की को सुनने को मिलता है, इतना काम क्यों करती हो? लेकिन शायद सवाल ये होना चाहिए, इतना कुछ करने के बावजूद तुमने खुद को कैसे संभाला? लड़कियां पढ़ाई करती है, नौकरी करती है, घर के काम करती है, परिवार को समय देती है और कई बार अपने सपनों को भी थोड़ा पीछे रख देती है। अब समय आ गया कि लड़की के काम को सवाल से नहीं, सम्मान से देखना चाहिए। वो नौकरी करे या अपना बिजनेस शुरू करे, घर संभाले या करियर बनाए, उनका फैसला उसकी काबिलियत और उसकी पसंद के आधार पर होना चाहिए।
1: अपनी जरूरतें खुद पूरी करना, ये भी मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, आर्थिक आजादी का मतलब ये नहीं है कि लड़की घर से अलग हो जाए, इसका मतलब है कि अगर उसे अपने लिए कोई जरूरी चीज चाहिए तो वो उसे अपनी मेहनत से पूरा करने की क्षमता रखती है। आज कई लड़कियां अपनी सैलरी से मोबाइल का रिचार्ज कराने से लेकर घर का राशन तक खरीदती हैं। कोई अपनी छोटी बहन की फीस में मदद करती है, कोई माता पिता के लिए दवाई ला रही है और कोई अपने भविष्य के लिए पैसा बचा रही है। ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियों से आत्मनिर्भरता बनती है। बेटी और बेटा बराबर है ना, सब बोलते हैं ना कि आजकल तो बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। अगर बेटा पढ़कर नौकरी करता है और घर के खर्च में मदद करता है तो हमें गर्व होता है ना। फिर बेटी ऐसा करे तो गर्व क्यों ना हो। आज की बेटियां साबित कर रही हैं कि जिम्मेदारियां उठाने के लिए सिर्फ बेटा होना जरूरी नहीं है, बेटी भी पढ़ सकती है, कमा सकती है और परिवार के लिए मजबूती से खड़ी हो सकती है। बराबरी का मतलब बेटा और बेटी बिल्कुल एक जैसे हों, ऐसा नहीं। बराबरी का मतलब है दोनों को समान मौके मिले और दोनों की मेहनत की समान इज्जत हो। इक्वल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है रीना।
0: बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा है, बेटा हो या बेटी बराबर होते हैं। लेकिन कई घरों में आज भी सिर्फ बेटे को बोलते हैं भैया वाह कमा के दे रहा है, तो बड़े गर्व की बात। और जब बेटी कमाती है तो खुशी क्यों नहीं होती है? मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी भी छोटी सी भी खुशी उसके लिए आप रखेंगे ना, उसके लिए वो बहुत बड़ा होता है। तो बराबर सिर्फ कहने से नहीं होता है, बराबर मानिए, तब जाकर बराबरी कहा जाएगा। नौकरी के पीछे की मेहनत, हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि वाह तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तू तो पढ़ लिख कर कमा रही है, मतलब ऐसी किस्मत हमारी भी हो जाती। लेकिन कोई ये नहीं पूछता उसके पीछे की कितनी मेहनत करी होगी उसने। किसी लड़की को ऑफिस में बैठकर काम करते देखकर लगता है उसकी जिंदगी कितनी आसान, लेकिन उसकी सुबह से पूछिए, समय पर उठना, घर देखना, तैयार होना, रास्ते का ट्रैफिक, ऑफिस का काम, डेडलाइंस और फिर घर लौटकर परिवार को समय देना, ये सब एक साथ संभालना आसान नहीं होता। इसीलिए जब कोई लड़की अपनी नौकरी को लेकर मेहनत करती है तो सिर्फ उसकी सैलरी मत देखिए, उसकी मेहनत देखिए, उसका समय देखिए और उसके पीछे की जिम्मेदारियां देखिए। हर वर्किंग गर्ल्स की कहानी के पीछे एक अलग स्ट्रगल होती है, क्योंकि कोई भी ये नहीं पैदा होते उसकी जॉब नहीं लग जाती है, उसके पीछे मेहनत होता है। जैसे हम चलने के लिए परिश्रम करते हैं, वैसे ही जॉब के लिए भी हमें बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं।
1: एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे आरजी की जॉब कितनी इजी होती है,
0: करेक्ट,
1: कि बस आकर बातें करकर और गाने चलाकर चली जाती है। लेकिन उसके पीछे की तैयारियां, हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, नेक्स्ट हमारी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो लेकिन हम हमेशा हैप्पीनेस के साथ शो को प्रेजेंट करते हैं।
0: कभी हमें मतलब हाँ। मेरे को 104 फीवर था, तभी भी हमारा गला खराब था। इनफेक्ट तुम्हारा भी गला कितना खराब था, फिर भी जब भी देखते थे ना एकदम खांसी आने वाली होती है, फेडर ऊपर करते हैं,
1: नीचे करते थे हाँ। जैसे हमें कभी
0: फेडर एकदम नीचे करते हैं
1: हाँ, डाउन करते थे, ताकि हमारी खांसी, हमारी प्रॉब्लम्स हमारी ऑडियंस तक ना पहुंचे। हम चाहते हैं कि हमारे सभी जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो हैप्पी रहें, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर हम भी प्रॉब्लम लेकर बैठ जाएंगे तो चीजें मुझे लगता है कि थोड़ी सी सही नहीं होंगी। तो हमारा काम होता है कि खुद की लाइफ में चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन सामने वाले को हम खुशियां दें।
0: वही असली बाजीगर कहलाता है,
1: वही असली बाजीगर जी। वो कहते हैं ना,
0: मारी छोरी किसे छोर होते कम
1: कम थोड़ी है, हाँ।
0: और हमारी अभी टीम इंडिया जो लड़कियों की टीम है, धमाल मचा रही है भैया, बहुत ज्यादा धमाल मचा रही है। मतलब मैच कहते एक टाइम ये कहा जाता था खुशी, अरे यार लड़कियों के मैच कौन देखेगा,
1: हाँ।
0: मैं तो नहीं देखने वाला हूँ,
1: हाँ।
0: अच्छा तू देखने वाली है, तू देखने वाला, ये क्वेश्चन आता
1: हाँ।
0: था। और जब लड़कियां जीत गई तो आज करोड़ों आबादी और देशवासियों का लड़कियों की तरफ जो है उनके गेम की तरफ देखने के लिए भैया ने भी पहले टिकट बुक करेंगे
1: हम, अब इंटरेस्ट ज्यादा हो गया,
0: क्योंकि उनसे पहले प्रूफ मांगा जा कि तुम वाकई में कर सकती हो या नहीं कर सकती हो, अगर तुम कर सकती हो तभी तुम इसके काबिलियत हो, अदरवाइज नहीं। तो उन्होंने प्रूफ भी दिया,
1: उनके दिलों पर राज कर रहे हैं, वो दिलों पर राज कर रहे हैं, करोड़ों दिलों पर राज कर रही है हमारी इंडियन क्रिकेट वुमेन।
0: जी बिल्कुल सही कहा तुमने। अब हम माँ बाप का सिर ऊंचा करना, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बेटी खुश रहे और अपने पैरों पर खड़ी हो। जब बेटी पढ़ाई पूरी करके अपने दम पर नौकरी हासिल करती है तो पहले सैलरी पाती है और फिर माता पिता के लिए कुछ करती है, तो उसे खुशी को शब्द में बताना मुश्किल है। कई बेटी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है और उनके माता पिता गर्व करते हैं, ये हमारी बेटी है, शायद इसे बड़ी उपलब्धि किसी बेटी के लिए कुछ नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल, जब हमारे प्राउड से हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं, जब हम अच्छा करते हैं, तो उससे बड़ा और क्या प्राउड मोमेंट हो सकता है, बताओ हमें रीना।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं।
1: मम्मी पापा ने हमें इतना स्ट्रगल करके पढ़ाया है लाइफ में, इतनी मेहनत करके, और जब हम सफल होते हैं तो वो भी खुश होते ही हैं। अब हम बात करने वाले हैं रीना, लड़कियों को सपोर्ट चाहिए। किसी लड़की के सक्सेस होने के पीछे उसकी मेहनत जरूर होती है, लेकिन कई बार परिवार का सपोर्ट भी उतना ही जरूरी होता है। सुबह जल्दी ऑफिस जाने देना, देर से आने पर समझना, घर के काम में हाथ बटाना, या बस इतना कहना तुम कर सकती हो, ये बात लड़की को बहुत ताकत देती है। हर लड़की को रास्ते में किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसकी काबिलियत पर भरोसा करे। इसलिए बेटियों को सिर्फ सलाह मत दीजिए, उनके सपनों के रास्ते में उनका साथ भी दीजिए, उनके साथ चलिए। और कहते हैं ना कि बेटियों को जब आप हिम्मत देते हैं ना, तो वो आसमान छूने की ताकत रखती है।
0: अपने कपड़े, मोबाइल, ट्रैवल, पढ़ाई, छोटी जरूरतें जब वो अपने मेहनत की कमाई की पूरी करती तो उसके अंदर का एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ, और यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर उसे बड़े फैसले लेने में हिम्मत देता है। आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं आती, उसकी शुरुआत अक्सर पहली कमाई और अपने छोटे खर्चे खुद उठाने से होती है। और एक बात और भी हम कहते हैं ना कि घर का काम है सिर्फ लड़कियां ही करेगी, क्यों? घर का काम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता, हर किसी को मिलजुल कर करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। सोचिए कल को लड़का कहीं जाएगा और जब उसको कुछ आएगा नहीं तो कैसे अपने लिए कुछ कर पाएगा? फिर तो वही है, बाहर से ऑर्डर करो, बाहर का खाना खाओ और फिर बीमार पड़ो। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम कनेक्ट होते श्रोता और करेंगे क्या ढेर सारी बातें।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और हम बात कर रहे थे घर का काम सिर्फ लड़की का नहीं होता, अगर महिला नौकरी करती है तो घर की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी क्यों? ऑफिस में काम करने के बाद जब महिला घर आती है उससे घर के सारे काम करने की उम्मीद करना सही नहीं है। घर परिवार का है, इसीलिए घर की जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की होनी चाहिए। पति, भाई, पिता या बच्चे, हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम कर सकता है ताकि उसको अंदर से खुशी भी होगी। परिवार मिलकर जिम्मेदारी उठाता है तो महिला के लिए करियर और फैमिली दोनों में संभलना आसान हो जाता है। क्यों, सही कहा ना खुशी हमने?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब एक गर्ल्स घर आती है ऑफिस से थक हार कर और जब उसको फैमिली सपोर्ट करती है, छोटे छोटे काम सब मिलकर करते हैं, तो उससे फैमिली संभालना ना आसान हो जाता है, इजीली हो जाता है, इजी हो जाती है सारी चीजें। और बात करते हैं, बेटियां परिवार की ताकत है। बेटियों को अक्सर घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन आज की बेटी सिर्फ प्यार और खुशियां नहीं ला रही, वो अपने परिवार की ताकत भी बन रही हैं। वो स्टडी कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने खर्च उठा रही हैं और जरूरत पड़ने पर परिवार के साथ आर्थिक रूप से भी खड़ी हैं। ये बदलाव बहुत खूबसूरत है क्योंकि इससे बेटियों को भी ये भरोसा मिलता है कि उनका परिवार उन पर विश्वास करता है। और जिस बेटी को परिवार का भरोसा मिल जाए उसके लिए मुश्किल रास्ते भी थोड़े आसान हो जाते हैं।
0: ये तो तुमने सही कहा, लेकिन अब देखिए हम यहाँ से जाने की इजाजत भी लेंगे, लेकिन जाते जाते एक और बात, बेटियों के नाम एक सलाम। आज का महिला मंच उन सभी बेटियों और महिलाओं के नाम जो सुबह से रात तक अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, जो पढ़ी, मेहनत की, नौकरी हासिल की और अपनी कमाई से अपना खर्च उठाया और जरूरत पड़ने पर परिवार के लिए भी खड़ी हुई। शायद उसकी मेहनत की हर दिन तारीफ ना होती, लेकिन उसकी वजह से कई घरों में उम्मीद बनती रहती है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी कोई बेटी है, बहन, पत्नी या माँ है जो अपने दम पर आगे बढ़ रही है, तो आज उसे एक बार जरूर कहिए, हमें तुम पर गर्व है। क्योंकि आत्मनिर्भरता, महिला सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती, वो अपने आसपास की कई जिंदगियां बदलने की ताकत रखती है। और श्रोताओं, हम लेते हैं इसी के साथ जाने की इजाजत, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और यूं ही अपना प्यार हमारे रेडियो के लिए बरसा

गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
1: थैंक यू सर,
2: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
1: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है सर? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
2: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल। ठीक है, आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
1: क्या बात है।
2: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
1: जी जी, प्लीज।
2: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
1: ब्यूटीफुल।
2: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से। उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
1: क्या बात है।
2: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या?
1: जी,
2: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
1: हाँ जी।
2: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है, तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
1: हाँ जी।
2: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
1: Alright.
2: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
1: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
2: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं।
1: जी जी।
2: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
1: जी
2: हैं।
1: जी जी जी।
2: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
1: जी जी जी।
2: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं,
1: बट
2: ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती हैं। तो कुछ जैसे कि, जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी

0: वीक होती है जी। तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
1: ओके सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
0: हाँ डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
0: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
1: ऑलराइट,
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: जी हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह। अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2-3 आवर्ली, इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं उनको नहीं पता होता है, वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: Okay.
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं, उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाए ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए।
1: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है, ठीक है। कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है। मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है,
1: ठीक है, बहुत
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25 टू 27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो, ठीक है। और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चों को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में, कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की, सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट, जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है, वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच। वेल, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा। श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए, उनके लिए आप क्या संदेश जाते जाते
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
1: हाँ जी।
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है।
1: जी।
0: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं, या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है, या बच्चा दूध नहीं पी रहा है, या फिर बच्चा तापमान, बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है, या उसको बुखार है।
1: हाँ जी हाँ।
0: ठीक है। या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती है तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी, तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना, और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें, और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की, कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
4: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
4: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
4: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
4: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
3: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
5: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिक नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
7: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
8: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है. बातचीत अभी भी जारी है. हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं.
3: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौता

0: पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
1: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
2: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
3: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
2: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
4: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की नींव है।
2: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचारण क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। आरबीआई के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कॉन्फ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। अनिशिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
7: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
9: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
10: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद, तुम बताओ तुम कैसे हो? इस गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
9: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
10: हाँ यही कहने वाली थी मैं।
9: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
10: बिल्कुल सही।
9: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
10: और स्टूडियो में ना तब भी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
9: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है, और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गाँव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गाँव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियाँ सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। So, आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बहता रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं, हाँ, और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें सब कुछ हमें मिलता है, प्राकृतिक से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी
0: जिम्मेदारी है, बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा।

0: नाम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी, तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है, तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है और जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपनी प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: करेक्ट, सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट, तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाए, हम चार बार नहाए। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ,
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी। अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना। और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना। ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो वो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट होता है। तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें अभी हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से. यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं. प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो. रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी. साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है. अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी. कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है. पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला. लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली. लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा. इसीलिए जरूरी है कि हम अपने प्राकृतिक की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें. क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्राकृतिक सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है. तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें. स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है. बाकी पोल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और इसी की वजह से जो जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है.
0: ये तो आपने सही कहा. तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा. हमारा जाने का समय हो गया है और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी. तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए. तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए.
0: करेक्ट, सही कहा आपने. और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए. जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए.
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास. अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है.
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें. आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं. कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा. इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें. अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ. फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो. याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी. ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6.
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे.
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय.

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
0: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है आज रीना के साथ हेलो फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 3:11 हो चुके हैं और आज की तारीख 5 अक्टूबर। और मुरादाबाद के अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी मुरादाबाद में। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे, हेलो फरमाइश शो शुरू हो गया है और दिन भी बहुत ही प्यारा है, मंडे का दिन है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर कॉल करके आप अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल यानी कि शो के हम फर्स्ट कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो फरमाइश।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार आपको भी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
1: मैं रामपुर गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार साहब आपसे बात कर रहा हूँ।
0: ओके सर, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी में क्या हाल है?
0: सब बहुत बढ़िया है सर, बताइए। आप पहले कॉलर बने हैं, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। खुशी आजकल कहाँ है?
0: एक्चुअली खुशी आएंगी कल से।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, ओके।
0: हाँ जी, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मूवी का नाम है आप आए बाहर आई, और गाने के बोले मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया, और सब कुछ सुनने वालों के नाम है। जैसे कि राजिया खान है, सिमरन खान है, चनार बाबू अंसारी है, मिराज अंसारी है, शफी अहमद अंसारी है, शारिक अली, इरशाद अली, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: चलिए जी, सभी के साथ आपको हम ये गाना सुनवाते हैं। थैंक यू कॉल करने के लिए,
1: शुक्रिया।
0: चलिए हम इस गाने को एंजॉय करते हैं श्रोताओं, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9837896896। फिलहाल हम गाना एंजॉय करेंगे मुझे तेरी मोहब्बत का। जो ये गाना है बहुत ही शानदार गाना है। फ्रॉम मूवी की बात करूँ तो आप आए बाहर आए, ये मूवी यानी कि 1971 में रिलीज़ हुआ था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हम ये गाना एंजॉय करेंगे।

बैठी थी आराम से, मैं छत पे गई कुछ काम से, मैं सीढ़ी पे था वो चोर खड़ा, दिल के अंदर था शोर बड़ा, बाहर गली में सा...

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
5: हेलो जी, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश शो। और समय की बात करूँ तो 3:28 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 5 अक्टूबर, और आज का डे ना वाकई में बहुत ही स्पेशल है। और साथ ही साथ आज ये भी कहा जा रहा है कि 24 राज्यों में आज बारिश आने की संभावना है, तो थोड़ा आप

0: रहा है कि भैया वेदर चेंज हो रहा है, बादल काले काले घटा छा रही है, तो थोड़ा सा बच कर रहिएगा, सतर्क रहिएगा। फिलहाल अपने मुरादाबाद में बारिश नहीं आने वाली, डोंट वरी, आप सेफ है। क्योंकि वैसे भी अगर बात की जाए तो रामलीला ग्राउंड में मेले की तैयारियां है वो शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट आज से ही मेला शुरू होने वाला है, जो यानी कि श्याम बाबा का जो कीर्तन किया जाएगा, कथा है, वो आज से शुरू हो जाएगा। और आज से लेकर यानी कि 23 अक्टूबर तक आप इंजॉय कर सकते हैं, मेले में घूमने के लिए आप आ सकते हैं। और अभी आपने क्या करना है, हेलो फरमाइश शो है तो आपको अपना अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनना है, तो क्या करना है आपने, हमें कॉल करना है, नंबर है 9823786896 पर कॉल करके आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है सर आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नवाब रामपुर से मोहम्मद अफजाल बात कर रहे हैं आपसे।
0: ओके सर, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मूवी रहेगी प्यार कोई खेल नहीं, वो उसमें सॉन्ग रहेगा तेरे गालों पे चांदनी, देखो तो हो गया हर दिन बेमान।
0: चलिए जी सर, यही गाना हम आपको
1: कुछ फ्रेंड है हमारे,
0: हाँ हाँ,
1: ये हैं मोहम्मद तालिक परवेज, मोहम्मद कामिल, लही कयास, इलिया दीवाना, माजिद अकेला, नूर मोहम्मद, सलीम इरफान।
0: ठीक है, ठीक है जी, इन्हीं के साथ आपको हमें गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर? चलिए तो ये गाना सुनते हैं, तेरी गालों की चांदनी, अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में हम गाना एंजॉय करेंगे, फ्रॉम मूवी प्यार कोई खेल नहीं। सो इस गाने को सुनते हैं और आप भी कॉल करते रहिए, हमारा नंबर आपको पता ही है 9823786।

0: हाय
1: हाय अमनिशा, उस दिन वाली शालू जनाब नासिर नहीं बताएंगे
0: सुनील उस दिन वाला अशोक,
1: उस दिन आप अशोक जरूर थे लेकिन आज आप आनंद हैं।
2: हेलो जी, गर्ड वाली आफ्टरनून है आर्जेरीना के साथ। हेलो फरमाइश शो में आप कनेक्ट है और समय की बात करूं तो 3:35 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। और वैसे भी अब दिवाली के बाद शादियों का जो सीजन है वो शुरू हो जाएगा और फिर ऐसे ही ऐसे गाने बजाए जाएंगे। और सच बताऊं शादियों के सीजन में ना जो गाने होते हैं ना एकदम फैंटास्टिक वाला होता है, मतलब सुनकर एक अलग ही मजा आता है। फिलहाल आपने ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में जो ये गाना एंजॉय किया है क्योंकि इनकी आवाज में वो जादू है जो हम सभी को अपनी तरफ ही आकर्षित कर लेते हैं, यानी कि ये हमारे दिमाग पर ना मोहिन, यानी कि कहते हैं ना तुम्हें गानों के साथ तुम्हें अटैच कर लिया तो हम अपनी जिंदगी से गानों को रिलेट कर पाते हैं। फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी बोलो।
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम
2: जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
3: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए मैम आप कैसी हैं?
2: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, क्या नाम है आपका?
3: जी मेरा नाम कश्यप है।
2: कश्यप, क्या करती हो आप?
3: जी मैं पढ़ाई ही करती हूँ।
2: पढ़ाई करती हूँ, कौन सी क्लास में हो?
3: मैं 5th class में हूँ मैम।
2: अच्छा 5th class में हो, चलो बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
3: जी मैं गाना सुनूंगी फॉर्च्यूनर।
2: फॉर्च्यूनर ठीक है, किसी का नाम लेना चाहती हो आप?
3: नो मैम।
2: ठीक है मैं आपको गाना सुनाती हूँ, ठीक है? तो चलिए श्रोताओं हम फॉर्च्यूनर वाला गाना एंजॉय करते हैं हरियाणा।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने हरियाणवी ट्रैक गाना एंजॉय किया है, फॉर्च्यूनर। देखिए जब कहीं जाना होता है ना तो हमारे दिमाग में भी यही ख्याल आते हैं, फॉर्च्यूनर या फिर अपनी गाड़ी से ही जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि अपनी गाड़ी की ना बात ही अलग होती है, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो, एक अलग ही मजा आता है। लेकिन बहुतों को ना ये होती है कि भैया वो उनको ट्रेन में सफर करना है और वो भी विंडो के पास बैठकर सफर करना है। विंडो के पास बैठ के सफर करने का अलग ही मजा होता है, क्योंकि बाहर के जो नजारे हैं ना आप उसको बड़ी खूबसूरती के साथ देख पाते हो और रिलेट भी कर पाते हो, क्योंकि जब तक हम घर पे रहते हैं ना तो वही चार दीवारी देखते रहते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं अलग अलग वेदर से कनेक्ट होते ही उसको महसूस करते हैं। तो इसीलिए देखिए घर से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है अगर आपको बाहर की दुनिया देखनी है तो। और आप अभी हेलो फरमाइश शो में आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 3:41 हो चुके हैं, तो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो
1: मेरी प्यारी प्यारी मैम करा प्यार करा, गुड आफ्टरनून
0: जी। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं ग्राम गुलौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
0: ओके तनुश्री, बहुत प्यारा नाम है आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: आपको पता है इसका मतलब?
1: नहीं मैम।
0: अच्छा नहीं पता है?
1: नहीं।
0: सर्च करके देखना, आपके नाम का बहुत प्यारा शब्द है।
1: ठीक है मैम, मैं पक्का देखूंगी।
0: हाँ बताओ क्या करती हो आप?
1: मैम मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: अच्छा संगीत सीखती हो आप, तो कुछ तो गुनगुनाने का मौका मिलेगा आपको।
1: हाँ तो मैं जो फरमाइश करने वाली हूँ तो मैं जरूर गुनगुनाऊंगी।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: फिल्म का नाम है अंदाज से गाना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे का क्या हो किसने जाना, ये मैम गाना सुनना है।
0: बस इतना ही और गुनगुना दो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है।
1: आपको अच्छा लग रहा है पर बाकी बॉलर मुझे इधर आकर डांटेंगे, बोले ये कितनी बातें कर रही है भगवान।
0: नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए।
1: अच्छा
0: हाँ, जब तक दिल करे तब तक बात करो, जब तक जुबान ये ना कहना कि मैं थक गया हूँ, तब तक बात करनी चाहिए।
1: तो मेरा बात करने का मन पूरा, मतलब जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है तब तक मैं बात करती रहूँ?
0: नहीं नहीं नहीं, फिर तो औरों को मौका नहीं मिल पाएगा ना।
1: नहीं आप तो बोले जबान,
0: नहीं नहीं हाँ बिल्कुल मैंने बोला है, हम बाद में बात करेंगे आपसे, ठीक है? लेकिन और किसी का नाम लेना चाहती हैं आप?
1: मैम गाना मैं सुनाना चाहती हूँ फिर तो आपको। फिर मेरे पापा है भगवान सिंह परमार जी है, अविनाश जी को भी डेडिकेट रहेगा, राकेश जी सुना से गंगाधर सावनकर, रमेश प्रजापति जी, पुष्पना शर्मा, पंचराम शर्मा, गोल्डी जी, दीपा जी दीदी है, स्वाति दीदी है, अनु पांडे है, ओला सुंदर, सभी श्रोताओं के लिए।
0: ठीक है जी, सभी के साथ आपको हम ये गाना सुनवाएंगे, ठीक है
1: जी मैम। ओके बाय
0: बाय।

0: are tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो

0: उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: गुड वाली आफ्टरनून है अर्जेंटीना के साथ। हेलो फरमाइश शो में, और समय की बात करूँ तो 3:50 हो चुके हैं। बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया है। जिंदगी एक सफर है सुहाना। राइट नाउ आप अभी ऑन द वे होंगे, ट्रैफिक में होंगे, तो वैसे इस टाइम तो इतने ट्रैफिक मिलती नहीं। अगर आपको मिलती भी है तो कुछ नहीं करना, जैसे आप हमारे साथ कॉल पे कनेक्ट होंगे तो आप हमें मैं बता सकते हैं जिस भी आप रूट से हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि वीक का यानी कि पहला दिन है, और पहले दिन की शुरुआत ना सच्चे दिल से करनी चाहिए, क्योंकि आप पहले वीक का शुरुआत अच्छे एक सोच के साथ करते हैं तो आपका पूरा वीक बहुत ही फेंटास्टिक वाला होता है। और फिलहाल कॉल करते रहिए, नंबर है 9837896896, क्योंकि आज रीना ये नहीं कहने वाली है कि आपने इस वीक कॉल किया तो मत करिए, क्योंकि आज मंडे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं आराम से, लेकिन जो आज करे वो कल ना करे, ये जरूर मैं बोलूंगी। फिलहाल चलिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी। प्रमोद
0: जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रमोद।
1: नाम है जी सर। जी,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: एकता कॉलोनी से, मझोला
0: एकता कॉलोनी मझोला।
1: जी,
0: जी
1: मंदिर
0: जी जी बताइए, क्या काम करते हैं सर आप?
1: सर। मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, और 3 बजे से मैं ड्यूटी पर आया हूँ। डिजाइन को मैं 3 से 11।
0: अच्छा, 3 से 11 रात को।
1: जी, दिन भर रिक्शा ई रिक्शा चलाता हूँ मैं।
0: अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं आप, चलिए सर बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आपने, मतलब कहाँ आपने ई रिक्शा में ही लगा रखा है क्या रेडियो?
1: नहीं, रेडियो लगा था, वैसे
0: अच्छा
1: सवारी में बस से लगा रखे स्कूल के।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: और गाने की बोल ने भवरे ने चलाया स्कूल स्कूल को ले जा रहा।
0: चलिए सर, आपको हम यही वाला गाना सुनवाते हैं, ठीक है? चलिए नमस्कार सर, चलिए हम गाना सुनते हैं, यानी कि ओल्ड इज गोल्ड। कहते हैं ना, पुराने गाने की बातें कुछ और होती हैं, आप उनको जितना भी सुनो उतना ही कम लगता है। तो हम ये गाना सुनेंगे लता मंगेशकर जी की आवाज में, सुरेश वाडकर जी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गाना, भंवरे ने खिलाया फूल फूल। तो इस गाने को एंजॉय करते रहिए, कॉल करते रहिए, क्योंकि हम आप सभी के साथ याद अखिल भैया आएंगे आप सभी के साथ कनेक्ट होने के लिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग कह सकते हैं क्योंकि 4 बज गए हैं। हेलो फरमाइश शो में आप कनेक्ट है आज रीना के साथ। और समय की बात करूं तो 4 बज चुके हैं। 5 कहने का मेरा मतलब ये है कि आज की तारीख है 5 अक्टूबर।
1: अरे आपको अपना शो टाइम याद आ रहा है ना, सही सही बताओ ना।
0: ये तो है, मेरा शो का टाइम 5 बजे होता है ना, तो मेरे को मतलब हाथों में खुजली होने लग जाती है। किसी को पैसे आते हैं ना तो खुजली होती है, लेकिन मेरे शो के टाइम आता है तो खुजली होने लग जाती है।
1: भैया दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को।
0: नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ेगा, ये श्रोताओं का प्यार है जो मुझे कनेक्ट कर लाते हैं यहाँ पर।
1: चलिए चलिए, अब आप भी आनंद लीजिए और आप भी आराम करिए। चलिए बात करिए अपने
0: कॉलर से। अच्छा, मुझे लगा आराम करने के लिए, तो मैं सोच रही यहीं सो तो नहीं जाऊं मैं। हेलो।
2: हाय दी।
0: हाय, कैसी हो?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए जरा श्रोताओं को।
2: जी मैम, मैं राबिया बात कर रही हूँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: ग्राम गोदी से।
0: अच्छा, ग्राम गोदी से। ये नाम किसने रखा? गोदी
2: जी मैम, पता नहीं कौन थे जिनने ये नाम रखा था।
1: ये गोदी में बहुत रहती होंगी, बचपन में गोदी में बहुत रहती होंगी।
2: ये क्या नाम है भाई हमारे गांव का?
0: वही ना, गोदी में तो हर कोई बड़े छोटे बच्चे बैठे जाते हैं। मैंने कहा गोदी,
2: छोटे बच्चे तो अक्सर बैठते हैं ना गोदी में।
0: हाँ, बच्चे बड़े भी तो मम्मी के गोदी में आराम से बैठ जाते हैं।
2: जी मैम, कभी कभी कब्जा कर लेते हैं मम्मी की गोद में।
0: हाँ, क्योंकि मम्मी की गोद में ना सुकून मिलता है।
2: सुकून मिलता है
0: मैम। जी बताइए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: चलो ले चले तुम्हें तारों की शहर में।
0: तो चलोगे मेरे साथ तारों की शहर में?
2: मैम आप लेके जाना चाहेंगे तो हम जाएंगे।
0: फिलहाल मैं चांदनी के शहर में लेके चल सकती हूँ आपको।
1: नासा ने फोटो भेजा है चांद का।
2: चांदनी का शहर किधर है?
1: नासा
0: चांदनी का शहर रात को आता है ना,
1: चांद पे बहुत सारे गड्ढे हैं।
0: क्योंकि नाइट आउट मुझे पसंद है, तो मैं नाइट आउट पे ले चल सकती हूँ तुम्हें।
2: मैम अच्छा लगता है वो भी,
0: है ना? अच्छा लगता है ना बाहर की लाइटिंग्स देखना।
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है रात में घूमने मैम।
0: अच्छा, तो चलो हम दोनों प्लानिंग करते हैं। अखिल भैया की गाड़ी ले लेंगे, बच्चे ना बच्चे वो अलग बात है।
1: गोदी में घूमना तो उन्हें बहुत पसंद है।
0: चलिए फिर हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
2: ठीक है मैम, कुछ नाम लेना चाहूंगी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए जी, सभी सुनने वालों के साथ आपको हम ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
2: बाय
0: बाय। तो आप ये नेहा कक्कर की और जुबिन नौटियाल जी की आवाज में ये गाना आप एंजॉय करेंगे, और मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम मिलेंगे आपको शाम को 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। बाय।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हेलो फरमाइश शो में और आपसे बात हो रही है आज अखिल की। हाँ जी हाँ, अभी आपकी रीना जी से बात चल रही थी मगर रीना जी ने कहा देखिए सारी फरमाइशें मैं ही क्यों सुनूं, आप भी थोड़ी सी फरमाइशें सुने ना। तो हम ज़रूर सुनेंगे आपकी फरमाइश और खूब सारी ढेर सारी होंगी आपके साथ बातें। चलिए अपने पहले लिसनर से, इस टाइम के पहले लिसनर से बात करते हैं और पूछते हैं उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका।
1: संबल से छोटे अंसारी।
0: छोटे अंसारी साहब कैसे हैं आप।
1: बहुत बढ़िया है। और जी आपको और जितने भी बहन भाई प्रोग्राम सुनना है सभी को मेरा दुआ सलाम जी, और आपको भी
0: धन्यवाद जी। धन्यवाद, हमारी तरफ से भी दुआ सलाम आपको। और इस समय क्या काम कर रहे हैं छोटे अंसारी साहब।
1: इस टाइम हमारे पास जींस का काम हो रहा है, जींस का काम करना है सिलाई का, और प्रोग्राम सुनना थे एफएम मुरादाबाद।
0: कभी ऐसा हुआ है आपके साथ अंसारी जी कि आप एक जीन्स की सिलाई करते करते इतना टाइम लग गया और सोचते हैं यार इतने टाइम में तो मैं दो तीन जीन्स की सिलाई कर देता, कभी कभी कुछ हुआ ऐसा।
1: हाँ मतलब ये है कि मेरा बस दो ही बातों में मन लगता है,
0: कौन
1: तो रोजा नमाज हो गया, फिर दूसरा अपना रोजी रोटी, बस मैं दो ही को मानता हूँ, ज्यादा इन्हें ज्यादा अहमियत देता हूँ। और काम करते मैं रेडियो सुनते रहते हैं साहब।
0: क्या बात है, आपने बता दिया है कि काम को कितनी अहमियत और कितना प्यार से अगर कितने लगन से किया जाए तो काम भी अब आपका एक तरीके से नाम में बदल जाता है।
1: जी जी हाँ, तो काम भी ज्यादा जब भी होता है, जब काम में मन लगा हुआ होता है तो काम भी ज्यादा जब भी खिंच जाता है।
0: अभी आपसे गुफ्तगू हो रही थी तब आपने कुछ बताया था कि अभी आप दिल्ली गए थे और आपको दिल्ली में अवार्ड मिला था एक, तो वो उसके बारे में हमारे सभी श्रोताओं को बताइए कि क्या आप कौन सा अवार्ड आप लेके आए हैं दिल्ली से।
1: दिल्ली से हम साहब लेकर आए हैं जीन्स के काम का अवार्ड लेकर आए हैं।
0: क्या बात,
1: तो गुलशन ग्रोवर जी ने अपने हाथों से हमें दिया,
0: बहुत ही खूब।
1: हाँ, और इतने लंबे चौड़े वो है नहीं जितने फिल्मों में दिखते हैं, मगर हाइट बस ज्यादा आ जाए उनकी 5.5 या 5.5 होगी।
0: आपने ये बात ऐसी कह दी है, उनका आपका नाम पता ना, बैडमैन है वो बॉलीवुड के, अगर उन्होंने बात सुन ली तो आ जाएंगे आपके पास कूदते हुए, बोले अच्छा क्या कह रहे थे इस बैडमैन को।
1: उन्होंने भाई साहब स्टेज पे जाके यही सही डायलॉग बोला था।
0: तो आपने आपने आपने बदले में आपने भी कोई डायलॉग बोला था या नहीं बोला आपने।
1: मैं बात बताऊं, कथई वर्दी वाले जो होते हैं ना,
0: हाँ।
1: जान ही ना देते भाई उनके पास, को पता ना उनकी मिली भगत हो भेजे ना, आंखों से इशारा कर दिए हैं वो लोग, पहले ही सेटिंग करके रख लेते हैं।
0: तो डर तो नहीं लगा आपको, जैसे पिक्चरों में विलेन से डर लगता है, आसपास पता चला एक घूसा मारा और दूर जाके गिर गए, तो आपको कहीं अपने इस विलेन से डर तो नहीं लगा।
1: बिल्कुल भी ना, मैंने तो आम आदमी समझा जी उन्हें, ना तो मैंने तो आम आदमी समझा। संगीता बिरलानी से भी खूब अपने बिल्कुल 5-6 फीट की दूरी से ही बात हुई हमारी, मतलब फोटो वोटो खिंचवाए थे खूब अपने, और उनके गुलशन ग्रोवर जी के साथ में भी दोनों थे, और संगीता बिजलानी अच्छी खासी लंबी है खूब, जैसे फिल्मों में दिखाई नहीं है ना ऐसी, इतनी लंबी है खूब।
0: क्या बात है क्या बात है, तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आप जो अवार्ड लेके आए इतनी मेहनत से आप काम करते हैं उसका आपको अचीवमेंट कुछ अवार्ड मिला है तो वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो कौन सी फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें, और कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप।
1: तो जी वो होटल जो था ना, हाँ भी बता रही हूँ, वो होटल जो था ना, होटल भी बड़ा शानदार था साहब, कुछ देर आदमी देखे। होटल भी बहुत शानदार था और अच्छी जगह में।
0: आपने होटल के, आपने फिर होटल में खूब सारी सेल्फी ली, खूब सारे फोटो खींचे, आप अपने दोस्तों के साथ गए थे, कैसे गए थे आप फैमिली के साथ।
1: वो भाई साहब ऐसा हुआ, जो प्रोग्राम कराया ना वो गुड्डू कुरैशी जी ने।
0: अच्छा, गुड्डू कुरैशी जी ने।
1: हाँ, तो मतलब हमने वो दे दिया था, फार्म दे दिया था संबल के नाम से, तो वो कहने लगे यार संबल का तो मैं भी हूँ, मैंने क्यों ना बात करूँ।
0: क्या बात है, जब अपने शहर का कोई व्यक्ति मिल जाता है ना उस मुकाम पे उसके आसपास, तो और जो है ना एकदम सीना चौड़ा हो जाता है, एकदम 56 इंच की छाती हो जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप और हम दुबई में मिल गए तो किसी मोहब्बत से और भी ज्यादा बातें करेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, दुबई में कभी अगर कोई अपने उसका शहर का मिल जाए तो वो खूब एकदम ऐसा लगेगा कि यार कहीं बिछड़े हुए साथ ही मिल गए, ऐसी बातें हो जाती हैं कभी कभी।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो वो गुड्डू भाई कहने लगे, अंसारी जी आप पूरी फैमिली को लेकर आओ।
0: क्या बात है, और आपने पूरी खुद फैमिली फोटोग्राफ करवाया आपने फिर?
1: हाँ ना, तो फिर कोई कोई लेता है इस बात में दिलचस्पी, और मैंने एक दो से कह भी बोले ना, खैर हम तो जाना रहे, वही खैर हम तो जाना रहे, तो हम इकले ही पहुंच गए थे। अब ये है कि देखो हम कहते हैं, अब यार मुरादाबाद लगी है मोबाइल पे जरा, अब यार यूट्यूब पे सुन लेंगे, अब मन का जो रेडियो पे सुनने का मजा है वो किसी बात में ना है।
0: क्या बात है, कैसे डाउनलोड करा आपने मोबाइल ऐप पे आपने FM मुरादाबाद, बताइएगा।
1: हाँ बिल्कुल, उस पे प्ले स्टोर में गए।
0: हाँ जी,
1: हाँ तो उससे हो गया, कराया करा हमने,
0: उस पर टाइप किया आपने FM मुरादाबाद 89.6, और उसके बाद जो रेड आइकन बन के आया आपने उसे डाउनलोड कर लिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो दो चार ही अक्षर लिखे है ना, तो वो आ जाता है एकदम।
0: क्या बात, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं अंसारी जी। तो आप बताइए कौन सी फरमाइश है जो आपका FM मुरादाबाद आपके लिए प्ले करें?
1: गाना तो हम मोहम्मद रफी की आवाज में सुनेंगे, फिल्म का नाम है डबोल रिंग ट्रेन, पल दो पल का साथ हो हमारा, पल दो पल के यार आने में।
0: क्या बात है, तो जरूर आइए गाने की फरमाइश पूरी करते हैं, पल दो पल का साथ हुआ, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यार आने में। ठीक है सर,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे अच्छी बात करी और सभी लिसनर से आप अच्छी बात करते हैं। क्या टाइम हो गया भाई साहब?
0: अंसारी जी आप भले ही छोटे हैं मगर आपकी बातें बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, और टाइम हुआ है 4:20। धन्यवाद, इतनी अच्छी बात है, और इतनी कहते हैं ना कुछ एक टाइम आपने इतनी बातें निकाल के करी और बताया सभी के बारे में। एक परसेप्शन होता है हर इंसान का कि जब भी वो किसी सेलिब्रिटी या किसी भी VIP पर्सनैलिटी से मिलता है तो उसके बारे में ना उसके अंदर से जिज्ञासा रहती है कि मैं कितनी से ज़्यादा बातें इनके बारे में जान लूं। तो वो हम सभी के बीच में रहती है, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपने उस बात को बताया और जाहिर किया, बहुत अच्छा लगा अंसारी जी आपसे बात करके।
1: मुझे आपकी बातें जो है ना भूलने का ना हो, याद रहेंगी, बहुत अच्छी बात करी आपने हमसे भाई, सब सही बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात करी आपने, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह।
0: धन्यवाद अंसारी जी,
1: ख्याल रखिए भाई साहब, जीवन में आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें खुशी होगी।
0: आप ऐसे ही कॉल करते रहें, हम आपकी बातों के साथ ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। धन्यवाद अंसारी जी। तो चलिए श्रोताओ, अंसारी जी की फरमाइश पल दो पल का साथ हमारा, तो जरूर इसे सुनते हैं और थोड़ा सा आनंद लेते हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे और चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां खूब सारी फरमाइशें और आपसे बातें हो रही हैं। ये जो गाना है ना, कुछ कहते हैं एकदम दिल के करीब होता है। जब भी इस गाने को आप सुनते हैं और महसूस करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ही आप इस गाने के पार्ट हैं। इसके ऊपर एक बात याद आई, कुछ गीत दिल के बेहद करीब होते हैं, कुछ गीत दिल के बेहद होते हैं, कुछ लोग दिल के बेहद करीब होते हैं, और जब दोनों एक साथ मिल जाएं तो शाम के पल बेहद खास होते हैं। तो इन्हीं खास पलों के साथ चलिए अपने बात करते हैं नए लिसनर से और पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप?
1: हेलो फरमाइश।
0: सर ये ना इधर आरजे मैं हूँ, पता चला अगर दोनों ही आरजे बन गए ना तो फिर तो हो गया काम। तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं राजू यादव, गांव प्रियंका श्रीराम पटेरा, सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: आपने तो इतना लंबा चौड़ा एड्रेस बता दिया है कि डाकिया भी कहेगा भाई साहब चलो अगले साल देंगे इन्हें पोस्ट।
1: और सर जी जैसे आप कह रहे हैं कि आप आरजे बन जाएंगे तो आपने ही इसे बोलना सीखा होगा सर जी।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। बिना किसी सीखे से तो हम कुछ, चाहे कोई भी हो, कोई सीखता तभी है जब कोई उसे सिखाने वाला होता है। तो बताइए अभी जो गाना प्ले हो रहा था ना
1: जी,
0: तो उसमें जो चुनरी का इस्तेमाल हो रहा था वो कहाँ से आई थी?
1: चुनरी तो आई नहीं, कहीं से तो मंगाई होगी।
0: नहीं, हम आपको चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, बाजारगंज से आई थी, लालगंज से आई थी, या बुद्ध बाजार से आई थी, या फिर टाउन हॉल से आई थी।
1: बाजार लालगंज से।
0: क्या बात है साहब, मतलब गाना आपने ध्यान से सुना है। लालगंज के लाल बाग से लाल चुनरिया आई। तो क्या करते हैं आप राजू जी?
1: सर जी हम कृषक हैं और इस समय हम अपने खेत पर मूंगफली की फसल लगी हुई है, तिली की फसल घर पर पहुंच गई है।
0: क्या बात है, जो इस समय मूंगफली की फसल लगी हुई है तो जाड़ों का इंतजाम हो रहा है, बहुत ही जल्द सबको मूंगफली खाने को मिलेगी।
1: सर जी लगभग 15 दिन में मूंगफली तैयार हो जाएगी।
0: क्या बात है, तो मूंगफली की क्या खासियत होती है, कैसे कोई अच्छी मूंगफली पहचाने आप ये बताइए आज कि दे। जब आप मार्केट में जाते हैं और ठेले पे खूब सारी आपको मूंगफलियां रखी हुई दिखती हैं तो क्या पहचान है कि हम मूंगफली जो है अगर दिखने में ऐसी हो तो वो बिल्कुल बढ़िया ही होगी, क्वालिटी अच्छी होगी उसकी?
1: सर जी लाल दाना को छोड़ करके आप चिकनी दाने वाली मूंगफली का टेस्ट अलग होता है।
0: तो लाल दाना आप एक्चुअली मूंगफली के तो ऊपर कवर हो गया ना, तो लाल दाना तो अंदर ही हुआ, तो अंदर से लाल दाना ऐसे थोड़ी कोई स्कैन करके देख लेगा।
1: नहीं नहीं नहीं, उसमें अलग चमक रहती है चिकनी वाली मूंगफली की जो होती है ना।
0: हाँ, चमक रहती है। तो जो मूंगफली चिकनी सी दिखे आपको आप उसे ले, आप ये कहना चाहते हैं?
1: जी।
0: तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी क्या फरमाइश है, आप कौन सा कहीं चिकनी चमेली तो गाना नहीं सुनेंगे आज?
1: नहीं सर जी, उसका मूवी का नाम रहेगा राजा हिंदुस्तान।
0: क्या बात है, किस किस को डेडिकेट करना चाहते हैं आप राजू जी?
1: हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के श्री गौतम राय भोले जी हैं, लोकन वर्मा जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, राजन गंगवार जी हैं, कैलाश सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो हम आपका कार्यक्रम एफएम मुरादाबाद सुनते हैं।
0: क्या बात है, आपने जिस अंदाज में बात बोली है ना वो अंदाज सुनने में ज्यादा अच्छा लगा है, नाम तो घंटा किसी को याद रहे।
1: दो लाइनें भी कहेंगे?
0: जरूर जरूर।
1: तुम्हारी यादों का गुलाम कर दिया।
0: क्या बात है, तुम्हारी यादों का गुलाम कर दिया,
1: तुम्हारे खातिर खुद को बदनाम कर दिया।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: क्या सबूत दूं आपको अपनी मोहब्बत का,
0: क्या सबूत दूं आपको अपनी मोहब्बत का,
1: एक सीने में दिल था वो भी रेडियो एफएम मुरादाबाद के नाम कर दिया।
0: क्या बात है, क्या बात है, तालियां साहब, तालियां। मतलब मेरे पास इस समय है नहीं इतने सारे हाथ, वरना मैं तालियां तो बजवा ही देता आपके लिए।
1: हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे वो तो तालियां बजाते होंगे।
0: हाँ, एक आपके लिए, मतलब इसी बात पे एक हमारी तरफ से भी कुछ निकल रहा है
1: जी।
0: रिश्ते वो नहीं जो दुनिया को दिखाए जाए, रिश्ते वो हैं जो दिल से निभाए जाए, दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो अपने हमेशा दिल में पाए जाए।
1: जी सर जी।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राजू जी, और आपकी फरमाइश का गाना प्ले करते हैं, और ऐसे ही आप बिल्कुल कहते हैं ना, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही चहकते रहें और खूब मस्त रहें।
1: प्रणाम
0: प्रणाम जी, प्रणाम, नमस्ते। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे राजू जी, मतलब इनके आगे श्रीवास्तव लगा होना चाहिए था, जिस तरीके से बातें कर रहे थे, जिस तरीके से खुशनुमा कहते हैं ना, समा बांध दिया इन्होंने, तो जरूर इनकी फरमाइश पूरी करते हैं। और आपकी भी अगर कोई फरमाइश है तो हेलो फरमाइश पे 9837896896 पे कॉल करें और साहब ऐसे ही खूब दिल खोल के अपनी फरमाइश करें। तो चलिए तब तक सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी का एक गाना, आए हो मेरी जिंदगी में, उदित नारायण जी के द्वारा गाया हुआ, और इसमें तो आपको पता ही है जो कास्टिंग है आमिर खान साहब और करिश्मा कपूर जी की, तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। खूब सारी फरमाइशों के साथ हैं और खूब सारी बातों के साथ हैं। ये जो गाना है ना, जो भी आपने सुना, आंखों में बसे हुए तुम तुझे दिल में छुपा लूंगा, तो ये गाना ही ऐसा ऐसा जैसे ही सुनोगे ना, खुद ही आपके लब बोल पड़ेंगे ये गाना और गुनगुनाने लगोगे आप। खूब सारी इन कुछ होती है ना, कुछ खट्टी मीठी बातें होती हैं और कुछ बहुत ही बातें जो दिल के पास होती हैं। तो कुछ गाने भी जो होते हैं वो दिल के पास होते हैं, और जो दिल के पास गाने होते हैं ना, उन्हें गुनगुनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए हमारे नए लिसनर से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया
0: सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी जिला मुरादाबाद से अतल सिंह सैनी बोल रहा हूँ।
0: तो अथर सिंह सैनी जी, इस समय क्या करते हैं आप और क्या काम है आपका?
1: जी मैं, मेन काम तो मेरा खेती बाड़ी है, दूसरा काम मेरा प्लॉटिंग का है।
0: पहला काम आपका खेती बाड़ी, दूसरा काम आपको वहीं उसी के बगल में जो आए खेत
1: में, क्या मुरादाबाद क्षेत्र में कहीं भी हो,
0: क्या बात है,
1: करते हैं मुरादाबाद क्षेत्र में।
0: बहुत बड़ी, कितने साल से कर रहे हैं आप ये काम?
1: मुझे हो गया कम से कम 20-22 साल प्लॉटिंग के काम को करता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सैनी साहब। तो सबसे ज़्यादा मज़ा, मतलब जैसे आप दो काम एक साथ कर रहे हैं, तो कैसे आप अपने समय को मैनेज करते हैं?
1: खेती का काम तो आप सब वही ट्रैक्टर से होता है, खेतों में तो क्या मजदूर वजदूर तो करा लिया, बाकी तो अब खुद हम जानकारी वाला काम तो करते नहीं है, हम सैनी है, जानकारी करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं इस काम को, हम तो मोटर की फसल करते हैं, गेहूँ धान और गन्ना।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: अभी लेकर करा लेते हैं और बाकी जो है प्लॉटिंग पे हम खुद बैठते हैं।
0: प्लॉटिंग पे जब आप खुद बैठते हैं तो खुद ही प्लॉट काट देते हैं।
1: जी जी
0: सही है, बहुत ही बढ़िया। इस समय आपकी एट प्रेजेंट प्लॉटिंग कहाँ चल रही है?
1: इस टाइम प्लॉटिंग हमारी जहाँ शेफाली का गांव है नूरपुर, हमारी उस टाइम उसी गांव में चल रही है।
0: अच्छा, जहाँ शेफाली जी का गांव है उसके आसपास।
1: जी जी जी,
0: बहुत
1: उसी गांव में चल रही है, और जगह भी चल रही है मुरादाबाद में भी।
0: क्या बात है, क्या बात है। अभी एक गाना प्ले हो रहा था कि आंखों में बसे हो तुम तो मैं दिल में छुपा लूंगा। आपकी शादी हो गई है क्या सैनी साहब? हाँ, तो मतलब शादी तो हो गई होगी 2-3 बार। क्या बात है। तो अब आप ये बात बताइए, कभी ये गाना बजा हो और आप कभी मुस्कुराए इस गाने को सुन के? नहीं,
1: गाना बढ़िया गाना है, आंखों में बसे हो तुम मैं दिल में बता लूंगा, कितना बढ़िया गाना, अच्छा लगता है, तो कभी भी सुनो अच्छा लगता है गाना।
0: तो ये बात बताइए, इस गाने में जो पिक्चराइजेशन किया गया है, कौन से एक्टर और एक्ट्रेस के ऊपर किया गया
1: है? ये तो यार मेरे को मालूम नहीं है, अलका याग्निक की आवाज है और उदित नारायण की आवाज।
0: क्या बात, नहीं अभी अभिजीत और अलका याग्निक जी ने गाया है।
1: अभिजीत और अलका याग्निक की।
0: और जो इस फिल्म के हीरो है ना, उन्होंने जो बॉर्डर मूवी आई थी उसमें उन्होंने उसमें टैंक उड़ा दिया था, टैंक।
1: अच्छा,
0: अब बताइए कौन से हीरो थे वो?
1: बॉर्डर तो सनी देओल की है।
0: और कौन से हीरो थे जिन्होंने एकदम टैंक के नीचे अपना बम फेंक के एकदम टैंक ही उड़ा दिया था? ये धरती मेरी माँ है,
1: सुनील शेट्टी।
0: क्या बात है, क्या बात है। मतलब देखा, उनका कुछ हीरोज के डायलॉग्स ऐसे होते हैं, अगर सिर्फ बोल दो तो एकदम याद आ जाता है, अरे किसने बोला ये। तो बहुत ही बढ़िया, सुनील शेट्टी और साथ में जो है इनके साथ ही सोनाली बिंद्रे। तो चलिए अब आपकी फरमाइश बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज में फिल्म का नाम है भरोसा और गाने के बोल हैं, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें चाहे कल जितनी।
0: आपने तो आज इतनी सारी बातें कर ली, अब हम कल क्या आपसे बात करेंगे।
1: जी जी, और अभी आप छोटे अंसारी से बात कर रहे थे, संभल वाले छोटे अंसारी,
0: आज सब हमारे पास, आज हमारे पास सब संभल वाले ही, या तो संभल की रोड वाले मिल रहे हैं या संभल वाले मिल रहे हैं।
1: और अगर मेरे छोटे अंसारी जी बात सुन रहे हो तो मैं छोटे अंसारी से जरूर मिल के आऊंगा।
0: आप जरूर उनसे, और जब आप उनसे मिलने जाए तो हमें बताइएगा, हम भी चलेंगे साथ में।
1: अच्छा, चलते हैं, आप भी चलिए, चलो ठीक है, बढ़िया बात है।
0: तो अंसारी साहब से खूब सारी बातें और मुलाकातें करेंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, आपसे अच्छा लगा बात करके सैनी साहब, और जरूर कभी भी मौका मिलेगा तो जरूर आपके पास प्लॉटिंग पे आएंगे।
1: जी मैं नाम तो ले दूं कुछ अपने परिवार के?
0: अरे सर, आप पूरी लिस्ट ले लीजिएगा आज।
1: जैसे मेरे परिवार के सदस्य हैं, मीना, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आचल, आकांक्षा, आकाश, और नूरपुर के हैं मेरे दोस्त बबलू वाल्मीकि, और खड़िया के हैं अमरजीत भाई, और ये नवापुरा वाला हैं बबली अंजान, और जितने भी सुनने वाले सभी के लिए वाला गाना सुनना चाहता हूँ, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें चाहे कल जितनी।
0: क्या बात है, आपने जो बातें कही है ना, जितने भी अनजान लोग हैं जो सुन रहे हैं आपको, आज सब आपको याद रखेंगे।
1: जी राधे राधे,
0: राधे राधे सनी। तो ये थे श्रोताओं हमारे साथ सैनी जी, जिन्होंने कहा ना एकदम अपनी फरमाइश को इस तरीके से रखा है कि सच में एकदम यादगार बन जाती हैं वो बातें। और गाना भले ही इन पहचान नहीं पाए एक्टर को या बता नहीं पाए कि एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, मगर जैसे ही उन्हें हल्का सा हिंट मिला उन्होंने एकदम बता दिया हाँ जी ये ही एक्टर हैं। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए, आपकी भी कोई फरमाइश है तो 9837896896 हाँ साहब 9837896896 पे आप कर सकते हैं बात। और चलिए तब तक सुनते हैं ये आज की मुलाकात, बस इतना सी।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, जहां हो रही है हेलो फरमाइश और आपसे खूब सारी बातें। तो चलिए साहब, पता ही नहीं चला पूरा एक घंटा कैसा बीत गया, और पीछे से रीना जी की आवाज़ आ रही है, क्या बात है अखिल जी, छोड़ोगे नहीं क्या आज माइक? मैंने कहा नहीं जी, जरूर छोड़ेंगे, आप भी आइए, आप ही का समय है, हम तो बस आज आ गए हैं अपनी ठिंका चिका वाली एंट्री करने। तो चलिए चलिए चलिए चलिए, देखिए देखिए देखिए कितने आराम से पीछे से आवाज़ आ रही है, नहीं जी आप ही करते रहो, मैं तो आराम से बैठ के सुनूंगी आपको। तो भाई साहब कभी कभी सुननी पड़ जाती है, तो अपने लास्ट कॉलर को लेते हैं और पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो और कैसा चल रहा है उनका मामला। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप?
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं आप?
1: जी सर, मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: भगवान सिंह जी परमार
1: जी सर।
0: तो क्या करते हैं आप भगवान सिंह जी?
1: जी सर, मैं खेती किसानी करता हूँ, अभी खेत पर हूँ, वहीं से कोल मिलाया सर जी।
0: अरे तो खेत में पानी दे रखा है? नहीं दे रखा है?
1: नहीं सर, अभी पानी नहीं चालू किया है, गेहूं की फसल बुआई की, अभी तो हमने हकाई जुताई करके खेत पटक दिए हैं और सोयाबीन की कटाई हो चुकी है सर, किसानी के काम से फारिग हो गए हैं।
0: क्या बात है, इस समय मौसम कैसा हो रहा है वहाँ पे? और जैसे शाम
1: मौसम है ना, अभी बादल छाए हुए हैं मामूली से, और बरसात का तो कोई हो नहीं रहा है वैसे भी, और अब देखते हैं सर आगे होती है कि नहीं होती है।
0: क्या बात है, क्या बात है। और कौन कौन है आपके परिवार में?
1: जी सर, हमारे परिवार में माता पिता हैं, बच्चे हैं और मैं हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज क्या फरमाइश है आपकी? और
1: सुना दीजिए इतिहास फिल्म का गाने के बोल हैं ये, इससे बड़ा बेदर्दी है, और हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के सभी दोस्तों को डेडिकेट रहेगा सर जी, और आपको भी।
0: धन्यवाद धन्यवाद भगवान सिंह जी, तो ये आपकी फरमाइश जरूर पूरी करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके हमें।
1: और सर आपकी प्रस्तुति बहुत लाजवाब है सर।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। थोड़ा सा गला आप कह देते हैं, मगर गला साथ नहीं देता है, कहता है अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो या कैसे बोल रहे हो आज। चलिए साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे और भी खूब सारी बातें होंगी जब भी अगली बार मुलाकातें होंगी।
1: जी सर बिल्कुल, धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद भगवान सिंह जी। तो ये श्रोता हमारे साथ चलते चलते जुड़े थे भगवान सिंह जी, और हमने भी भगवान जी का नाम ले लिया, जय श्री राम। ऐसे ही समय कट जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हेलो फरमाइश का हमारा एक घंटा भी पूरा कैसे हो गया। शाम ढले तो यादें आती हैं, कुछ चेहरे मुस्कुराहट दे जाती हैं, कुछ रिश्ते पास नहीं होते फिर भी दिल के पास रह जाते हैं। वाँ
2: वाँ।
0: तो जाने से पहले देखो, वाह वाह जो आ रही ना, वाह, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले आज का आखिरी सवाल, अगर आपको अभी किसी एक इंसान को एक लाइन बोलनी हो तो क्या बोलेंगे? अपना जवाब हमें ज़रूर भेजिएगा, हम ज़रूर पढ़ेंगे और रात में इसकी बात भी करेंगे। हो सकता है आपकी वही लाइन अगली बार हमारे शो की शुरुआत बन जाए। तो मैं हूं आपका दोस्त अखिल, और आप सुन रहे थे हेलो फरमाइश, जहां आपकी फरमाइश सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि आपकी आवाज़, आपकी कहानी और आपकी याद होती है। तो मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए, और अगली मुलाकात तक फरमाइशें भेजते रहिए, क्योंकि गाने बजते रहेंगे, दिल जुड़ते रहेंगे। और रीना जी आ रही हैं, भले ही वो पीछे से आवाज़ दे रही हूँ करते रहो नहीं, मगर वो आएंगी और अपना भी धमाका मचा के जाएंगी। तो चलिए साइनिंग ऑफ करते हैं इस समय, और रात में मिलेंगे आपसे ठीक 9 बजे, जहाँ होगी आपसे दिल की बातें। बाय बाय, गुड इवनिंग, और हाँ सीट बेल्ट ज़रूर लगा के रखिएगा, मुस्कुराना तो अच्छा है मगर साहब सीट बेल्ट उससे भी ज़्यादा लगाना ज़रूरी है। खूब मस्ती करेंगे, मिलते हैं जल्दी ही।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। सानू निगम जी की आवाज़ में ही आपने गाना एंजॉय किया है। लेकिन सोचिए, फिलहाल तो मैं बता दूं कि मैं आपके साथ आपकी अपनी आरजेडी ना इवनिंग मिस्ट्री शो लेकर कनेक्ट हो गई हूँ, और समय की बात करें तो 5:14 हो चुके हैं। 4 दिन, बस 4 दिन। लेकिन सवाल ये है कि 4 दिन आखिर होते कितने हैं? क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हिसाब लगाया जाए, तो 4 दिनों का मतलब 4 दिन में होते हैं 24 घंटे, यानी 4 दिन में पूरे हुए 96 घंटे। अब सुनने में तो 96 घंटे काफी लग रहे हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम करना हो तो यही 4 दिन पलक झपकते कैसे निकल जाते हैं बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। कभी कभी हम कहते हैं ये 4 दिन, अभी तो 4 दिन बाकी है, बाद में कर लेंगे, और फिर देखते ही देखते ये 4 दिन कैसे गायब हो जाते हैं आपको भी पता नहीं चलेगा। तो मेरा आप सभी से सवाल ये है कि अगर आपको सिर्फ 4 दिन मिले और उसके बाद कोई नया काम शुरू करने को बोल दिया जाए, तो इन 4 दिनों में आप क्या करना चाहेंगे? सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9832378968968। अभी कहेंगे ना कि बस रीना अभी आई और अभी से सवाल शुरू कर दिया पूछने। जी बिल्कुल, क्योंकि गाना ही ना कुछ ऐसा है, जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। अब बताइए, बेकार दिन कौन सा होता है और 4 दिन अच्छे जीने के कौन से होते हैं? फिलहाल आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको 4 दिन मिले कि अपने अंदर बदलाव लाओ, तो आप सबसे पहले क्या लाएंगे और क्या करना चाहेंगे? क्योंकि वक्त 4 दिन का हो या 4 साल का, जाता बहुत जल्दी है। जैसे ये 2026 कैसे छू मंतर वाला फुर होता ही जा रहा है ना। तो बस आप सोचिए और मैसेज करिए कि आपको 4 दिन मिले कुछ नया काम करने का, कुछ बदलाव करने का, तो आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आप आज जो रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं इवनिंग मस्ती शो में, जहां पर बातें हम ढेर सारी करेंगे, और शाम होते होते यही कहते हैं चल बाबा सेल्फी ले ले रे। फिलहाल मैं कहती हूँ एड ब्रेक सुन लो जी उसके बाद ढेर सारी बातें करेंगे।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: हाँ जी, बहुत ही शानदार वाला आपने अरिजीत सिंह की आवाज में गाना एंजॉय किया था, काफिराना। आय हाय आय हाय, कुछ गाने ना वाकई में बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही लाजवाब होता है। और आप आरजे रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुरादाबाद की आपको खबरें मिलती रहे, यानी कि अपने मुरादाबाद में भैया रावण की पुतली को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, रखी कर क्या है क्या नहीं उसके बारे में माजरा हम बात करेंगे। फिलहाल राशन कार्ड में भी चेंज बताया जा रहा है, तो क्या चेंज है क्या चेंज नहीं है, सब अपडेट आपको यही मिलने वाली है। फिलहाल आज मैंने आप सभी से एक ना कड़क क्वेश्चन पूछा है, जो कि बड़ा ही फैंटास्टिक है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जीने के कहते हैं होते हैं चार दिन, बाकी दिन कहाँ गए ये बताइए। तो आज का हमारा आप सभी से क्वेश्चन है, अगर आपको सिर्फ चार दिन मिले और आपको उनको बताना होगा, यानी कि आपने खुद को बदलना है, वक्त चार दिन का हो सकता है और ये साल भी चार दिन का हो सकता है। फिलहाल अगर आपको चार दिन के भीतर ही, चार दिन के अंदर खुद को चेंज करना हो, जो आपने प्लानिंग करा हो वो निकल गया, आपको रीस्टार्ट करना हो, तो चार दिन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बदलाव लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे? आज का हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपको चार दिन में आप अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहेंगे, क्या चेंज ला सकते हैं अपने बारे में। फटाफट आपने मैसेज करना है, नंबर है 9837896। क्योंकि कोई नया बदलाव शुरू करना हो तो इन चार दिनों में आप कैसे करेंगे, सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल एक और गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, वॉच झुमका।

था कि अगर आपके पास 4 दिन हैं और 4 दिन में कुछ नया करना चाहते हो, कुछ अपने अंदर चेंज करना चाहते हो, तो क्या करोगे? क्योंकि अक्सर देखा जाए तो 4 दिन कब निकल जाते हैं मैम, पता नहीं चलता है। बिल्कुल सही कहा राघव जी आपने। तो इनका कहना है कि अगर मुझे 4 दिन मिले कि अपने आप को थोड़ा चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? तो इनका कहना ये है कि अगर मेरे को 4 दिन मिले तो मैं कुछ नया शुरू करूंगा, लेकिन वो शुरू क्या करूंगा वो मैं बताऊंगा नहीं, बस कुछ नया ही करूंगा और अच्छा करूंगा, जिससे मेरे को भी अच्छा फील होए और मेरे घर वाले भी खुश होए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार आपका मैसेज है, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। सो अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ सरिता जी कनेक्ट होती हैं एमडीए से, और इनका कहना है कि आपने चेंज की बात करी है तो मैं चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि अब मैं स्टडी करती हूँ और मैं ये सोच के टालती रहती हूँ कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कल से तैयारियाँ करूँगी, परसों से तैयारी करूँगी, लेकिन ये कल परसों आज कब निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जैसे कि आपने 4 दिन बोला है, तो मैं 4 दिन से, यानी कि पहले दिन से

0: कहना है कि मैं चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से कुछ काम भी सोच रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि छोटा ही सही लेकिन काम की शुरुआत की जाए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, और गाने से पहले कुछ हमारे कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

आज वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ, आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 5:52 हो चुके हैं और शाम का वक्त वैसे ही बड़ा ही सुहाना होता है। और टेम्परेचर की बात करूँ तो 31 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2 पॉइंट डाउन हो चुका है, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा भी सही भी नहीं कह सकते, लेकिन दोपहर के मुकाबले ठीक है। और अगर देखिए आपको राशन मिलता है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है।

कि अब आपको राशन मिलता है और राशन में आपने देखा होगा कि गेहूं और बाजरा, बहुत जगह चावल भी मिलते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि गेहूं, चावल और बाजरे के साथ साथ आपको तेल भी मिलेंगे राशन का, राशन में। तो भैया, जिनके पास राशन कार्ड है और जो राशन जिनके घर पर आता है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो तेल आप बाहर खरीदते हैं उससे कम से भी कम रेट में, यानी मतलब जो आपको राशन जहाँ से लेते हैं वहाँ पर मिलने वाला है, यानी कि राशन में अब इंक्लूड कर दिया जाएगा, तेल भी आपको मिलेगा। तो भाई, इसके साथ साथ हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि सरसों का तेल वैसे ही बाहर खरीदा जाए तो 180, यानी कि 1 किलो का, 1 किलो अगर आप लेते हैं तो 180-190 रुपये का आता है। अब वही आपको वहाँ पर थोड़ा सा देखिए कम में मिलेगा, और आप भी खुश हो जाएंगे क्योंकि हैप्पी। और देखिए, जिनके फैमिली में जो एक दो को राशन आता है, तो उनके घर में तो 2 डिब्बे आने वाले तेल के हैं ना। और भी ढेर सारी अगर आप अपडेट जानना चाहते हैं तो बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, और अब हम जानेंगे, यानी कि देखिए सोने की गिरावट में भी बताया जा रही कि गिरावट आ चुकी है, और साथ ही साथ मूवी जो कि ब्लॉकबस्टर पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा रही है, आखिरकार ये कौन सी मूवी है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अब रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो मेन्यू में अब लिखा आएगा एक और चीज़ ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन वो क्या ऐड कर दिया जाएगा, क्या नहीं कर दिया जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आजकल हर किसी को रहता है कि भैया मैं डाइट पर हूँ, और डाइट पर हूँ तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। तो इसीलिए अब हर चीज़ आपको कहाँ मिलने वाले हैं, कहाँ नहीं मिलने वाले हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना सुनते हैं, उसके बाद में लौटते हैं। और राशन कार्ड मिलता है तो अब आपको तेल भी मिलेगा सरसों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं।
1: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
2: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
1: डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवर DST।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिक सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया कैम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके ये बदलाव किसने किए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्कूलों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के मसौदे पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकार देश के शिक्षा तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को स्वीकृति दी। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में भी कल तक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad. 89.6 FM।
5: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
6: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
7: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
6: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
7: अरे नहीं,
8: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
7: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
6: अच्छा?
8: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

जी गुड वाली इवनिंग है जी, आर्जेरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:09 हो चुके हैं और आज का दिन है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास। जरा सोचिए, अगर हमारे जिंदगी में टीचर शब्द ही हटा दिया जाए तो हमें ए से अनार कौन सिखाएगा, और जिंदगी में सही गलत का फर्क कौन बताएगा। आपके साथ आपकी आरजे रीना है और आज का दिन हमारे लिए बेहद बहुत खास है, क्योंकि आज मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस। टीचर सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होते, वो हमें जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाते हैं। हमारी पहली टीचर हमारी माँ होती है, आई नो। फिर स्कूल में हमें हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा सिखाया जाता है। हमारे शिक्षक हमें पढ़ाना लिखना सिखाते हैं, हमारी गलतियां सुधारते हैं और हमें आगे बढ़ने का हौसला देते रहते हैं। आज जो भी हम हैं उन्हीं की वजह से, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस वाला है, कोई इंजीनियर है, बहुत अलग अलग फील्ड में हर कोई अपने अपने मुकाम पर ज़रूर है, और वो कहीं ना कहीं अपने टीचर के कारण ही है, क्योंकि अगर वो हमें ज्ञान ना देते, ना पढ़ाते, तो हम शायद यहाँ तक आज नहीं होते। तो आज अपने टीचर को ज़रूर याद कीजिए और उनको मैसेज ज़रूर करिए कि हम जो भी हैं आपकी वजह से हैं, क्योंकि माँ हमारी पहली गुरु होती है, लेकिन गुरु के साथ साथ जो हमारे टीचर होते हैं ना, जो हमें ज्ञान के मार्ग पर सही गलत का रास्ता दिखाते हैं, और भविष्य में आगे जो भी आप बनना चाहते हो वो पहली भाप लेते हैं कि भाई ये बच्चा इस फील्ड में बहुत आगे जाएगा। तो हर किसी टीचर की भी ख्वाहिश होती है कि जो बच्चा उनसे पढ़ रहा है जिंदगी में जरूर कुछ बने, और जब आप कुछ बनकर उनके सामने जाते हैं ना, तो निस्वार्थ वाला प्यार होता है और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके पढ़ाए बच्चे जब कामयाब होते हैं ना, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, नेक्स्ट लेवल वाली खुशी मिलती है। तो आज आपने, आई होप कि आप अपने टीचर को थैंक्स आपने ज़रूर बोला होगा। और मेरे पास कुछ मैसेज है, और ये मैसेज आता है आशिफ जी का। गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, गुड इवनिंग। इनका कहना है कि क्या हाल है, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपकी आवाज़ इवनिंग मस्ती शो में सुन रहे हैं, हमेशा की तरह आज का शो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी प्यारी बातों, दिलचस्प विषय और साथ में सुनने को मिल रहे हैं अच्छे अच्छे गाने भी। और इनका कहना है कि कल संडे था, तो आपका दिन कैसा रहा, कहीं आप बाहर गए घूमने या नहीं गए? तो नहीं सर, मैं संडे को कहीं नहीं जाती हूँ। एक्चुअली मुझे अकेला घूमना पसंद नहीं, कभी कभी मन करता है तो मैं मूवी देखने चली जाती हूँ, अदरवाइज मैं कहीं नहीं जाती हूँ घूमने के लिए, बस अपने रूम में रहती हूँ मैं। कभी कभी स्टूडियो में भी आ जाती हूँ खुशी के साथ शाम को, भले हालांकि मैं बोलती नहीं हूँ, बट मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ उसके साथ। अब हम गाना सुनेंगे एक और मस्त वाला, उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होंगी और करेंगे क्या, अरे ढेर थोड़ी बॉडी करने वाली है भैया, और क्या ही करेंगे बताइए आप जरा। आई नो कि आप ट्रैफिक में हैं तो आपको मजा आ रहा होगा भैया गाने सुन के और बातों के साथ साथ, तो आपसे यही कहना चाहेंगे रेडियो का वॉल्यूम है वो बढ़ा लीजिए जनाब, तभी मजा आने वाला है, अदरवाइज ना कतई मजा नहीं आएगा। इसीलिए वॉल्यूम जरूर बढ़ाना है आपने। और फिलहाल ये वाला गाना सुनते हैं, इलीगल वेपन का गाना सुनते हैं, और उसके बाद में कनेक्ट होती हूँ जैस्मी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

फिलहाल आप सभी से यही कहेंगे कि धीरे धीरे रेडियो का वॉल्यूम है वो बढ़ाइए और अर्जुनिया के साथ कनेक्ट रहिए इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 6:25 हो चुके हैं श्रोता, और आज की तारीख 5 अक्टूबर, रामलीला ग्राउंड में मेले की तैयारी भैया जोरों शोरों पर है, यानी कि आज से शुरू हो जाएगी। और अब काम की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो हाइजीन से लेकर अब आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार जिस सब्जी को आप ऑर्डर कर रहे हैं वो क्या माजरा है, उसके पीछे क्या नहीं है, मैं बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, देखिए जब भी आप जाते हैं तो कुछ होटल और रेस्टोरेंट को अपनी मेन्यू कार्ड पर ये बताना होगा कि खाना किस तेल में बनाया गया है। बिल्कुल, क्योंकि बहुतों का ये होता है कि हमें सरसों के तेल वाला नहीं खाना चाहिए, सोया वाला नहीं खाऊंगी मैं, रिफाइंड वाला ऑयल नहीं खा सकती हूँ मैं, बहुतों को हर किसी क्यों ना किसी किसी ऑयल से एलर्जी भी होता है, सो बाद में खाना खाने के बाद में उनको एलर्जी होने लग जाती है, तो इस चीज़ का वो प्रॉपर ध्यान रख पाएंगे। और ये कह दिया गया कि होटल और रेस्टोरेंट में जो भी सेफ है जो खाना बनाएगा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अदरवाइज उनको सस्पेंड यानी कि होटल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये चेकआउट किया जाएगा हर 2-3 महीने पर, यानी कि होटल रेस्टोरेंट में जाकर ये चेकआउट किया जाएगा कि खाने हैं जो खाना मिलता है वो कितना स्वच्छ कितना साफ है और कितना नहीं है, ताकि कोई भी इंसान बीमार ना रहे, तो इस चीज पर कार्रवाई अब की जाएगी। इसके अलावा मेन्यू में ये भी बताना होगा कि शाही, शाकाहारी या मांसाहारी और इसमें इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्टीनर यानी कि रंग और जो भी, मतलब हर एक चीज आपको मेन्यू में अब लिखा होगा, आपको उनसे पूछना नहीं पड़ेगा, उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि भैया ऑयल कम होना चाहिए या फिर मैं ज्यादा चिल्ली नहीं खा पा, मतलब ज़्यादा तीखी चीज़ें नहीं खा पाता हूँ या नहीं खा पाती हूँ, तो वो आप चीज़ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हर एक चीज़ आपको मेन्यू में लिखा हुआ मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से ऑर्डर कर सके और आप भी सेफ रहे और अपना पेट भी आराम से भर सके। तो अब ये चीज जारी कर दिया गया है, इसीलिए होटल या रेस्टोरेंट में इस चीज का प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा और मेन्यू बिल्कुल आप सभी के सामने होगा एकदम फैंटास्टिक वाला। फिलहाल हम सभी यही कहते हैं किसी होटल में ओ खाना खाए। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं कड़क सवाल भी लेकर आने वाली हूँ ना आप सभी के लिए। आर यू रेडी? आई नो, मुझे पता है कि रेडी। और साथ ही साथ अब ये बताया जा रहा है भैया पेट्रोल और डीजल का जो रेट है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे, बस गाने के बाद लौट कर आती फिर बताती हूँ, बस ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा नहीं महंगाई हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है वो बता दूंगी मैं। डोंट

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: प्लीज नहीं,
4: अरे नहीं, मुझे छोड़ दो।
5: चलो पीछे।

गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। अब कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो समय हो चुका है, यानी कि 6:39 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप अर्जुरीना के साथ कनेक्ट है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं पेट्रोल और डीजल के, यानी कि रेट की बात करें तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जरा सासे वासे मतलब जो ज़्यादा आ रही है तो मैं कहती हूँ दिल थाम के बैठ जाइए जी, क्योंकि इतना महंगा नहीं हुआ है जितना आप सोच रहे हैं। बस जितना महंगा हुआ है वो बजट से थोड़ा सा बाहर हो सकता है। तो अब हम बात करते, देखिए काम की बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते चलाते इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाइक और गाड़ी निकालने का मौका मिलता है या बाहर जाने का मौका मिलता है तो यही देखा जाता है कि डीजल और पेट्रोल है या नहीं है, तभी आगे जा पाएंगे, अदरवाइज भैया नहीं जा पाएंगे। प्लस सीएनजी का भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेट्रोल की बात की जाए तो 5% लीटर की बढ़ोतरी हुई है, और वहीं डीजल की बात की जाए तो 3% लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि अगर आप डीजल पेट्रोल लेते हैं तो इन चीज का भी आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। और बाकी आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि अर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। वहीं अगर सीएनजी और पीएनजी की बात करूं तो इनमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो इस चीजों का ध्यान रखें। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो एक बार चेकआउट जरूर कर ले, तभी आप पेट्रोल डीजल लेने जाते हैं तो शायद आप बहस नहीं कर पाए, क्योंकि अरे हमने तो कल तक लिया था तो बहुत सस्ता था लेकिन आज कैसे बढ़ गया। तो जब भी आप इन जगह जाते हैं तो इस चीज का अपने प्रॉपर ध्यान रखना है। और आज का कड़क म्यूजिक भी हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए, तो इस म्यूजिक को आपने सुनना है और हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए एक बार हम सुनते हैं म्यूजिक और आपने बताना है, महसूस कर। एक मिनट, एक मिनट, हॉल।

हां जी, क्या सोचा आपने? ये म्यूजिक जो मैं प्ले कर रही हूँ, आई नो कि ये गाना आपका फेवरेट भी होगा और बहुत बार आपने ये गाना सुना भी होगा, तो इसीलिए आपने फटाफट मैसेज करना है और बताना है कि आखिरकार ये जो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ गाने का नाम बता रहे, बस इतना ही करना है। अगर मूवी बता सकते तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। आपने सिर्फ गाने का नाम ही बताना है, क्योंकि जो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ गाने का नाम बता रही।

चलिए जी, सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। हमारा नंबर है 9837896896 पर मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं आर्जरीना के नाम से मिल जाऊंगी वहां पर। फिलहाल एक और शानदार गाना।

0: है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती हैं लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

साथ जी बहुत ही शानदार वाला अपने गाना एंजॉय किया है। काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालिनी, किसी मन चले पे आ गया है दिल तो भोगी बड़ी मुश्किल। ओए होए क्या बात है जी, शाम को और ऐसे गाने, मतलब शाम तो वैसे भी बिंदास और झकास हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी आप आरजेरीना के शो में कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:50 हो चुके हैं और आरजेरीना लेके आपसे जाने की इजाज़त, लेकिन जाते जाते भी तो बहुत सी बातें करनी है मुझे आप सभी के साथ। मैं बात करूँ तो अब ये बताया जा रहा है कि दिवाली और छठ पूजा के पावन यानी कि जो फेस्टिवल्स हैं नवरात्रि के मौके पर भी, जो आप देखते होंगे कि सड़कों पर ठेले लगाए जाते हैं फूल बेचने के लिए, फ्रूट्स होते हैं बेचने के लिए जो ठेले पर रखते हैं, और प्लस दिए की बात करूं तो अब सरकार की तरफ से ये फैसला आ रहा है कि

नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा के पावन फेस्टिवल पर जो ये ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, कृपया करके इनको ना हटाया जाए, क्योंकि जो सामानें आपको रेहड़ी और ठेले से मिल सकती है ना, वो बड़े शॉप पर आप जाएंगे तो थोड़ा सा लेट लग सकता है, लेकिन आपको रेहड़ी पर वो आराम से मिल जाता है, लेकिन भीड़ हर जगह होती है आपको। तो फिलहाल सरकार की तरफ से ऐलान आ चुका है कि इनको ना हटाया जाए, इनको परेशान ना किया जाए, लेकिन आपने बीच सड़क पर नहीं लगाना है। आपने आपने भी ये याद रखना है कि साइड में ही लगाना है। बीच सड़क पर लगाएंगे तो कॉमन सी बात है कि आपके ठेले हैं जो, उसको तो हटाया ही हटाया जाएगा। इसीलिए अपना जगह देखिए और आराम से ठेले लगाइए, फूल का हो, चाहे फ्रूट्स का हो, चाहे दिए का हो, आप आराम से लगा सकते हैं, पटाखों का भी लगा सकते हैं, और इसके लिए आपको सरकार अभी फिलहाल कुछ नहीं कहने वाली है। और साथ ही साथ आज का जो मैंने आप सभी से कड़क सवाल पूछा ना भैया, वो भी बड़ा ही फिंटास्टिक वाला है, बस आपने थोड़ा सा सुनना था और ये देखना था कि ये जो म्यूजिक है कौन से गाने का है।

चलिए जी, जल्दी सोचिए क्योंकि अब बारिश सिर्फ आपके मैसेज के ही हैं, क्योंकि आपके मैसेज की तरफ ही अब हम कनेक्ट होने वाले हैं, इसलिए एक और मौका आपको मिल सकता है बस इस गाने को पहचानने का।

हर किसी ने गाना देखा होगा, सुना होगा, हर किसी ने मूवी भी देखी होगी, क्योंकि बहुत फैंटास्टिक वाली मूवी है। और प्लस एक गाना हम प्ले करते हैं नेहा कक्कड़ की आवाज़ में, बड़ा ही खूबसूरत वाला गाना। और इस गाने के बाद मैं लौट कर आऊँगी आप सभी के बीच, और आप सभी के जितने भी मैसेज आ रहे हैं उनको हम शामिल करेंगे। फिलहाल कहते हैं ना, जब आप दो इंसान हो तो एक साथ बैठ के गल्ला करनी चाहिए, दो गल्ला करिए। तो ये वाला गाना एंजॉय करती हूँ।

इतना शानदार गाना है ना नेहा कक्कर की आवाज में कि दो गल्ला करिए, इसीलिए कहते हैं जब तक आपकी आतो फेफड़ों में सांस है ना तब तक हर किसी से मिलजुल कर प्रेम से बात कर लिया करिए, क्योंकि कल हो ना हो किसने जाना, इसीलिए मिलजुल कर रहिए, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए, जिससे भी बात कर रहे हैं प्यार से बात करिए, एक मुस्कान के साथ बात करिए। और आप आर जो रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूँ तो 6:57 हो चुके हैं, और जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था बारी आ चुकी है आप सभी के मैसेज शामिल करने की, तो एक बार और हम प्ले करेंगे म्यूजिक और उसके बाद आप सभी के मैसेज। तो चलिए अब देखना ये है कि हमारे पास सबसे पहले राइट आंसर किनका आया है। तो मोहम्मद आसिफ जी का हमारे पास सबसे पहले राइट आंसर आया है, और इनका कहना है कि रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। और आगे कहते हैं, रीना जी एक बात बताइए, एक दिन में आप कितने पेट्रोल और डीजल खर्च करते हैं? तो फिलहाल सर मैं ना मेरे पास गाड़ी है ना स्कूटी है, आप ही दिला दीजिए तभी हम पेट्रोल और डीजल खर्च करने में तभी तो मजा आएगा ना। अभी तो हम फिलहाल अपने पैरों को कष्ट देते हैं, अपने पैरों को हम थोड़ा सा बोलते हैं कि भैया तुम ही चलो और तुम ही थको और फिर आराम से लेट जाओ। तो अभी तो हम तो कुछ भी डीजल पेट्रोल नहीं खर्च करते हैं, आप बता सकते हैं कि आप कितना करते हैं। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो अंसार हुसैन जी कनेक्ट होते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से, इवनिंग पहुंचाते वेरी गुड इवनिंग जी। अगले मैसेज की बात करूं तो जय श्री राम, रीना जी क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका कहना है कि तेरे दिल भी जाने बेकरार हो जाए, यानी कि रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो कोमल शर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट होती है राइट आंसर के साथ, प्लस इन्होंने मूवी का नाम भी बताया है, मुझसे शादी करोगी? नहीं करेंगे जी। और अगले मैसेज की बात करूं तो गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में जो आप भी गाने प्ले करती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और जानकारियां भी बहुत काम की होती हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, शैयद शारिक अली जी, मिराज अंसारी, और ये भी राइट आंसर के साथ। फिलहाल मैं यहाँ से लूंगी जाने की इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम टाइम एंड सेम जगह, करेंगे ढेर सारी बातें, अभी के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और मेले में जरूर जाइए क्योंकि आज से मेला शुरू हो चुका है। बाय।

0: आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पहमला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नई दिल्ली में आज म्यूनिख सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स के जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। स्कॉटहोम में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया गेम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में कल तक बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद
3: कॉल 7500153841।
6: बदल रहा है उत्तर प्रदेश तरक्की की नई पहचान गांव-गांव में विकास की गूंज हर हाथ को मिल रहा है सम्मान विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं
4: और हूं आपकी दोस्त प्राची।
6: मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। आप सभी का बहुत स्वागत है
4: दोस्तों। उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं बल्कि विकास रोजगार महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गांव किसान युवा महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
4: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
6: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद, मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देशी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही।

0: गांव की महिलाएं स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
1: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
0: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, तान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं, उसको शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं। सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया। इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
1: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख खा देती है।
0: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
1: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
0: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण ओमेगा 3 और एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
1: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है। चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
0: और कानपुर देहात के कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
1: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है।
0: बहुत कुछ, सुनिए। छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
1: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
0: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
1: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
0: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
1: यानी गांव का युवा अब अपने जिले में ही काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
0: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता,
1: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
0: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
1: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
0: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
1: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम दोनों की तरफ से
0: नमस्कार।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जल्द ही मिलेंगे श्रोताओं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: किए गए विशेष प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र फैजुल्लागंज से नैमिषारण्य तक हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की और अधिकारियों को आवश्यक राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गोमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण लखनऊ के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है। उन्होंने सिंचाई विभाग को फैजुल्लागंज से नैमिषारण्य तक तटबंध निर्माण की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
3: सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को भी इस बारे में कहा है कि फैजुल्लागंज से लेकर के नैमिष तक नदी के तट का सर्वे करते हुए तटबंध बनाने की व्यवस्था, साथ साथ जो गांव तटबंध के बाहर रहे वहां पर बरसात का पानी बाहर निकालने के लिए भी उचित व्यवस्था देनी पड़ेगी। पंपिंग सेट लगा करके वहां के पानी को बरसात के समय जब नदी का जलस्तर बढ़े तो उसको पंप आउट करने के लिए भी एक व्यवस्था सिंचाई विभाग अभी से उसका प्रस्ताव तैयार करके उसको करे।
2: मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लखनऊ जिला प्रशासन और नगर निगम बाढ़ग्रस्त इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने के लिए नावों की व्यवस्था की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अयोध्या के रानोपाली स्थित उदासीन आश्रम में गुरुपर्व महामहोत्सव और संत सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संतों ने धर्म, शिक्षा और संस्कृति को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। राम मंदिर आंदोलन में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। रक्षा मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने संस्कृत के अध्ययन को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी विद्यालयों में वैदिक की पढ़ाई शुरू कराने पर जोर दिया।
4: आज जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हैं, तो हमें उन संतों को भी स्मरण करना चाहिए जिनके त्याग और बलिदान से यह संभव हुआ। शिक्षा, धर्म और संस्कृति, इन तीनों ही क्षेत्रों में हमारे संतों ने योगदान दिया है और आज तक वो हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स आज भी बेजोड़ है बहनों भाइयों, बड़े से बड़े कठिन सवालों का समाधान वैदिक माध्यम से निकाला जा सकता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। और
2: सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अपने लोकतांत्रिक विरासत को और सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आज उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 8 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशियों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी प्रत्याशियों को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शुभकामनाएं दी हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए बीते माह 29 सितम्बर को द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल इसी साल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राज्यसभा की इन 10 सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होना है। समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
2: वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। भारतीय जनता पार्टी के खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी केदारनाथ सिंह और समाजवादी पार्टी के शिक्षक स्नातक प्रत्याशी लाल बिहारी यादव सहित 10 से ज्यादा प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। ये समाचार आप लखनऊ से आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही सेवा संकल्प यात्रा आज दोपहर सुल्तानपुर पहुंची, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को आगे के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन्मभूमि से कर्मभूमि तक की ये यात्रा भारत को एक सूत्र में जोड़ने के संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
6: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
7: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
6: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
8: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
6: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को आज 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तूखन साहू ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत आवासों में से सर्वाधिक आवास पूरा करने के लिए प्रथम पुरस्कार और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत स्वीकृत आवासों में से सर्वाधिक प्रतिशत आवासों की ग्राउंडिंग के लिए तीसरा पुरस्कार प्रदान किया। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। मैच से पहले आज दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर अभ्यास किया। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जाम से निपटने के लिए शहीद पथ पर कल दोपहर 3 बजे से मैच समाप्त होने तक सभी प्रकार की बसों और छोटे बड़े कमर्शियल वाहनों की नो एंट्री रहेगी। प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज मौसम अचानक बदल गया। राजधानी लखनऊ, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, महाराजगंज और श्रावस्ती में बारिश हुई। वहीं अम्बेडकर नगर में कई इलाकों में ओले गिरने के समाचार भी प्राप्त हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। फैजुल्लागंज से नैमिषारण्य तक तटबंध निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अयोध्या में गुरुपर्व महामहोत्सव में हुए शामिल। कहा, केंद्र सरकार ने संस्कृति को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का किया प्रयास। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 8 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख कल और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच लखनऊ के

0: थाना स्टेडियम में कल खेला जायेगा T20 मैच, सुरक्षा और यातायात के किये गये विशेष इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जायेगा। नमस्कार।
1: ये हम जानेंगे डॉक्टर अजीत जी से। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ। एक्चुअली नेत्रदान पखवाड़ा जो है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये पूरे देश भर में एक पखवाड़े के रूप में
1: बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और अगर आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर। व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोग अक्सर समझते हैं डॉक्टर साहब की नेत्रदान का मतलब पूरी आंख निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति को लगा देना है, इसमें कितनी सच्चाई है?
2: एक्चुअली ऐसा नहीं है
1: जी।
2: नेत्रदान में बस हम जो कॉर्निया है, जो आंख के सामने जिसको पुतली बोलते हैं, काली पुतली है, बस वो निकालते हैं
1: जी।
2: और इसमें पूरी आई नहीं निकाली जाती और इस कारण से चेहरे का डिसफिगरमेंट होने का भी रिस्क नहीं होता है। देखने में भी कॉस्मेटिकली ठीक लगता है। तो हम बस जो हमारे सामने की पारदर्शी परत जिसको पुतली बोलते हैं उसको बस निकालते हैं, पूरी आंख नहीं निकालते हैं।
1: तो श्रोताओं, आई होप आपने एक मिथ तो डेफिनेटली अपना दूर कर ही लिया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन से व्यक्ति जो नेत्रदान कर सकते हैं और उनकी कोई एज लिमिट भी होती है क्या इसमें?
2: नेत्रदान करने के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है। इसको कोई भी व्यक्ति मरणोपरांत या मरने से पहले अपना प्लेस फॉर्म फिल करके या संकल्प पत्र लेकर के प्रत्यारोपण कर सकता है, कहीं भी कर सकता है।
1: कोई ऐसी
2: इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं।
1: ओके, ठीक है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जीवन में नेत्रदान करने का संकल्प लेता है तो उसके बाद उसे मतलब क्या करना चाहिए? उसकी फैमिली कई बार पैनिक हो जाती है कि ये नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी होता है ना ऐसा, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: एक्चुअली पैनिक होने की इसमें कोई बात नहीं है। इसमें ये सोचना चाहिए कि एक नेत्रदान है वो एक महान दान है, एक सामाजिक काम है, जिसके बाद हम ये सोचकर करें कि मरने के बाद भी मृत व्यक्ति की आंख दुनिया को देखेगी और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। अपनी स्वेच्छा से बस आपको फोन करना है, आपको अस्पताल भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम आपके घर पर जाएगी और स्वतः वहां से आपकी कॉर्निया निकाल करके हम लोग लाते हैं। इसका कोई खर्च नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती।
1: जी सर, अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, इसमें कोई नंबर है या कोई कॉन्टेक्ट है जिससे कॉल करके परिवार या वो व्यक्ति पूरी जानकारी ले सके?
2: एक यूनिवर्सल टोल फ्री नंबर है 1919 जिस पर हम कॉल करके मृत व्यक्ति के घर वाले या जो भी है जो प्लेस करना चाहते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, वो कॉल करके बता सकते हैं, बोल सकते हैं। उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी टीम आती है, उनको काउंसिल करती है, समझाती है कि उससे जुड़े हुए क्या मिथ हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत हो नहीं सकती, कोई दिक्कत होती नहीं उसमें
1: जी।
2: तो हम लोग आकर के खुद वो स्वतः हमारी टीम आकर के उसको ले जाती
1: है। अच्छा, तो इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है
2: 1919।
1: इस पे भी आप श्रोताओं कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो डॉक्टर साहब से बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर हम रुकते हैं ब्रेक के लिए, एक म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद वापस आते हैं। आप ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते।

0: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक बार फिर से वंस अगेन वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं तो अजीत जी सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मेरा आपसे एक सवाल रहेगा सर, जो मृतक परिवार है अगर वो जब तक आपकी आई बैंक की टीम वहां पर नहीं पहुंचती है तो उनको कौन कौन सी सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए?
2: एक्चुअली नेत्रदान से पूर्व जब तक हमारी टीम वहां नहीं पहुंचे तब तक मृत व्यक्ति के परिवार को कुछ कुछ सावधानियां बरतनी होती है। जैसे उनका सर थोड़ा सा एलिवेट करके रखें, वो ऊंचा करके रखें, आंखें बंद करके गीली रुई आंखों के ऊपर रख दें, पंखा वो कूलर बंद कर दें।
1: डॉक्टर साहब मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा, किन परिस्थितियों में जो है नेत्रदान नहीं किया जाता?
2: कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर नेत्रदान नहीं किया जा सकता है, जैसे यदि किसी की डेथ सेप्सिस से हुई हो, एक्टिव सेप्सिस हो, या फिर रेबीज के मरीज हो, या फिर HIV HCV और हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो, या फिर कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे क्रिस्पेल जैकब डिजीज या इंसेफ्लाइटिस, उन सब यदि एक्टिव होता है उसमें हम आई डोनेशन नहीं।
1: ओके, अच्छा एक मेरा पर्सनल सवाल है, क्या नेत्रदान के लिए उनको हॉस्पिटल जाना होता है या आई बैंक की टीम घर आ जाती
2: है? आई बैंक की टीम खुद घर आ जाती है, जनरली उनको हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं होती, हमारी टीम पूरी तरह से इक्विप्ड है, ट्रेंड है इस चीज के लिए।
1: ठीक है, ओके सर।
2: और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये कोई एक बड़ा और लेंदी लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, इसमें आराम से पब्लिक के बीच में और परिवार वालों के सामने ही आई डोनेशन आप कर सकते।
1: ओके डॉक्टर साहब एक और सवाल है, मान लीजिए किसी परिवार ने संकल्प नहीं लिया है आई डोनेशन का बट वो उसका परिवार कराना चाहता है तो क्या ये संभव है, पॉसिबल है?
2: हाँ, इस कंडीशन में ऐसा है ना कि फैमिली को जरूरी नहीं है कि पहले से ही संकल्प पत्र फिल हो या प्लेज लिए हो, उसमें बिना प्लेज फॉर्म फिल किए भी वो एट ए टाइम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको डोनेशन कराना है। और ये डोनेशन कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी भी राज्य का हो, किसी दूसरे राज्य में नहीं कर सकता, ये कहीं भी करा।
1: सपोज मैंने अगर अपना संकल्प लिया मुरादाबाद में और मैं चला जाता हूँ राजस्थान में और खुदा ना खास्ता वहाँ डेथ होती है तो क्या वहाँ हो सकता है, पॉसिबल है?
2: हाँ, आप वहाँ की टीम को या फिर 1919 जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप वहाँ भी ये करा सकते।
1: ठीक है, ओके डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीते जी संकल्प नहीं लिया आई डोनेशन का लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार अगर आई डोनेशन करना चाहे, नेत्रदान करना चाहे तो क्या हो सकता है, पॉसिबल है?
2: एक्चुअली इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि संकल्प पत्र फिल किया जाए, प्लेज फॉर्म हो ही, उसके बिना भी वो डोनेशन कर सकते।
1: ठीक है, ओके, मतलब ये संभव है, पॉसिबल?
2: हाँ, ये संभव है।
1: ठीक है, सो श्रोताओं आज बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजीत जी मौजूद हैं स्टूडियो में और लगातार हम नेत्रदान पे बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। ढेर सारी बातचीत जो है वो लगातार जारी रहेगी, ब्रेक के बाद आएंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, डॉक्टर अजीत जी से उनके बारे में बहुत सारी बातें पूछनी है अभी मुझे, उन्होंने बहुत जानकारियां दी है लेकिन उनके बारे में तो हमने कुछ जाना ही नहीं है, तो जनता भी इंतजार कर रही है एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।
0: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 FM।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर। और सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर अजीत जी, और तमाम जानकारियां उन्होंने हमारे लिसनर्स को दी है, मुरादाबादीज को दी है, मुरादाबाद के बाहर भी लोग हमें सुनते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने बारे में भी हमारी जनता को बताएं। आपने तमाम जानकारियां दी, तमाम सवालों के जवाब दिए, अब मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनली जानना चाहता हूं, आप थोड़ा अपने बारे में हमारी जनता को बताएं।
1: तो मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है, मैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में आई बैंक डायरेक्टर के रूप में हूं।
0: सो डॉक्टर साहब जाते जाते आप हमारी जनता को जो तमाम इस वक्त आपको देख रही है या रेडियो पे सुन रही है, उनको आप क्या संदेश देंगे, क्या एक अपील करना चाहेंगे हमारी मुरादाबाद की ऑडियंस?
1: तो आई डोनेशन में तो हमारा पूरा भारत देश ही बहुत पीछे है, और मुरादाबाद की को देखा जाए तो यहाँ पर डोनेट करने वालों की संख्या काफी कम है और रिसीवर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ चाहते हैं मुरादाबाद की जनता से कि कृपया सामने आकर के प्लेस करें, प्लेज फॉर्म भरें और स्वेच्छा से आई डोनेट।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी इस विषय पर, बहुत अच्छा लगा। और सर से बातचीत करके ये तो पता लगता है कि सर की जो लैंग्वेज वो बता रही है वो प्रॉपर मुरादाबाद से तो नहीं है। वेल कोई बात नहीं सर, अगर आप ये बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को जो सुन रहे हैं। ये आप थोड़ा सा बता दीजिए आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा मजा आ जाएगा।
1: मैं बेसिकली पटना बिहार का रहने वाला हूँ और अपनी सुविधाएं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में पिछले 10-11 सालों से दे रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर। वो एक कोई टैगलाइन है शायद, अगर मैंने बोल दी तो मेरे पे भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ। आप कहीं में जाइए गाइस, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। जल्दी मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद पे। एंड कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं तो सोशली फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से। अभी के लिए थैंक यू सो मच, छोड़ के जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत। आंखों से जुड़ी बातें हो रही थी तो एक आंखों वाला गाना तो बनता है। सो बस मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।

0: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060002430।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सखी वन स्टॉप सेंटर के कामकाज की समीक्षा की, हर महीने विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आज से कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू। दिल्ली में मतदाताओं के नामांकन के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप जारी। DTC बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने PG संचालन से जुड़े मुद्दों पर संचालकों और प्रबंधकों से चर्चा की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को दी जा रही सेवाओं तथा शिकायतों के निस्तारण की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की।
3: निरीक्षण के दौरान श्रीमती गुप्ता ने सेंटर पर आने वाले मामलों के रिकॉर्ड और उनके फॉलोअप की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब से राजधानी के सभी सखी वन स्टॉप सेंटरों की विस्तृत रिपोर्ट प्रतिमाह मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जाए, जिसमें प्रत्येक मामले की पुलिस सूचना, FIR की स्थिति, आरोपी के विरुद्ध की गई कार्रवाई और पीड़िता को मिली वास्तविक सहायता का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य हो। श्रीमती गुप्ता ने पॉक्सो मामलों में गोपनीयता के साथ पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐप आधारित और डिजिटल परिवहन सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: आयोग ने कहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं रोजाना ऐप आधारित कैब और अन्य परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। आयोग ने बताया कि दिशा निर्देश महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें 2013 की JS वर्मा समिति की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है। आयोग ने राज्य सरकार, पुलिस और परिवहन सेवाओं से महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: दिल्ली परिवहन निगम DTC बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस कार्ड को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग ने राजधानी के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए 38 DTC पिंक पास वितरण केंद्रों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। इसके साथ ही कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को और अधिक आसान और सुलभ बनाने के लिए राजधानी के कई इलाकों में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सभी पात्र महिलाओं को कार्ड बनाने और जारी करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज युवा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज की छात्राओं से संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए और विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण कर लोकतांत्रिक संस्था के कामकाज को प्रत्यक्ष रूप से समझने तथा संविधान, विधायी प्रक्रियाओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जाना। दिल्ली सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सुविधा से बोर्ड को अपनी सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान होने वाली आर्थिक परेशानियों से बड़ी राहत मिलेगी।
5: दिल्ली सरकार ने बताया

0: इस सुविधा से पहले किसी बीमारी या उपचार की आवश्यकता होने पर पेंशनरों को अस्पताल में इलाज का खर्च पहले अपनी जेब से वहन करना पड़ता था। इसके बाद प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने और लंबी प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता होती थी। इसी प्रक्रिया को और आसान करने की दिशा में यह कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दिल्ली की सेवा में समर्पित किया है।
1: वो हजारों कर्मचारी अधिकारी जो दिल्ली जल बोर्ड में काम करते रहे और उनके जीवन के इस पड़ाव पे जब उन्हें सरकार की सहायता की जरूरत थी, उनके पास अभी तक कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध थी। आज हमारी सरकार ने इसके लिए सभी पेंशनर्स के लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी जो उपलब्ध कराई है, ये बहुत बड़ी सहायता है।
0: ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सहज और सम्मानजनक तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए फॉर्म 6 के जरिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में युवा मतदाताओं के नामांकन के लिए इस महीने की 7 और 8 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर एक और विशेष शिविर 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए हैं। मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़ा है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि मई 2023 में शुरू हुए संचार साथी पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक बार विजिट किया गया है। मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा बनाया गया ये पोर्टल उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध कॉल या मैसेज रिपोर्ट करने की सुविधा देता है।
3: ये पोर्टल लोगों को ये जानने में भी मदद करता है कि उनके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। उपयोगकर्ता इस पोर्टल से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन ब्लॉक भी कर सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि खोए और चोरी हुए 14 लाख से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। नागरिकों की ओर से अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानने से जुड़ी 4 करोड़ से अधिक जानकारियां प्रदान की गई है। मंत्रालय ने कहा कि जो नागरिक धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए संचार साथी का इस्तेमाल करते हैं, वे एक साइबर वॉरियर की तरह काम करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर से 5,000 करोड़ से अधिक की संभावित साइबर धोखाधड़ी को रोका गया है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज पीजी मालिकों, संचालकों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पीजी संचालन से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं, चुनौतियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस बैठक से पहले उन्होंने पीजी आवासों में रहने वाले विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया था। उन्होंने कहा कि आने वाले सप्ताहों में दिल्ली सरकार विद्यार्थियों आवासों के लिए अंतिम नियामक ढांचा और दिशा निर्देश लागू करेगी, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लाखों विद्यार्थियों के हितों और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
4: बैठक के बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है जिसको एक रेगुलेशन बनानी है। दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए पढ़ते समय रहने के लिए पीजी भी एक बड़ा साधन है। वो सेफ हो, रेगुलेटेड हो, सुरक्षित हो और सही दाम पर बच्चों को मिले और जो अप्रिय घटना पिछले दिनों घटी ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रही है और उसी के तहत हमने आज पीजी के ओनर्स के साथ बातचीत की है।
2: दिल्ली के उपराज्यपाल तरुणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने परिसरों की सुरक्षा और विद्यार्थियों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि बैठक में वायु संकल्प, पराली और बायोमास जलाने की रोकथाम, ब्राउन पैच की पहचान तथा ग्रीन दिल्ली ऐप के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज ऊट गांव स्थित मैत्रीय मध्यान्ह भोजन रसोई यानी मिड डे मील किचन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने भोजन बनाने के स्थल, कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता मानकों का पालन करने की जांच की। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी मामले का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 7 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दुर्गा पूजा आयोजन के लिए गठित विशेष समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री मिश्रा ने पंडालों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने और सभी जिलाधिकारी को इसकी नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी आयोजकों को आवश्यक एनओसी और अनुमतियों की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा करने को भी कहा। दिल्ली नगर निगम द्वारा गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत शहर के सभी 12 जोनों में 31 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। इसके साथ ही 5 संपत्तियों को सील किया गया और लागू भवन मानदंडों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 7 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। आज के प्रवर्तन अभियान के दौरान जनकपुरी, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, सरस्वती विहार, शालीमार बाग, शक्तिनगर, शकरपुर, घरौली एक्सटेंशन, सीलमपुर और संत नगर सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की के ज्योति जोत दिवस पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि गुरु नानक देव जी की वाणी में मानवता का कल्याण, उनकी शिक्षाओं में सेवा का संस्कार और उनके जीवन में सभी की भलाई का शाश्वत संदेश है। राजधानी दिल्ली में आज का दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में सखी वन स्टॉप सेंटर के कामकाज की समीक्षा की, हर महीने विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पीजी संचालन से जुड़े मुद्दों पर संचालकों और प्रबंधकों से चर्चा की। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए आज से कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू। डीटीसी बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी और दिल्ली में मतदाताओं के नामांकन के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख,

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो है। और आज की शाम फिर से हम आपकी शाम को और शानदार बनाने के लिए और आपकी इस महफिल को और भी खुशनुमा बनाने के लिए आ गए हैं आपके रेडियो सेट पर। और आज इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए मैं अकेला स्टूडियो में नहीं हूँ, मेरे साथ अखिल भैया भी साथ दे रहे हैं और साथ में कुछ और भी साथी हैं, उनसे आपको धीरे धीरे मिलवाएंगे। लेकिन पहले अखिल जी से मिलते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका।
6: मैं बहुत बढ़िया हूँ आनंद, और आप बताइए कैसे हैं, क्या करा आज आपने पूरे दिन?
5: बस पूरे दिन तो भैया वही था, रोजमर्रा की लाइफ डेली वही करते हैं, जो कल किया वही आज किया, थोड़ा सा नया था आज, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। वैसे आज कुछ नया सीखा, आप बताओ, काफी चिकने चुपड़े होके बैठे हो, आज क्या चक्कर है?
6: नहीं, चिकने चुपड़े तो आज जरा डांट वाट पिट गई थी, घरवाली कह रही है।
5: अच्छा अच्छा, घरवाली
6: जो है पहले से ही बुढ़े नजर आ रहे हो।
5: अच्छा,
6: तो
5: मैंने शादी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे लिसनर सोच रहे होंगे कि यार ये जिनको लाते हैं उनसे बात नहीं करते, अपनी में लग जाते हैं, ये क्या चक्कर है?
6: आज बताए, जब हमारे लिसनर्स, हमारे इन दोनों हमारे जो गेस्ट हैं आज, जो खास मेहमान हमारे, तो उनकी जब आवाज सुनेंगे तो वो खुद ही कहेंगे यार क्या बात है, कमाल, मतलब कहां
5: थे। तो पहले ये लगेगा पुराना ही चल रहा होगा, लेकिन हम इसमें कुछ नया ऐड करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि नहीं, ये पुराना नहीं नया है ना।
6: तो अब बस आने वाला जो अभी जो पल है वो दोनों के साथ बहुत ही बढ़िया होने वाला है।
5: चलिए,
6: ये जो वक्त है, मैं पूरी गारंटी देता हूँ आनंद कि हमें इस वक्त का पता ही नहीं चलेगा।
5: बहुत अच्छी बात है, और हमारे श्रोताओं को भी नहीं चलेगा, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की शाम को और खूबसूरत बनाते हैं, और हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में हमारे दो जो स्पेशल मेहमान है उनका। लेकिन उससे पहले अखिल जी कुछ कहना चाहते हैं शायद, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जी सर, इंट्यूशन आ रही है।
6: मैं बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने से पहले शायरी, हल्का सा शायरी से शुरुआत करना चाहूंगा।
5: जी माहौल ही बनेगा तभी, बताइए आप, और आपकी शायरी का स्वागत करता हूँ मैं।
6: कुछ रिश्ते अल्फाज से नहीं,
5: हाँ,
6: खामोशी से समझ आते हैं।
5: क्या बात है,
6: कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब नजर आते हैं।
5: क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, दिल के तो सभी करीब हैं, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, है ना। चलिए आज की शाम को और खुशनुमा बनाते हैं, बात है हमारे खास मेहमानों की। तो सबसे पहले हम सर का स्वागत करेंगे, उन्हीं की आवाज में हम सुनेंगे, उनका अंदाज में उन्हीं का परिचय, हम उनका नाम क्यों बताएं, हम तो उन्हीं से सुनेंगे, तभी तो कुछ नया होगा। जी सर, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए। आप काफी रेड टी शर्ट में चमक रहे हैं आज, हर बार की भांति आज भी कुछ नए लग रहे हैं आप, हर बार नए रूप में आते हैं आप।
7: आपके लिसनर्स लगता है मुझे भूल गए हैं, क्योंकि आपने काफी समय बाद बुलाया मुझे।
5: नहीं भूले नहीं, हमने भी रिसेंटली आपकी आवाज चला दी थी, आपको नहीं बताई, वो बात अलग है, है ना। आप हमारे बीच में लिसनर के बीच में एक्टिव रहते हैं, आप नहीं सुनते हुजूर, तो इसमें हम
7: ऐसी बातें सुनता रहता हूं।
6: तो वो कहां कहां सुने, किस किस की सुने, वो
5: हाँ ये बात भी है, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। लेकिन उससे पहले सर का जरा तारुफ करा देते हैं अपने लिसनर्स के सामने, उनको रूबरू करा देते हैं। सर प्लीज थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में।
7: वही आपका पुराना साथी कमल, अपने कुछ पुरानी
5: कमल, मुझे एकदम लोटस से एकदम वो खिली खिली वाइब आने लगती है।
6: तुम तो बिल्कुल एकदम पॉलिटिकली हो जाते हो।
5: नहीं नहीं भाई, पॉलिटिकल का कोई मतलब नहीं है, ये लोटस जो है अमीरी की निशानी है।
7: तो वही आपका पुराना साथी कमल एक बार दोबारा से आपके FM 89.6 मुरादाबाद पर, और सही कहूँ तो आज मैं अकेला नहीं हूँ।
6: हाँ बस यही हमें बात पता
7: है, साहित्यिक हस्ती मेरे साथ हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।
5: मतलब आज लिस्नर को लग रहा है वो अब दोबारा कमल जी को झेलना पड़ेगा, उनको लग रहा होगा नहीं नहीं अब कमल जी को झेलेंगे नहीं, अच्छे से सुनेंगे उनके साथ। एक बार
7: देखा जाए तो 36 के साथ 24 फ्री होता है, आज 36 के साथ 48 फ्री है।
5: अरे वाह क्या बात है, वेरी नाइस, फिर तो मतलब और भी मजा आने वाला है कमल जी। और
7: आपके जो लिसनर्स हैं उनको निराश नहीं करूंगा, मेरे साथ आज मेरे साहित्यिक मित्र, बहुत अच्छे मित्र मेरे उपस्थित हैं, राशिद भाई, राशिद हुसैन साहब।
5: अभी लिसनर को कंफ्यूजन हो रहा होगा, राशिद जी दो तीन दिन पहले तो आए थे, ये दूसरे वाले राशिद,
6: ये जो राशिद जी है ना, बस इनका अलग ही।
5: अच्छा हाँ। तो वो अभी हम उनसे बात करते हैं ना, पहले हाँ। हम जरा कमल सर का पूरा सुन लेते हैं। जी सर, आप प्लीज पूरा करिए अपना वाक्य।
7: वाक्य मैं इस तरह से पूरा करता हूँ कि मैं अपने मित्र राशिद भाई के लिए 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँगा।
5: अरे वाह, क्या
7: बात है, मैं नहीं बोलूंगा, उस पर राशिद भाई होंगे,
5: पक्का
6: पक्का
7: आप होंगे और अखिल भाई,
5: और आपको हम जाने नहीं देंगे, आप ये भी ध्यान,
7: मैंने जाना भी नहीं।
5: ठीक है, आप अपनी प्लीज जरा पंक्तियाँ रखिए, हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं जनाब,
7: ये गौर फरमाइएगा अर्शद भाई के लिए
5: जी,
7: कि जीवन में वो लोग भी ऐसे चंद हुआ करते हैं।
5: अरे वाह,
7: जीवन में वो लोग भी ऐसे चंद हुआ करते हैं जो खुद में ही दोहा मुक्तक छंद हुआ करते हैं।
5: अरे वाह, क्या कहने,
7: जो खुद में ही दोहा मुक्तक छंद हुआ करते हैं, जिनसे भी मिल जाते हैं उन जैसे बन जाते हैं।
5: क्या कहने,
7: वासे भी मिल जाते हैं उन जैसे बन जाते हैं, बिना आईने के भी एक प्रतिबिंब हुआ करते हैं।
5: अरे वाह, वेरी नाइस, क्या बात है, जोरदार तालियां, मजा आ गया सर।
7: अगली आवाज जो आपके लिसनर्स को सुनाई देगी वो है राशिद साहब की, राशिद हुसैन साहब।
5: राशिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में, पूरी दिल की गहराइयों से एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत अभिनंदन, और मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स को अब आप भी कुछ अच्छी सी अपनी आवाज में बताएं, कुछ अपने बारे में बताएं।
2: बहुत शुक्रिया आनंद साहब, अजय साहब, वैसे तो परिचय इन्होंने दे दिया, ये बात तो ये सच बोल रहे थे कि बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन जो इन्होंने तारीफ कर दी वो ज्यादा कर दी। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो धूल मिट्टी छापने वाला थोड़ा सा इंसान हूँ, और
5: जो काबिल लोग होते हैं ना वो अपने आपको ऐसे ही बोलते हैं।
2: साहित्य का छोटा सा एक छात्र हूँ, ये कमल भाई की मोहब्बत है कि वो मुझे इतना समझते, और मेरा नाम इंजीनियर राशिद हुसैन के नाम से ही मैं साहित्य लिखता हूँ, जो भी गजल लिया मंच पर कहीं पर भी।
7: राशिद भाई, हीरा जो होता कोयले की खान से निकलता है।
2: अरे नहीं नहीं नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, हीरा कहाँ है,
5: मुझे लगता है अखिल भाई हमें चलना पड़ेगा, ये लोग आपस में तारीफ करते रहेंगे।
2: आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एफएम मुरादाबाद 89.6 में आज मुझे आने का मौका मिला, मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ
5: जी जी जी,
2: और आपसे मिलकर तो और भी अच्छा लगा आनंद जी, आपका तो मजा आ गया आपके बात करके।
5: अरे राशिद जी, अभी तो मजा बाकी है, ये तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी आपके साथ शुरू होगी हमारी,
2: लेकिन फिर अब जब बात हो ही रही है तो
6: अरे बनता है सर उसी
2: के, तना होकर यार कहाँ तनहा हूँ मैं,
5: अरे वाह,
2: तना होकर यार कहाँ तनहा हूँ मैं, तेरी यादें साथ लिए फिरता हूँ मैं,
5: क्या बात है,
2: यादें साथ लिए फिरता हूँ मैं। और एक शेर और
5: जी जी,
2: मैं आपकी अपने श्रोता रखना चाहूंगा कि शाम ढले तो सारे परिंदे घर जाते हैं,
5: अरे
2: शाम ढले तो सारे परिंदे घर जाते हैं, जाए कहाँ वो जिनके टूटे नाते हैं,
5: अरे
2: जाए कहाँ वो जिनके टूटे नाते हैं। और मैं चाहूंगा कि मैं अगर सुनाना शुरू कर दूंगा तो फिर कमल भाई कहेंगे कि राशिद भाई ये तो आज आप ही का काम हो रहा है,
5: तो मैं
2: चाहता कमल भाई भी सुना,
5: ये बात तुम्हें,
2: लेकिन एक एक मतलब शेर और,
5: हाँ प्लीज प्लीज,
2: कि तेरी यादें मिटा रहा हूँ, तेरी यादें मिटा रहा हूँ मैं, दिल से तुझको भुला रहा हूँ मैं,
5: क्या बात है, क्या कहने,
2: तेरी यादें मिटा रहा हूँ मैं, दिल से तुझको भुला रहा हूँ मैं, और रूह कैसे अलग बदन से करूँ, रूह कैसे अलग बदन से करूं, सोच कर मुस्कुरा रहा हूं मैं,
5: क्या कह रहा,
2: सोच कर मुस्कुरा रहा हूं मैं,
5: बहुत खूब बहुत खूब सुना,
2: बहुत शुक्रिया।
6: अरे राशिद जी, ये तो एक एक अलग ही हुनर है, ये आप मुझे ये बताइए कि कैसे आप ऐसी प्रोफाइल में है, कंस्ट्रक्शन की प्रोफाइल में है, आपका प्रोफेशन इतना मतलब कहते हैं ना हेक्टिक, और इतना पूरे दिन की भागदौड़ वाला है, उस बीच आप ऐसी ये इतनी बढ़िया बढ़िया जो जज्बात और शायरी है कैसे निकाल लेते हैं।
2: कहा ना है कि अगर शायरी को अच्छा करना है तो मोहब्बत कर लीजिए, और मोहब्बत में जब टूटेगा तो दिल, वो बात अल्फाज दिल से ही निकलेंगे, तो शायद ऐसा हुआ हो मेरे साथ। और अखिल जी, वैसे तो मुझे शौक है इसका, लिखने का शौक तो मुझे, मैं जब ट्वेल्थ में था सेकंड स्टैंडर्ड में, तभी से मैंने पहला थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में फिर बीच में काफी गैप रहा, अपनी मसूफियात होती है जैसे कि कारोबारी और एजुकेशनल, और तो लेकिन मुझे अगर मैं लिखता भी था तो रख लेता था, कोई मंच नहीं था मेरे पास, कोई स्टार्ट नहीं था। उसके बाद में फिर मैंने दोबारा लिखना शुरू किया, और मेरा कई जगह जब अखबारात में छपा और मुझे तारीफें मिली तो मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हुई, मुझे हिम्मत आई मेरे अंदर से, और मैं फिर मैंने उस्ताद अपने बनाए जनाब तहसीन अहमद मुरादाबादी साहब, मेरे शायरी के उस्ताद हैं, तो उसके बाद में फिर मैं अपने लिखता रहा, लेकिन ये आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ।
6: नहीं नहीं, ये तो
5: बहुत अच्छी बात,
6: बहुत अच्छी बात है।
5: कह रहा हूँ कमल जी, आज नायाब हीरा को पकड़ के लाए हैं।
6: मैं मतलब मैं बात करते करते खो रहा हूँ।
5: हाँ, मुझे भी मजा आ रहा है, लेकिन कमल जी आपकी शेर व शायरी भी हम जरूर सुनना चाहेंगे।
7: बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।
5: हाँ सर प्लीज।
7: राशिद भाई, एक वो शेर सुना दीजिए, नए बने हैं और पुराने टूट रहे हैं।
2: अच्छा, अरे
5: अरे वाह, क्या बात है। ये मतलब कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा लग रहा है सुनने
7: में। देखिएगा उसके अंदर जो शेर में है, और वो इनकी आवाज में जचेगा,
5: क्या
7: खारा जैन की आवाज में, वो उसी आवाज में जचेगा।
2: मैं तो उससे अच्छा कुछ सुनाना चाह रहा था
7: ना। मेरा तो जब से पहला तारुफ आपसे हुआ है, वो शेर मेरे दिमाग में।
5: एक काम करते हैं, इन सारे शेरों से पहले गाना लेते हैं हम। ये शेर व शायरी तो चलती रहेंगी, हमारे लिसनर्स को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है साहब। तब तक हम इनसे जरा और मुद्दे की बात करके आते हैं और आपको एक गाना सुनवाते हैं। शेर व शायरी की बात चली, गाना है मैं शायर तो नहीं, शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्यारा गाना है,
2: बहुत अच्छा गाना। हाँ,
5: तो उसी से करते हैं आज के सफर का आगाज। क्यों अखिल भाई?
6: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेके फिर से
5: बिल्कुल
6: ज्वाइन करते हैं।
5: वैसे गाना कह रहा है मैं शायर तो नहीं, लेकिन यहाँ जो दो लोग बैठे हैं वो सच में शायर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अखिल भाई तो बन ही रहे हैं आजकल, प्रैक्टिस में है वो।
6: मैं तो, मेरे साथ तो आनंद जी, जब से मैं आनंद जी के उसमें आया हूँ, टच में आया हूँ, तो
5: मैं भी शायर बनने की कोशिश में,
6: मैं भी आधे से आधा शायर बन ही गया।
5: चलिए मैं चैट जीपीटी से कुछ पूछ के आ

0: दोस्तों गाना बहुत खूबसूरत है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम करेंगे आप सभी का स्टूडियो में। हमारे बीच में अखिल जी हैं, कमल जी हैं और हमारे राशिद साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका प्रोग्राम, जहां पर शेरो शायरी की महफिल सजती है। और आज की महफिल तो हमारे दो खूबसूरत जनाब सजा ही रहे हैं, तो बिना किसी देरी के उनकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन अखिल भाई से जरा कुछ सुनना चाहेंगे, शुरुआत इनसे होती है तो मजा ही आ जाता है।
1: सारी शुरुआत पहले से मेरे से करवा दो।
0: अरे बिल्कुल भाई जी,
1: एक प्यारी स्माइल दे दो कि यार अखिल भाई अब जरा चालू हो जाओ फटाफट।
0: हाँ, बिल्कुल आपकी शायरी सुनो तो स्टार्ट होता है इंजन हमारी गाड़ी का।
1: हाँ बिल्कुल सही है। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का।
0: क्या बात
1: आज
0: है?
1: जैसे मेरे सामने जो दो दोस्त बैठे हैं, दोनों ही अपने मतलब इस फन में एकदम कहते ना, अगर हमें ही कुछ जहन में चाहिए होता है कि अगर मुरादाबाद में हमें किसी को सुनना है तो हम चाहते हैं कि भैया कमल जी कहाँ है और राशिद जी कहाँ है।
0: बिल्कुल।
1: तो इनकी दोस्ती देख के मुझे ऐसा लगा, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुरा आने का।
0: अरे वाह,
1: ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती नाम है उम्र भर साथ निभाने का।
0: आजकल दोस्ती की उम्र भर की बात करते हो, लेकिन जब कमल जी से बात करते हो तो कहते हैं दोस्ती के ऊपर शायरी है का? शायरी तो प्यार के ऊपर लिखी जाती है और खुद इतने अच्छा दोस्त लेके घूम रहे हैं साथ में।
1: तो आप
2: शायर तो खाली विषय का भूखा होता है।
1: बिल्कुल सही,
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: तो आपकी दोनों की दोस्ती कैसे शुरुआत हुई?
0: अच्छा आप पहले दोस्ती के इंटरव्यू लो, अब हम शायरी बाद में सुनेंगे।
1: नहीं नहीं, उस शायराना अंदाज में ही लेंगे। राशिद जी से पूछना चाहेंगे, राशिद जी
0: सुनना चाहता हूँ ना, क्योंकि आजकल तो दोस्ती दोस्ती नहीं है, तो जरा हम भी कुछ सीखने को मिलेगा ना। जी सर बताइए थोड़ा सा।
2: बस मेरा भी सही कहूँ तो बैकग्राउंड को ज्यादा पुराना नहीं है साहित्य क्षेत्र के अंदर, शायद पिछले 3-4 साल में ही थोड़ा एसर्ट बना है, कुछ लिखना शुरू किया है। और बस इन्हीं जो साहित्यिक गोष्ठी होती रहती है, मासिक गोष्ठी या अलग अलग संस्थाओं
0: गेट टूगेदर हो जाती है, जैसे
2: राशिद भाई से मुलाकात हुई एक दो बार, ऐसी बस आमना सामना हुआ, धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और अब तो ये सिलसिला है कि बस अक्सर कभी इनका फोन आ जाता है, कभी मेरा फोन आ जाता है,
0: कभी दूसरे को सुनाने लगते हो कॉल पे। मेरे को लगा कि पूछ लू कभी,
2: खैर मकदम एक तरह से पूछा जाता है, कभी इन्होंने कुछ लिखा तो इन्होंने डाला, मैंने कुछ लिखा तो मैंने इनको भेजा, इसी तरह से थोड़ा चलता रहता
0: है। बस एक दूसरे का सहानुभूति अपनी बढ़ा रहे हैं तो ये अच्छा है ना,
2: मतलब एटलीस्ट मैं अपने साथ और ये अपने साथ एक ऐसा बंदा लेके चल रहे हैं कि हाँ ये जरूर लाइक करेगा।
0: एक बार बताऊं सर, अपने ग्रुप में बंदा ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल ना मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे उम्मीद होती है ना वही तोड़ के भागते हैं। बट कोई बंदा अगर एक ऐसा भी होता है जो हमारी कला को थोड़ा सा मतलब हमारा सहयोग कर रहा है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, हौसला अफजाई जिसे हम कह सकते हैं। जी राशिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुस्कुराते हुए? मुझे लगता है अपनी दोस्ती का ही कुछ जिक्र करने वाले हैं।
3: दोस्ती की जब बात चल रही थी तो एक्चुअली हम जब बात करते हैं, इन्होंने गलत कहा हम शायरी की बात करते हैं, जब आपस में बात करते हैं हम, तो फिर शायरी बहुत पीछे रह जाते हैं, फिर मोहब्बत की दोस्ती की बात होती है, हम बात शायरी की नहीं करते।
0: मैं वही तो जानना चाह रहा था,
3: हम फिर अपने दिल की बात करते हैं, क्योंकि मित्रता में फिर शायरी अलग हो गई,
0: अलग हो गई, वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया,
3: कॉन्सेप्ट अलग,
0: कॉन्सेप्ट अलग।
3: उन्होंने थोड़ी सी बात गलत बता दी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बीच में मैं
0: कमल जी थोड़ा सा शर्मा रहे कि अब ये सच्चाई ना रूप कर दे।
3: सच्चाई है, बात कुछ और भी होती
1: है। जो है यहीं पे सब ज्यादा मुस्कुराते हैं, घर पे भी मुस्कुराते हैं?
0: ये तो देखिए आप पता होगा, आप शादीशुदा लोगों की कहानी आप ही लोग जाने, मैं तो अभी सीधा साधा बच्चा हूँ। खैर हम सर से कुछ सुनना चाहेंगे। राशिद जी आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप एफएम मुरादाबाद में हैं, लखनऊ तो नहीं कह सकते अभी हम।
3: बिल्कुल
0: आप अभी थोड़ी देर ब्रेक पे जाने से बिल्कुल सुनाने वाले हैं अच्छा सा, तो मैं वो सुनना चाहता हूँ। आपने
2: एक मुकम्मल गजल,
0: आपने कमल जी इनको एक हिंट दिया था ना, पुराने छूट रहे हैं नए,
3: आपके सामने रखता हूँ
0: जी,
3: क्योंकि कमल जी को बहुत ज्यादा पसंद है।
0: अब हमारे हमें भी पसंद आएगा।
3: मैं तो कुछ और सुनाने वाला था, लेकिन
0: सर वो भी सुनेंगे, हम जाने नहीं देंगे, सुनेंगे आपसे।
3: मैं कमल जी की मोहब्बतों के हवाले शेर, एक शेर के, नए बने हैं और पुराने टूट रहे हैं, नए बने हैं और पुराने
0: टूट रहे हैं,
3: हर रिश्ते के ताने बाने,
0: क्या बात,
3: नए बने हैं और पुराने टूट रहे हैं, हर रिश्ते के ताने बाने टूट रहे हैं, और रस्म मोहब्बत तेरे आंगन सूने हो,
0: क्या बात है,
3: रस्म मोहब्बत तेरे आंगन सूने हो गए, शान और शौकत के वो घराने टूट रहे हैं, शान और शौकत के वो घराने टूट रहे हैं। ये कमल जी को बहुत पसंद है मेरा, ये एक जो मैंने लिखा था, ये मैं चाहूंगा जब एक मतलब एक शेर और मैं आपकी नजर करना चाहूंगा।
1: जरूर जरूर।
3: कि आज का जो माहौल है, मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई वो मालदार आदमी है, वो रईस आदमी है, वो रईस आदमी, तो मैं एक फर्क होता है, रईस अलग होता है, मालदार अलग होता है। मालदार तो सब है, रईस हर आदमी नहीं होता।
1: क्या बात कर रहे
0: हैं, बड़ी बात, बड़ी कमाल की है जनाब।
3: तो मैंने छोटी सी चार मिसरे इस पे भी मैंने लिखे हैं, मैं कहूंगा कि सजाने की बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
0: क्या बात है,
3: सजाने की बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बड़ा खुद को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
0: क्या बात है,
3: बड़ा खुद को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और लबो लहजे से पहचाने गए हैं खानदानी लोग। लबो लहजे से पहचाने गए हैं खानदानी लोग, जमाने को जताने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: क्या बात,
3: जमाने को जताने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: गजब।
3: आज क्योंकि एट रैंडम इनका फोन आया भाई का कि नहीं आज ही जाना है, तो आज थोड़ा सा गला दो तीन दिन से मेरा ऐसा हो रहा था, अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं थोड़ा सा गरारे वगैरह कर गया था, इसलिए माफी चाहूंगा।
1: नहीं आज इस समय राशिद जी मौसम भी ऐसी चल रहा है, मैं भी तीन दिन से डिस्टर्ब है डॉक्टर से मिल मिल के पैसे।
3: बदलता हुआ मौसम, और बदलते हुए मौसम में हम बचपन से अपने पेरेंट्स से सुनते आए कि नहीं बदलते मौसम में तबीयत खराब हो जाती है,
0: लेकिन ऐसी बात नहीं है। आवाज आपकी
1: सर,
0: जो आवाज इंशाल्लाह अभी भी बहुत बेहतरीन आ रही है आपकी।
3: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत
1: अमिताभ बच्चन याद आ गए हैं
3: तो आप, क्योंकि कमल भाई ने कहा कि एक मुकम्मल गजल, तो मुकम्मल तो गजल तो कभी मुकम्मल नहीं होती, बस चंद अशआर होते हैं
0: जी,
3: लेकिन वो मैं पहले बाद में, पहले कमल भाई हमारे अपनी मोहब्बत का कुछ।
1: अरे कमल जी तो मोहब्बत का जरूर सुनाएंगे, खाना जल्दी खाना है ना घर में, भिंडी की सब्जी पसंद है कमल जी? नहीं, भिंडी की?
2: हाँ बिल्कुल,
1: तो सही है।
0: दोस्तों मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए शेरो शायरी का जो ये माहौल है, ये जो एक बना हुआ है जिसे कह सकते हैं पूरी वाइब सेट हो गई है यहाँ पर अभी फिलहाल, एंड ये वाइब आपकी गाड़ियों में सेट है, आप इस वक्त घरों में सुन रहे हैं, कुछ लोग बिस्तर पे लेट चुके हैं, काम करके आए बेचारे थक गए, वो आप आराम से आपकी शेरो शायरी सुन रहे हैं, हो सकता है कमल जी भी अभी सुन रहे हो, है ना, यहाँ लाइव तो सुन ही रहे हैं, क्या पता घर बैठ के भी सुन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है।
1: घर बैठ के
0: राशिद जी अपने घर बैठ के सुन रहे होंगे हमें, और आप तो स्टूडियो में बैठ के सुनते हैं, खैर इसमें तो कोई शक नहीं है। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो जो शेरो शायरी का ये माहौल है ना, ये माहौल एक्चुअली बनता ही उसी इंसान से जो एक्चुअल में खुद से अपने पन्नों पे अपने दिल की बात उतारता है, राइट?
1: बिल्कुल।
0: मुझे ऐसा लगता है साहब लिखी हुई कॉपी पेस्ट करते जाओ उसमें वो मजेदारी नहीं है। अभी राशिद जी ने जो सुनाया वो मुझे काफी मतलब ऐसा लगा कि हाँ कुछ नया है, वो उनके दिल के जज्बात थे जो उन्होंने पन्ने पे उतारे, वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए, और शायद ऐसा ही कुछ आप भी सुनाने वाले, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ।
2: बिल्कुल। हर पहेली का मैं पहले हल लिखूंगा। राशिद साहब
3: जी,
2: कि हर पहेली का मैं पहले हल लिखूंगा
0: जी,
2: आज बस रहने दे तुझको कल लिख,
0: क्या कहने,
2: आज बस रहने दे तुझको कल लिखूंगा, खुद के हिस्से मैं लिखूंगा जहर सारे, खुद के हिस्से मैं लिखूंगा जहर सारे और तुझको पाक गंगा जल लिखूंगा,
3: क्या बात,
2: आज बस रहने दे तुझको कल लिखूंगा।
0: बहुत ही सही, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, मजेदार। और
3: कमल साहब की शायरी में भी कहीं ना कहीं कुछ होता है।
0: अरे बहुत, तभी तो हम इनको इनसे इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए तो बुलाते हैं हम इनको,
1: इनकी शाही शायरी है।
2: अगर मैं आगे बढ़ा दूं, नेकी और अपकार का खाता बनाकर, नेकी और अपकार का खाता बनाकर, खुद के कर्मों का मैं पहले फल लिखूंगा, आज बस रहने दे तुझको कल लिखूंगा।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसी बात पे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं इस प्रोग्राम में, और वापस आते हैं फिर और कुछ बेहतरीन शेरो शायरी के साथ, और कुछ बेहतरीन बातचीत भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इतने दिग्गज लोग हैं तो इनसे जानेंगे ये लिखने की कला कैसे उत्पन्न हुई, इनके अंदर कहां से आई, किसी को अगर ये चीज करनी है उसे भी अपने जज्बात दिल के पन्नों से कॉपी के पन्नों पे उतारना, तो वो कैसे उतार सकता है। तो ये चीज जो है राशिद जी और कमल जी से हम जानेंगे, काफी पुराने खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है। और आप लोग को भी पता है कमल जी हमेशा आते रहते हैं हमारे बीच में अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां लेकर, अच्छी अच्छी बातें लेकर। तो अभी फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे और तब तक अखिल जी भी कुछ बढ़िया सुनाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप बने हुए हैं एफएम मुरादाबाद पर आनंद और अखिल जी के साथ, और हमारे बीच में दो और खास दिग्गज पर्सनालिटी हैं, जिसमें कमल जी और राशिद जी स्टूडियो में हैं और आज ढेर सारी आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने दिल की शेरो शायरी आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमेशा हमारी कोशिश होती है अपने रेडियो के माध्यम से गीत संगीत के साथ साथ जो लोकल हमारे कलाकार हैं, जो हमारे लोकल, इसको भी एक मौका दें, क्योंकि देखिए टैलेंट तो सब में होता है अखिल जी, आपको ही पता है, लेकिन मंच हर किसी को नहीं मिल पाता है ना। और वो मंच कौन देता है? एफएम मुरादाबाद, है ना, क्योंकि हम करते हैं लोकल फॉर वोकल, क्योंकि लोकल को जब लोकल की आवाज मिलती है तो और मजा आता है ना?
1: अपने मुरादाबाद में वो हुनर है, हाँ, तो फिर हम क्यों इधर उधर भटके।
0: एग्जैक्टली। और हमारे मुरादाबाद ने राशिद जैसे कमल जैसे दिग्गज लोग थे, मुझे तो नहीं पता था भाई दिग्गज पर्सनालिटी, अब जब इनसे रूबरू हुए हैं तो पता लग रहा है कि इतने फैंटास्टिक कलाकार भी हैं। जी अखिल जी, कुछ कहने के लिए बेकरार
1: हैं
0: आप?
1: मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि भले ही आवाज
0: ये अपने श्रोताओं से कहते हैं, बाकी तीन लोगों से नहीं कह रहे हैं, तो कमल जी अपने कानों में जो है हाथ रख के सुनेंगे। हाँ बताइए सर।
1: मैं ये कहूंगा कि भले ही अल्फाज मेरे हैं, मगर जो अंदर से भावना है वो आनंद की है।
0: अरे वाह, क्या बात है, लपेटना कोई आपसे सीखे, मैं लपेटने के लिए तैयार हूँ। आप बोलिए सर।
1: तुम पे आज ना चरखी कम पड़ जाएगी, मगर मैं तब भी बता देता हूँ।
0: बताइए सी।
1: इश्क में अक्सर लोग परेशान होते हैं, इश्क में अक्सर लोग परेशान होते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ हैरान होते हैं, और सबसे ज्यादा परेशान वो होते हैं जिनके पास गर्लफ्रेंड हो लेकिन पैसे कम होते हैं।
0: हाय हाय, मैं कल से पैसों पे काम करूंगा भाई, गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पैसे होंगे तो सही रहेगा मेरे पास, क्योंकि आजकल पैसों से दुनिया चलती है, मुझे ऐसा लग रहा है। कमल सर, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? है ना,
2: सब चीजें चाहिए, सिर्फ हाँ। पैसा ही नहीं, सभी चीजें चाहिए,
0: सभी
2: पैसा, रिश्ते,
0: हाँ। लेकिन आजकल तो रिश्ते भी पैसों से होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है अभी, मतलब
2: हाँ कह सकते
0: हैं। देखिए मैंने वो बात पूछी ली, अखिल जी आप मत बताओ, देखियो मेरे सामने लेजेंड लोग बैठे हैं। तो देखिए वार्तालाप चल रही है, मेरी और अखिल जी की बहुत बातें होगी, और हमारे बीच में इंजीनियर राशिद हुसैन साहब हैं, उनसे बड़ी सारी हम वार्तालाप कर रहे हैं, कमल साहब से हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो कमल सर, आप दोनों के बीच में हम कॉम्पिटिशन तो नहीं लड़ाएंगे, लेकिन अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी है जो आप लोग को सुन के उनका भी मन करता है हम भी लिखें भाई, जैसे सर आपने बताया राशिद साहब कि आपने ट्वेल्थ में ही जो है शुरुआत कर दी थी लिखने की, तो ऐसे बहुत सारे यूथ है जिनको मन होता है अखिल भाई, क्रेज होता है लिखने का, कभी कभी अखिल भाई भी सोचते तो हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते क्योंकि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत करूँ। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए, हम कहाँ से शुरुआत करें।
3: तो मैंने तो कहा था ना
0: जी
3: कि मोहब्बत कर लीजिए, हाँ शुरू हो जाएगा।
0: अरे वाह, क्या अखिल भाई, ये मैं काट दूंगा, भाभी तक नहीं पहुंचेगा, आप बेफिक्र रहिए, मोहब्बत आपको करनी आप करिए।
1: तो मैं क्या मोहब्बत नहीं कर सकता क्या?
0: नहीं, अब ये मुझे नहीं पता है, देखिए इसमें मेरा कोई रोल नहीं है भाभी जी। हाँ सर बताइए आप।
3: तो बस ये है कि अगर युवा इसमें आना चाहते हैं तो हम लोग मुरादाबाद में बहुत सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं जिसको शौक होता है, जो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो हम लोग हैं और हर वक्त अवेलेबल है, मिले हमसे, सीखें, अपनी रचनाएं हमें दें, अपनी गजलें, हाँ। अपनी जो भी कुछ है तो हम उसको एडिट करेंगे, उनको पूरा सहयोग करेंगे। हमारे मुरादाबाद में एक साहित्यिक शौचालय भी है जिसके डॉक्टर मनोज रस्तोगी साहब संस्थापक है, और
0: अच्छे
3: वहाँ पे मैं समझता हूँ कि 100-100 से 150-150 साल पुरानी वहाँ पे बुक्स किताबें, और वो मुरादाबाद की उनकी एक खास बात मैंने मनोज रस्तोगी साहब की जो मैंने देखी,
0: नाम मैंने सुना है,
3: मैंने भी 4 या 5 साल मेरा उनसे परिचय है।
0: अच्छा।
3: इन 5 सालों में जो मैंने उनकी खास बात देखी वो आज तक किसी इंसान में नहीं देखी मैंने, वो शख्स है कि लाइन में खड़े हुए सबसे पीछे वाले आदमी का हाथ पकड़ के अपने बाजू में लाके खड़ा कर, और मेरे साथ उन्होंने वो किया है। मेरी पहचान अगर साहित्यिक दुनिया में पहचान रही है तो डॉक्टर मनोज रस्तोगी साहब।
0: देखिए उन्होंने आपको वो मंच दिया ना, तभी आप आज वो हम यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन आप उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं?
3: और वो मुझसे बेपना मोहब्बत करते हैं, मेरे घर भी आ चुके हैं, मैं भी उनके घर जाता रहता हूँ, बहुत बहुत।
1: कहाँ उन्होंने संग्रहालय किधर है?
3: ये उनका जलाल स्ट्रीट मंडी चौक मुरादाबाद।
0: अच्छा, मंडी
3: जलाल स्ट्रीट में। और बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बड़े आदमी। नहीं, खास बात यही मुझे उनकी लगती है कि लाइन में सबसे पीछे खड़े हुए इंसान का हाथ पकड़ के अपने बाजू में लाके खड़ा कर, अपने कंधे से कंधा मिलाकर लाकर ले, और वो उन्होंने मैंने अपने लिए ये फील किया है, मैं समझता हूँ कि वो सभी के लिए ऐसे हैं। तो ये इसी तरीके का कोई युवा है, मैंने भी उनको खोजा, मैं किसी ना किसी से मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसी हस्ती मिले जिसके मैं मुझे वो मिले
0: संपर्क में, संपर्क में हो,
3: तो जो अगर लिखना चाहे तो हम उनके लिए, हम है कमल भाई और भी बहुत लोग हैं, कोई हमें इसमें कोई बुराई नहीं, हमारे लिए अच्छा है,
0: सही बात है, हम साहित्य के रूप में को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: आकर हम देख रहे हैं एक सोशल मीडिया के दौर में एक जो युवा है वो साहित्य से बहुत हटते जा रहे हैं, हम चाह रहे साहित्य जिंदा रहे,
0: जिंदा रहे,
3: और जिंदा रहने के लिए हमें नए युवा आगे आएंगे तो हम उनको पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमें एक साहित्य जिंदा रहना चाहिए। आज हमारा मुरादाबाद, आप एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत आप शायद जानते भी होंगे, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है कि अगर मुरादाबाद में पीतल का काम न होता जो आज पीतल के नाम सुना जाता है तो शायद जिगर मुरादाबादी के नाम से जाना जाता है कि जिगर साहब का शहर है। और आज भी मंच से कहीं पर भी कि जिगर हम जिगर मुरादाबाद जिगर वाले
1: नहीं
3: मुरादाबाद जिगर वाले से आए हैं
1: तो
3: हम कहीं अपने शहर से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो जिगर का मुरादाबाद कहलाया जाता। तो ऐसा नहीं है, साहित्य में आना चाहिए नौजवानों को। और क्योंकि साहित्य कैसा होता है जब आदमी साहित्यकार बन जाता है ना तो वो लड़ाई झगड़े उसका दिल बड़ा मर्म हो जाता है, बड़ा नर्म हो जाता है उसका दिल,
1: वो दुनिया से थोड़ा सा
3: हाँ वो बहुत मतलब फिर अदब भी साहित्य के अंदर है, अपने पेरेंट्स की अपने रिलेटिव्स की अपने फ्रेंड्स की
1: अदब,
3: एक सादगी एक अदब आता है एक स्टैंडर्ड आता है वो साहित्य में है।
0: बहुत बढ़िया राशिद जी, आपने बहुत अच्छे से इसको जो है बताया हमारे श्रोताओं को, मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं ना जहाँ चाहा है वहीं रहा है, है ना, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी थी कुछ आपको करना है और वो कहते हैं ना जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो वो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है ना, तो वो चीज आप में भी है। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आप बात ही अच्छी कर रहे हैं, आपकी आवाज में भी बहुत अच्छी खनक है, इसका क्या राज है?
3: आवाज तो ये तो कुदरत की बात है।
0: नहीं सच में मतलब काफी अच्छी
3: है, शुक्र मैं अटा करूंगा इसमें मेरा
0: हर किसी की आवाज में
1: एक क्वालिटी हो जाए। राशिद जी
0: लेकिन मैं चाहूंगा राशिद जी की शायरी से पहले मैं जरा कमल सर की तरफ रुख करना चाहूंगा, बड़े इनोसेंट होके बैठे हैं तो जरा उनसे कुछ।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
7: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
8: हाँ है ना, श्रीहरि.in, यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
1: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवर DST।
0: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
5: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानोल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के

0: आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
2: आज एमओयू में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है, जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में, जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का एमओयू में शामिल किया है।
1: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
3: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
4: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
5: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
6: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
4: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
7: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
9: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
10: नहीं बात ऐसी नहीं है कि फुर्सत से मिले, मैं इनके लिए हर वक्त फुर्सत हुए।
11: ये इनका प्यार है फिर आपके लिए। अरे वाह,
10: अगर पर्सनली हर वक्त, हाँ इस काम के लिए थोड़ा सा इन्होंने, ऐसा नहीं है मेरा भी मन था कि नहीं मैं FM जाऊंगा, मेरी बड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और ये कमल भाई मुझे सुनना चाह रहे हैं, कमल भाई मुझे सुनना चाह रहे हैं, मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है, बड़ी मोहब्बत की।
11: हमें भी बहुत फख्र हो रहा है कि हम आपको सुन पा रहे हैं।
10: इनकी मोहब्बत है तो फिर एक गजल के चंद अशआर में आपके साथ
11: जरूर जरूर,
10: लेकिन उसके बाद फिर कमल साहब
11: जरूर जरूर।
10: एक गजल मैंने पिछले साल लिखी थी और हर गजल के पीछे कुछ न कुछ तो होता है।
11: क्या बात,
10: उस वक्त की जो ये कहानी थी जो मेरे ऊपर गुजर रही थी, मैं वहीं से उस गजल को उठा रहा हूँ, उसी उस कहानी के ऊपर ही जो मेरा था मामला, तभी मैंने ये गजल के चंद अशआर लिखे थे कि गजल का मतलब समाप्त फरमा लें कि मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले, मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले कोई गम न था तेरे आने से पहले।
11: क्या बात है,
10: मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले कोई गम न था तेरे आने से पहले। और गजल का अगला शेर है जो हकीकती हकीकी शेर में कहूंगा कि कहीं ना कहीं गजल के एक शेर में बड़ी मैंने बड़ी दिल से अपने लिखा है और बाकी तो श्रोताओं को पसंद आए तभी मेरी उसकी कामयाबी है, अदरवाइज तो लिखते रहे।
11: नहीं, सर बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, सबको पसंद।
10: बिछड़ने की इतनी कहानी है, बिछड़ने की इतनी कहानी है अपनी, खफा वो हुए आजमाने से पहले।
12: क्या बात,
10: खफा वो हुए आजमाने से पहले। और कमल जी आपको नजर करता हूँ कि खुशी इस कदर कोशिशों से मिली, खुशी इस कदर कोशिशों से मिली थी कि हम रो पड़े मुस्कुराने से पहले, हम रो पड़े मुस्कुराने से पहले। और आनंद जी आपके नजर एक शेर कर रहा हूँ कि ना रह पाए हम लब हिलाने के काबिल, ना रह पाए हम लब हिलाने के काबिल उन्हें हाल दिल सुनाने से पहले, उन्हें हाल दिल का सुनाने से पहले, उन्हें हाल दिल का सुनाने से पहले। और एक गजल का बड़ा मेरे लिए बड़ा पसंदीदा शेर है, शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा और दाद चाहूंगा कि हमें उम्र भर की मिलेगी जुदाई।
11: क्या बात है,
10: हमें उम्र भर की मिलेगी जुदाई, ये सोचा ना था दिल लगाने से पहले, ये सोचा ना था दिल लगाने से पहले। और मनाने का हमको तरीका, मनाने का हमको तरीका बता दे सनम बेसबब रूठ जाने से पहले, सनम बेसबब रूठ जाने से पहले। और इस शेर पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा अखिल साहब के, तुम्हारी भी आंखों में आंसू बहे, तुम्हारी भी आंखों में आंसू बहेंगे मेरी हर निशानी मिटाने से पहले, मेरी हर निशानी मिटाने से पहले। और तड़पता न दिल इस तरह मेरा हमदम, तड़पता न दिल इस तरह मेरा हमदम, बताते तो कुछ दूर जाने से पहले, बताते तो कुछ दूर जाने से पहले। और गजल का मकता समाप्त फरमा ले। और मैं बाकी कमल भाई आपने बड़ी तारीफें कर दी आज, मुझे बांध दिया है और आज आपने बस मैं क्या बताऊंगी, मैं इस लायक ही नहीं था जितना आपने मुझे बांध दिया और मुझे मजबूर कर दिया है कि नहीं आप, मैं इतना कहाँ हूँ इस लायक, मोहब्बत है और कुछ नहीं है। और आनंद भाई हमारे इतनी बढ़िया, मैं तो ताजुब आज देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि आनंद इतने अच्छे, मतलब नहीं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आरजे हैं और मैं इनकी भविष्य के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं भगवान से
11: बहुत बहुत
10: इनको
11: आपका दिल से आभार साधुवाद। और
10: नहीं नहीं आप कमाल, बहुत कमाल, जवाब नहीं। और हमारे अखिल भाई तो माशाल्लाह बीच बीच में शायरी करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने भाई है, हमारे जितने भी भाई शायर हैं साहित्यकार सब अपना परिवार मानते
11: जी। वैसे मैं आपको राशिद हुसैन साहब मैं बता दूं, ये शायर नहीं है तो इन्हें अपनी उसमें मत जोड़िएगा बिल्कुल भी फील्ड में।
12: नहीं नहीं नहीं, आज मैंने सीख लिया मुझे मोहब्बत करनी है
11: राशिद हुसैन साहब से कि आपको मोहब्बत किससे करनी है, वो क्लैरिटी जरूरी है।
12: अभी एक साल पहले इन्होंने मोहब्बत किससे करी थी जो अब ये मुझे बताएंगे।
11: नहीं उन्होंने कमल जी से की है।
13: अच्छा, खड़े उखाड़ने की नहीं,
10: गले मुड़ते कोई नहीं उखड़ेंगे
13: तो वो शांति से पड़े रहेंगे, ना
10: क्योंकि सभी को घर जाना है, मुझे तो खैर कोई बात नहीं।
11: इंजीनियर राशिद हुसैन साहब हमारे स्टूडियो में हैं कमल जी के साथ।
10: गजल का मकता समाप्त फरमा लें कि मुझे आ दबोचा अंधेरों ने, मुझे आ दबोचा अंधेरों ने राशिद, मेरी जिंदगी जगमगाने से पहले, मेरी जिंदगी जगमगाने से पहले। बहुत शुक्रिया, ये गजल मेरे बड़े दिल की کی عزیز تھی اور اس کے چند اشعار میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ میں امید کرتا ہوں پسند آئیں گے، پسند آئے ہوں گے. اور اب میں چاہوں گا کہ کمل بھائی اب مجھے تھوڑا سا پانی پینے دیں.
11: جب تک یہ لوگ پانی شانی پیتے ہیں ہم ان کو پانی پلا کر اور پی کر آتے ہیں اور ایک چھوٹا سا میوزیکل بریک لیں گے. آپ کہیں مت جائیے. اور یہ انجینئر راشد حسین صاحب نے جو کمال کی غزلوں کے بیچ سے لائنیں ہم تک پہنچائی ہیں، مطلب دل کو چھو گئی کمل بھائی، مزہ آ گیا. اور میں چاہوں گا کہ اگلی شرنکھلا میں آپ بھی تیار رہیں. ہمارے جو شروتا ساتھی ہیں وہ سننے کے لیے بے قرار ہیں. کمل جی اور راشد جی کی جوڑی واقعی میں کمال کی. اب تو ہم آپ کو اکیلے بلانا بھی نہیں چاہیے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بار دوبارہ جب بھی آئے تو ان کو لے کر آپ ضرور پیش آئیں.
12: اب تو یہ پیکیج ان کا بک ہو گیا
11: سچ میں. چلیے بہت اچھا لگا. اور گائز آپ کہیں مت جائیے، ریڈیو کی سوئی بالکل مت گھمائیے. ہم واپس آتے ہیں ذرا سی دیر میں اکھل جی کے ساتھ. باقی ہمارے جو متر ہیں اسٹوڈیو میں ان کو آپ سن ہی رہے ہیں. کمل جی ہیں ساتھ میں، ہمارے انجینئر راشد حسین صاحب ہیں، بہت ہی اچھی جو ہے شعر و شاعری کر رہے ہیں اور آج کا یہ جو ماحول ہے وہ اور بھی خوبصورت بنا رہے ہیں. تو اکھل جی کچھ سنانا چاہو گے آپ بھی جاتے جاتے؟ بریک پہ جا رہے ہیں، تھوڑا سا ماحول اور اچھا کر دیجیے. ماحول تو آلریڈی بہت اچھا ہے.
12: اکیلے ہو تو مسکرا لیا کرو.
11: میں روز مسکراتا ہوں، شیشہ نہیں مل رہا ہے لیکن آج کل. آپ بولو
12: شروتاؤ، یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں نا، یہ
11: جی جی
12: یہ الفاظ میرے ہیں مگر جو اس کے اندر کی جو بھاونائیں ہیں
11: وہ بھابھی جی کی ہیں،
12: آنند جی کی ہے. آنند کی اکیلے تم مجھے نہیں چاہتے کہ میں گھر جاؤں اور سیدھا ایک سنگل پیس میں جا کے بیٹھا ہوں دیکھوں.
11: نہیں، دو بچے بھی ہیں نا، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. میں سارا بھنڈا پھوڑوں گا. آپ بولو تو صحیح، آپ بولو آگے.
12: میں بھول گیا جو بول.
11: چلیے آپ گانا سن لیتے ہیں، نہیں تو میں گانا بھول جاؤں گا.

0: काफी आनंद आया इसको सुनने के बाद। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम आनंद के साथ, साथ में अखिल भैया भी हैं। और आज के जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं उनको सुन के ना मतलब मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया है उनकी शेरो शायरी सुन के।
1: सही कहा तुमने।
0: और अब जो है चलने का भी समय हो रहा है, क्योंकि वो लोग भी बेचारे जाने की जल्दी में होंगे कि यार हमें तो पकड़ के बिठा देते हैं अखिल जी ये लोग, हाँ जाने नहीं देते हैं।
1: इसी के ऊपर कुछ बातें याद आ रही हैं
0: जी, आपकी बातें पीछे छूट गई थी, अच्छा बात हैंगवर्ड याद आ
1: नाम ही ऐसा लिया था, मैं क्या कहता।
0: चलिए चलिए आप प्लीज।
1: अकेले हो तुम मुस्कुरा लिया करो, अकेले हो तुम मुस्कुरा लिया करो, कभी कभी खुद से भी मिला करो।
0: क्या बात है,
1: जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, बेवजह टेंशन लेना बंद किया करो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मैसेज है, एक मीनिंगफुल है। आज कमाल की बात करी, मुझे लग रहा है कमल जी की बातों का असर हो रहा है अखिल जी आप पर।
2: मैं
0: जी
2: संगत का असर हो रहा है।
1: आसपास जो मेरे पास वाइब्स आ रही है ना, इनका जो ऑरा है राशिद जी का और कमल जी का इस समय, तो जो इनका ऑरा है वो आ रहा है ऊपर धीरे धीरे, और थोड़े से निखार आ रहा है मेरी शायरी में आज।
0: बहुत बढ़िया। तो देखिए राशिद जी से हम सुनी रहे थे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा कमल जी से भी सुनने चलते चलते। सर कुछ मिश्रे या चंद लाइनें जो आप रखना चाहें, दोबारा तो आपको बुलाने का मौका हम जरूर देंगे आपको, और हम भी आपसे चाहेंगे कि आप भी पधारें। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही कहा।
2: चलिए पेश करता हूँ, कल ही लिखा है और बाकी अब ये क्या है क्या नहीं है ये राशिद भाई बताएंगे सुनने के बाद। कि दिल में है उम्मीद की ये हाल बदले, दिल में है उम्मीद की ये हाल बदले,
3: क्या बात
2: हो नया दिन रात बदले साल बदले।
3: बहुत
1: क्या बात है,
2: हो नया दिन रात बदले साल बदले, पाई है तकदीर तो चमकेगी एक दिन, पाई है तकदीर तो चमकेगी एक दिन, कर रहे कोशिश की अपना भाल बदले।
1: क्या बात है,
2: कर रहे कोशिश की अपना भाल बदले, और मुफलिसी ने भूख को जिंदा ही रखा,
3: हकीकत
2: मुफलिसी ने भूख को जिंदा ही रखा,
3: हकीकत
2: बच्चे ने कितनी दफा ही थाल बदले।
1: क्या बात है,
2: बच्चे ने कितनी दफा ही थाल बदले,
3: क्या बात
2: था तो वो सयाद, था तो वो सयाद पर शातिर नहीं था, था तो वो सयाद पर
1: शातिर
2: नहीं था, सैद ने आकर कहा कि जाल बदले।
1: बहुत बहुत
3: क्या बात,
2: सैद ने आकर कहा कि जाल बदले,
3: बहुत खूब बहुत खूब।
2: और वो हवेली भी मुनासिब बन ना पाई, वो हवेली भी मुनासिब बन ना पाई, सीख है मेमार को अब माल बदले।
0: क्या बात,
2: मेमार मतलब जो चिनाई,
3: चिनाई
2: सीख है मेमार को कि माल बदले। और बीच सागर नाव गोते खा रही है, बीच सागर नाव गोते खा रही है, ना खुदा को चाहिए कि चाल बदले, ना खुदा को चाहिए कि चाल बदले।
1: क्या बात है,
2: और आगे देखिएगा कि हंस रहे पर गालों में गड्ढे नहीं है, हंस रहे पर गालों में गड्ढे नहीं है, अब कमल देखे उमरिया गाल बदले।
3: क्या बात है,
1: क्या बात है,
0: बहुत बढ़िया।
1: कल मुझे पूरा पूरी पूरी उम्मीद है, कल पूरे दिन बिजली आई है कमल भैया के घर, एकदम भक्ति हुई, एकदम भड़कती हुई शायरी लिखी है सब एकदम।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन वही है कि चलते चलते उन्होंने सबको जो है जगा दिया, हाउ द जोश, है ना, बहुत बढ़िया।
2: ये सब आपकी संगत का असर है।
0: बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है, कुछ हम आपसे सीख रहे हैं कुछ, और कुछ आपका माहौल भी बदल रहा है रेडियो में।
1: मैंने तुमसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये एक पल कैसा निकल जाएगा।
0: बहुत बढ़िया, और कमल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इंजीनियर राशिद हुसैन साहब बैठे हुए हैं हमारे बीच में। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये आनंद बार बार इंजीनियर इंजीनियर क्यों कर रहा है, तो राशिद जी एक बार जरा फिर से, कुछ लोगों ने जस्ट रेडियो अभी ट्यून इन किया है तो उनको भी अपना तारुफ करा दीजिए चलते चलते। आज हमारे साथ आप हमारे ऑफिस में, आप तशरीफ कहाँ से लेकर आए, कहाँ रहते हैं इधर?
3: मैं मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से, अच्छा
3: सही हूँ, और क्योंकि सिविल से इंजीनियर हूँ,
0: अच्छा अच्छा
3: उसी का प्रोफेशन।
0: बहुत बढ़िया,
3: बाकी साहित्य गजल लिखना कुछ कलम, मेरा शौक है कलम लिखना, और आज आपने मुझे बुलाया FM मुरादाबाद ने मुझे, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि FM मुरादाबाद जिस तरीके से आप इसको गूगल पे सर्च करें, लाइव FM मुरादाबाद 89.6 डालें, तो आपको लाइव प्रोग्राम मिलेंगे, बड़े अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं।
0: राशिद जी बहुत
3: हूँ अक्सर और बहुत अच्छा लगता
0: है। बहुत बढ़िया राशिद जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, तमाम श्रोता गण आपको सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो से लाइव,
1: कोई एक मैसेज उनके लिए,
0: एक संदेश कुछ कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी के लिए?
3: बस युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि प्रेम जगाइए, प्रेम ही से बड़ी बड़ी जगह प्रेम से जीत जाती है, जंग से कभी कोई जीत नहीं आज तक जीत पाया है, प्रेम से सब जीते हैं, जंग लड़ने से कभी कोई आज तक नहीं जीता, जंग लड़ने से आप जमीन जीत सकते हैं, दिल से प्रेम से जीत सकते हैं,
1: बिल्कुल
3: दिल से प्रेम से जीतता है।
1: बहुत जंग से नहीं लड़ते। इन्होंने इतनी बार प्रेम का नाम लिया है तो मुझे सलमान खान याद आ गए, वो हर मूवी में उनके करेक्टर का नाम प्रेम रहता है, तो वैसे ही प्रेम आपके अंदर रहे।
0: बहुत अच्छा मैसेज दिया। और राशिद जी, आप तो फर्स्ट टाइम पधारे हैं हमारे मुरादाबाद के स्टूडियो में, तो हमारे श्रोताओं को क्या एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसा लगा? कमल जी तो हमारे स्टूडियो में काफी बार आ ही चुके हैं, आज फर्स्ट टाइम आप आए, कैसा लगा इनवाइट चार दीवारों में बैठ के?
3: मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। हाँ। और वाकई मुझे ऐसा लगा कि आपसे आज पहली मुलाकात है, अखिल जी से भी और आनंद जी आपसे भी, और मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं आज आपके साथ पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स के साथ बैठ के बिल्कुल बातचीत चल रही है,
1: हमें भी बिल्कुल
3: मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एटमोसफियर, और मैं समझता हूँ कि मुझे मेरा दिल चाहेगा कि बार बार यहाँ आऊँ।
1: जरूर जरूर, आपका दिल चाहे ना चाहे मगर हम तो बुलाएंगे आपको।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा राशिद जी, थैंक यू सो मच। कमल सर, आप से भी बहुत अच्छा लगा मिलकर, और हम आपसे भी गुफ्तगू करते रहेंगे, बीच बीच में आपको बुलाते रहेंगे ऐसे ही। वो थोड़ा सा माना कि मुश्किल है इनकी अपॉइंटमेंट लेना, क्योंकि कभी कभी मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना, बहुत बार बुक करना पड़ता है सर
1: इन्हें, इनका अपॉइंटमेंट लेने का मतलब है पहले ये भी तो कहीं से अपॉइंटमेंट लेते हैं ना।
0: ओहो, वो मुझे पता नहीं था। खैर, बाकी श्रोताओं, बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी आज का ये कार्यक्रम, मुझे उम्मीद है, और डेफिनेटली ऐसे कार्यक्रम एफएम मुरादाबाद आपके लिए लेकर आता रहेगा। और अखिल जी, आप चलते चलते क्या कहेंगे हमारे तमाम श्रोताओं को?
1: मैं चलते चलते यही बात बोलूंगा कि जी आनंद, तुम थोड़ा सा समय दिया करो।
0: देखिए, समय यहाँ नहीं दे सकते ना, रेडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है कि बेटा निकलू या प्यार से निकाल दू, तो इससे बेहतर यही हम खुद ही निकल जाए। जी,
1: मैं चलते चलते बस सभी श्रोताओं से यही कहूंगा कि हमेशा आप ये चीज जरूर याद रखें कि महफिल वही खूबसूरत होती है जहाँ चेहरे कम और मुस्कुराहटे ज्यादा होती है।
0: बहुत
1: तो आज का दिन, सच में आज का समय, ये समय हमें बिल्कुल पता नहीं चला जब हमारे साथ इंजीनियर राशिद जी और कमल जी हमारे साथ जुड़े, तो इस पल का तो सच में पता ही नहीं चला कि हमने वो कैसा बीत गया। और आनंद जी ने जो चटकारे लिए हैं आज मेरे साथ और मेरे शायरी के ऊपर,
0: बहुत भी अच्छा लगा मुझे भी, धन्यवाद कहना चाहते हैं।
1: मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, बाद में इस शो के बाद तुमसे अलग भी धन्यवाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो श्रोताओं, फिलहाल जाने का समय हो गया है, कुछ अच्छे गीत आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कमल साहब, आप लोग पधारे और ऐसे ही आप लोग आते रहिए और एफएम का साथ निभाते रहिए। नमस्कार साहब, थैंक यू। दोस्तों, आपको भी हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय श्रोताओं,
1: बाय बाय।

0: अरे सुनो, फ्री और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद, उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगी आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, शाम की इस खूबसूरत महफिल में आप स्वागत है और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, जहां बातें होंगी दिल की। हाँ जी, आपका दोस्त हूँ और आपका ही अपना अखिल हूँ, तो मुस्कुराहट हूँ चेहरे की और माहौल हो बिल्कुल अपना महफिल जैसा। तो आज अगले एक घंटे तक ना कोई टेंशन होगी, ना कोई बोरियत होगी, क्योंकि सारी बातें जो है ना वो दिल से ही निकली होगी। बस होगी मस्ती, मजाक, शायरी और ढेर सारी बातें। तो शुरुआत करते हैं प्यासी शायरी से, क्योंकि थोड़ा सा लेट हैं तो शायरी से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या पता जो हमारे श्रोता थोड़ा सा नाराज़ हैं कि भाई साहब आप जो हैं टाइम पे क्यों नहीं आज, तो उन्हीं के लिए ये है, कुछ पल हंस लिया करो दोस्तों, हर बात को दिल से लगाया मत करो, जिंदगी छोटी सी महफिल है, हर शाम को उदास बनाया मत करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लिसनर के साथ, पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो आज और कब से कर रहे हैं इंतजार। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया भाई साहब, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं?
1: प्रभात सैनी, मजूली चौराहा, मुरादाबाद।
0: प्रभात सैनी जी, मजूली चौराहे से। आपके पीछे थोड़ी सी आवाज बच्चों की आ रही, थोड़ा साइड से हो गई या हल्का सा जगह करके बात कर लीजिए। क्या करते हैं प्रभात जी आप? क्या करते हैं आप?
1: टाइम पास।
0: तो टाइम पास में कोई बढ़िया सी शायरी सुनाइए ना फिर आज। कोई बढ़िया सी शायरी सुनाइए टाइम पास में।
1: हाँ सुनाऊंगा आज, तुम देशवीर पे सब
0: क्या
1: सपूतों को मिला जंगल का जंजाल। वीर सपूतों को मिला जंगल का जंजाल, नेताओं को मिला घमासान चुनावी बंगाल। अब क्या दोगे मेरे देश के वीर सपूतों को, अब
0: क्या
1: दोगे मेरे देश के वीर सपूतों को, पूरा ही देश हो चुका है पूरा बंगाल।
0: क्या बात कही, क्या बात कही आपने, तो बिल्कुल ही आर्थिक स्थिति वाली शायरी बता दी आज
1: है?
0: बिल्कुल आर्थिक स्थिति पे आपने शायरी बता दी है आज। तो कौन सी आज जो जैसे दिल की बात ये निकली है, तो कोई ऐसा दिल का गाना भी निकला है आपके दिल से?
1: दिल का गाना तो वही, हम जो देश वीर हमारा तो वही, यही जियो और जीने दो, मगर जब आदमी परेशान करेगा तो ये ना जियेंगे ना जीने देंगे।
0: तो ज़रूर हम ये गाना जो आज है मैं अपनी तरफ से आपके लिए डेडिकेट करता हूँ, बढ़िया सा गाना है, आप भी सुनिएगा।
1: एक शेर तो आप सुना दो, दिल्ली छोड़ के ना जा रहा
0: हूँ। शेर तो मैं आपको अभी सुनाता रहूँगा, अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो अब निकल के आएंगी, तो अब तो जुड़ा हूँ, आप सुनते रहिए, शेर भी बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे।
1: अरे यार जल्दी से, बहुत जल्दी जा रहा हूँ।
0: पक्का पक्का प्रभात जी, तो बहुत अच्छा लगा आपने बात की और इतनी प्यारी शायरी हमारे साथ की।
1: हल्की सी शायरी हो रोजा बजरा सी।
0: हल्की सी है, हल्की सी है, जरा सी है, दोनों में फर्क है?
1: नहीं, शब्दों कहना और पिरोना बहुत आसान है।
0: क्या बात है,
1: शब्दों को कहना और पिरोना बहुत आसान है। हाँ। और मेरे तुम्हारे लिए बहुत अरमान है, खुश रहो इस तरह ही हमसे बात करते रहो, यही भगवान से मेरे दुआ हर समान।
0: क्या बात कही है आपने प्रभात जी, बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात। तो चलिए इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और एक प्यारा सा गाना आपके लिए भी डेडिकेट करते हैं।
1: ओके।
0: तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे प्रभात जी और आज उन्होंने जो शायरी सुनाई है ना, एक हल्की सी और फुल्की सी, बहुत ही मज़ेदार शायरी रही। होता है ना कभी कभी आप लोगों से ही साथ में घट जाता है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपके मोबाइल हाथ में लेकर आप काम करने आए और 20 मिनट बाद आपको याद आया, अरे मैं मोबाइल लेकर आया क्यों था। मतलब होता है ना हमारी याददाश्त भी ना, कभी OTP याद रहता है मगर पासवर्ड याद नहीं रहता है, OTP एकदम थोड़ा सा याद आ जाएगा मगर ये जोर लगाना पड़ता है कि पासवर्ड क्या है। तो किसी का पुराना मैसेज याद रहता है लेकिन चाबी कहाँ रखी थी वो याद नहीं रह पाती है। तो चलिए ये फरमाइश पूरी करते हैं और खूब सारी बातें करेंगे आज दिल से दिल की, आप भी और हम भी। 9837896896 पर

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और कहते हैं ना, कई सारी बातें चल रही हैं, कई सारी दिल की यादें भी चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है ना, रामलीला मैदान में भी मंचन चालू हो गया है। रामलीला का 5 अक्टूबर है आज, और हमारे ही आनंद जी, आरजे आनंद जो हैं, इस समय रामलीला मैदान में हैं। उनसे करेंगे कुछ बातें थोड़ी देर में, और लेंगे वहाँ के अपडेट्स क्या हो रहा है। तो आज का सवाल पहले आपसे ये है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा मोबाइल कौन चलाता है, मम्मी पापा भाई बहन या फिर आप खुद? और हाँ, अपने जवाब में भेजिएगा कि साथ में आप सबसे ज़्यादा ऐप कौन सी इस्तेमाल होती है आपके मोबाइल में। तो होगी ना कोई तो ऐप आपके पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होगी। एक छोटा सा जोक इसी के ऊपर, पत्नी कहती है सुनिए मेरे अंदर क्या कमी है, पति कहता है बस पूछना बंद कर दो। पत्नी, क्या मतलब? पति, यही तो सबसे बड़ी कमी है। तो चलिए अपने नेक्स्ट लिसनर से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, कहाँ मोबाइल पास में है या दूर है?
1: ना सर, मोबाइल तो पास में है सर।
0: मोबाइल पास में है, क्या करते हैं आप और क्या नाम है आपका?
1: सर, शेरपुर मार्केट से शादी मंसारी बात करते हैं, कर रहे हैं सर। सर करते कुछ नहीं है, बस एफएम मुरादाबाद सुनते हैं, घर के काम करते हैं थोड़े बहुत।
0: क्या बात है साहब, अंसारी साहब, यही तो सबसे बड़ा काम है आपका, पूरे दिन किसी और की ना सुन के सिर्फ एफएम मुरादाबाद की सुनना।
1: वही तो।
0: तो ये, और कैसा इस समय मौसम है, कहाँ छत पर हैं या बाहर घूम रहे हैं आप?
1: छत पे ही।
0: छत पे हवा चल रही, नहीं चल रही है?
1: छत पे हवा चल रही है, वैसे मौसम बढ़िया हो रहा है हमारे यहाँ, मीडियम मौसम। मैं तो गर्मी में आया
0: था। अच्छा, एक लो होता है, एक हाई होता है, एक मीडियम होता है। तो ये बताइए कि क्या फरमाइश है आपकी, और कोई ऐसी दिल की बात अंसारी साहब जो अभी कहते ना कि यार मैंने फोन तो मिला लिया है और उन्होंने अभी तक ये पूछी नहीं कि कोई दिल की ऐसी बात हो जो आप बताइए।
1: सर, दिल की बात ये है, हम बहुत दिनों से बोलना चाहते थे, लेकिन आज आपने दिल की बात छेड़ी तो हमें दिल की बात याद ही आ गई।
0: हाँ हाँ, जरूर जरूर।
1: हम 2008 से एफएम रेडियो सुनते हैं, तो हम हेलो फरमाइश सुना करते थे और चैनलों पे, तो हम सोचे कर रहे हैं हमारी भी आवाज़ सुनने मिले, मतलब हम भी बोल रहे हैं रेडियो पे, हम भी नंबर, तो जब वो नंबर बताते तो हमें नंबर याद नहीं होता था, और उस समय हम पे मोबाइल भी नहीं था।
0: ओके,
1: फिर हम सोचे कर रहे कैसे बात होगी, कैसे बात होगी, फिर अचानक से एफएम मुरादाबाद चालू हुआ 2024 में, फिर हमें नंबर याद हो गया दिमाग में, हम भी एफएम पे बात करने लगे, तो हम सोचते हैं दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो इसे कहते हैं ना, कभी कभी जब आप सोचते हैं और कुछ मैनिफेस्ट टाइप करते हैं तो कहीं भी ना कभी वो चीज़ पूरी जरूर होती है।
1: हाँ, वही तो कहते हैं, अच्छा सोचना कभी ना कभी पूरा होता है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे ही अच्छा सोचते रहें और बढ़िया बढ़िया काम करें और एफएम जरूर सुनते रहें।
1: वही तो, एफएम पे मनोरंजन जानकारी के प्रोग्राम में मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो आज कौन सा गाना है आप जो दिल के करीब है और आप सुनना चाहते हैं उसे?
1: सर, मिस्टर इंडिया मूवी का गाना, करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से।
0: अच्छा, तो आप कभी मिस्टर इंडिया बने हो?
1: नहीं, मिस्टर इंडिया मूवी देखी है, बने हो।
0: क्यों, कभी अगर घर पे मम्मी ने और पापा ने कोई काम दे दिया और आपको नहीं करना तो मिस्टर इंडिया नहीं बन जाते?
1: ना, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है ना, उसमें कैसे बन सकते हैं।
0: अरे सर, बहुत लोग बनते हैं हमारे, जब श्रोता जो सुन रहे हैं उनमें से कई हैं जो मिस्टर इंडिया बने हैं।
1: पता है, ये जिम्मेदारी असल में हमारे भैया बाहर रहते हैं, हम घर पे रहते हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी सारों पर हमारे ऊपर ही होती है।
0: चलिए चलिए, तो आप इस जिम्मेदारी के साथ इस गाने का भी आनंद लीजिए और खूब एंजॉय कीजिए।
1: ओके सर, थैंक यू।
0: ओके अंसारी जी, बाय बाय। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे अंसारी साहब और कह रहे थे कि खूब सारी जिम्मेदारी के साथ मैं पूरा दिन ऐसी जो है आपका एफएम सुनता रहता हूँ। तो हाँ जी, हंसी मजाक जो है ना, ये सब चलता रहेगा और दिल की बातें भी चलती रहेंगी, मगर अब वक्त है प्यार ऐसे गाने का जो आपकी शाम को और खूबसूरत बना देगा, मिस्टर इंडिया की मूवी से। तो चलिए सुनते हैं इस गाने को, और आपकी भी कोई दिल की बात है ना तो 9837896896 पर कॉल करें और शेयर करें।

0: हाँ जी, एक बार ना एक मौका तो ऐसा आता है कि आपको मिस्टर इंडिया बनना ही पड़ता है। कहीं से भी आवाज़ आ जाती है, अरे ये काम पूरा होना है, अरे नहीं जी अभी तो मैं मिस्टर इंडिया बन गया हूँ, अब ये काम नहीं हो सकता है। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और खूब सारी दिल की बातें जो है ना, अपने दिल की जो निकली उसे पूरी करते हैं साहब। मुस्कुराने की वजह हजारों हैं जिंदगी में, बस नजरिया थोड़ा खूबसूरत होना चाहिए। हर दिन खास बन सकता है दोस्तों, बस दिल में थोड़ा सा सुकून होना चाहिए। इसी सुकून के साथ चलिए बात करते हैं अपने नए लिसनर से और देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मेरा नाम डॉक्टर आसिफ खान है, मैं अभी टेक्सास यूएस अमेरिका से बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है सर, कैसे हाल चाल है इस समय आपके टेक्सास यूएस अमेरिका में? क्योंकि यहाँ तो लोग
1: और
0: टैक्स दे दे के बैठे हुए हैं और आप वहाँ टैक्सेस में बैठे हुए हैं।
1: अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऑफिस में बैठे थे, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। कभी आजकल थोड़ा बिजी तक नहीं सुन पाया था, काफी टाइम बाद सुना, बट रेगुलरली सुनता हूँ ऑफिस में जब टाइम मिलता है तो।
0: क्या बात है, क्या बात है, जब भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो आप भी एफएम के शौकीन हैं और थोड़ा सा म्यूजिक, मतलब एफएम से कहा जाए तो आप म्यूजिक के ज्यादा शौकीन हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब रहता है।
1: म्यूजिक तो है ही, एफएम असल में उसकी वजह है कई सारी। एक तो आपका एफएम मुरादाबाद है, मुरादाबाद से, एक्चुअली आई एम फ्रॉम मुरादाबाद,
0: अरे क्या बात है,
1: तो
0: आप मुरादाबाद
1: रेगुलर
0: से हैं,
1: सुनते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया।
1: तो कभी कभी जब मन कर मिस करते हैं मुरादाबाद को, तो आपका एफएम सुन लेते हैं, थोड़ी फीलिंग आ जाती है अपने शहर की।
0: तो आप मुरादाबाद में कहाँ, किधर से कहाँ रहते थे?
1: मैं मुरादाबाद में, गांव पड़ता है मेरा रामपुर जिला, मेहंदी रामपुर बोलते हैं उसको बेसिकली, तो वहां से हूँ। वगैरह मुरादाबाद से किए, उसके बाद फिर दिल्ली चले गए, फिर यूएस

0: टाइम आनेगा, छुट्टियाँ होती हैं उस टाइम अक्सर, तो हर साल रहते हैं। आई होप इस बार भी विजिट करें नवम्बर दिसंबर।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कोई कोई एक ऐसा किस्सा जो आपके दिल के करीब हो, मुरादाबाद से रिलेटेड हो, जैसे कभी शहर में घूमने आए और
0: स्कूलिंग मेरी मुरादाबाद से, स्कूलिंग तो जैन के समोसे बहुत अच्छे लगते थे, खाते थे वहाँ पर जाकर कभी मौका मिलता था। और एक बाजार में एक जगह है वेयर इज इट, वहाँ पर लस्सी और समोसा बड़ा अच्छा मिलता था, तो वहाँ पर हम जाते थे।
1: बात है तो वो जो
0: तो घर है तो हमेशा फील होता है।
1: तो जब भी आप विदेश से अपने देश में और अपने शहर में आते होंगे तो वो जगह तो जरूर, मतलब कहते हैं कि चलो एक बार वहाँ चक्कर काट के आ जाते हैं, देख के आते हैं क्या हालचाल है उस जगह के, ऐसा होता ही होगा।
0: मैं बहुत सारा मिस करता हूँ मुरादाबाद में, मतलब जैसे मकबरे में छोले मिलते थे, छोले मिलते थे तो वो खाते थे हम बचपन में, उस टाइम स्कूल में थे तो काफी जाना होता था। तो आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम दूँ और एटलीस्ट एक बार ट्राई करूँ।
1: नहीं नहीं ज़रूर, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। जो जिस तरीके से आपकी आवाज़ में वो बात आ रही है ना, तो वो जब भी मुरादाबाद शब्द आपके उसमें आ रहा है, जहन में आ रहा है, तो वो एक अलग से ही फील आ जाता है कि हाँ यार ये सच में एक कहीं ना कहीं मुरादाबाद जो है, अंदर से जब भी कोई सुनो या जहन में आए तो एक फीलिंग अलग से जनरेट हो जाती है।
0: जी, असल में क्या है कि आप कैरियर के लिए आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं, आपको निकलना पड़ता है, मगर ये है कि कहीं ना कहीं आप घर से फैमिली को तो हमेशा मिस करते ही हैं। तो अभी मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरी मिसेज है, मेरी बेटी है, हम रहते हैं यहाँ पर, एंजॉय करते हैं, सब कुछ अच्छा है। बट ये कि हाँ कभी कभी तो जाहिर सी बात है, घर है मेरा, फैमिली है मेरी, सब कुछ है, तो वहाँ फील तो होता है, मगर ये कि हर साल जाते रहते हैं, हर साल तो कोई इतना बड़ा मतलब नहीं लगता है।
1: अब तो मीडिया, मतलब ये जो अपने पास सोशल मीडिया है और ये सब टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं, जो भी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं आराम से, और आपको एहसास नहीं होने देता कि आप अमेरिका में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं या फिर आप मुरादाबाद में बैठे हैं।
0: असल में मैं जब दिल्ली में रहता था, दिल्ली के असल सुनते थे उस टाइम, स्कूलिंग वगैरह ये पढ़ाई करते थे तो वहाँ पर। उसके बाद में जब अभी कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली आई डोंट नो, तो मैंने एक दिन देखा FM मुरादाबाद, तो ये आपके जो आरजे हैं, क्या नाम है इनका, अभी जो रामलीला में गए हुए हैं, क्या नाम है,
1: आरजे आनंद, हमारे आरजे आनंद,
0: आरजे आनंद से मेरी बात हुई है कई मरतबा, और एक लड़की हुआ आपके यहाँ जो आरजे हैं फीमेल, उनसे भी मेरी एक दो मरतबा बात हुई है।
1: क्या बात।
0: बट ये कि अभी बीच में 2-3 महीने थोड़ा बिजी ज्यादा था, शेड्यूल थोड़ा सा ज्यादा बिजी था, तो नहीं कर पाया। आज अचानक मैंने देखा, इसी में ऑफिस में बैठा था, थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम था मेरे पास, मैंने कहा लाओ बात करते हैं।
1: चलिए सर, आपने बहुत सही समय पे बात किया, और आपके कहते हैं ना जो कुछ कभी आपने दिल से बात निकली आपकी, चलो आज सुनते हैं, और आप बिल्कुल दिल की बात ही आज आपने अपनी सारी शेयर करी हमारे साथ। तो कौन सा गाना है जो अभी थोड़ा सा दिल के करीब है और सुनना चाहते हैं और किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: एक लाइन सुनाता हूँ मैं, एक लाइन सुनाता हूँ आपको। व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो वन ऑफ द टीचर फ्रॉम द केमिस्ट्री, तो वो हमें हमेशा बोलते थे, और वही मेरा सक्सेस ग्रोथ मंत्र, एक लाइन है, अगर आप बोले तो मैं आपको सुनाना चाहता
1: हूँ। हाँ जरूर जरूर जरूर, हमारे सभी श्रोताओं के साथ शेयर करें। बोला
0: ये बेसिकली मेरा सक्सेस मंत्र है, तो मैं सक्सेस मतलब कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको फॉलो करूँ।
1: जरूर बताइएगा।
0: हेलो
1: बताइएगा सर
0: जी। मौत ऐसी कि जिसका जमाना करे अफसोस, मौत ऐसी कि जिसका जमाना करे अफसोस, यूं तो हर कोई आया है यहाँ मरने के लिए।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये बिल्कुल आपने एकदम जो बात है बिल्कुल एकदम दिल वाली बोली है कि हाँ भाई जिसका ज़माना करे अफसोस, उसी का पता चले कि हाँ हुई है उसकी मौत।
0: हाँ तो मेरा ये है कि मैं कभी फ्यूचर में आगे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुरादाबाद में के लिए कुछ ऐसा करूँ, सोसाइटी के लिए, कैंसर, क्योंकि मैं एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन कैंसर, कैंसर के इतने सारे पेशेंट अपने आते हैं, इतने सारे बेचारे गाँव के इलाके से या शहर के इलाके से जिनके पास पैसा नहीं हो पाता है, जिनके पास रिसोर्स नहीं हो पाते, तो बेचारे बहुत अर्ली एज में डेथ हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, डायग्नोस्टिक नहीं हो पाता, तो मेरा है अपना कुछ ना कुछ के मैं करूँ अपने इलाके में।
1: जरूर जरूर जरूर, हम
0: सभी कमाते हैं।
1: बिल्कुल सही। तो जब भी आप ऐसा कुछ करें और ऐसा आपने इतनी मतलब सोच इतनी पॉजिटिव, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि कुछ बातें जो हैं हमेशा कहने में आसान लगती हैं, मगर ये जब चीज़ें आप प्रैक्टिकली आप आते हैं तो

0: वो चीज़ें धीरे धीरे आपको पता चलती कैसे क्या है, मगर आपने ये चीज़ आपके जहन में आई है यही बहुत एक बड़ी बात है। और आप आएँ, और मतलब हम तो जब भी आप नवंबर दिसंबर में आएँ तो ज़रूर हमारे स्टूडियो विज़िट करें, और हम सब चाहेंगे कि
1: मेरा प्लान है आपका। असल में लास्ट टाइम आया था मैं आपके जो आनंद आए हैं इनसे मेरी बात हुई, बट मैं टाइम नहीं दे पाया, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, अराउंड 20 डेज के लिए मैं आया था, थोड़ा हेक्टिक था घर पे, इधर उधर मैनेज करना सब, एक दो मीटिंग थी बेंगलोर वगैरह कहीं जाना हुआ मुझे, टाइम नहीं दे पाया, बट आई होप नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से मिलूंगा। ऐसे बड़ा अच्छा लगता है, FM मुरादाबाद है, बड़ा अच्छा अपना फील आती है कि चलो भाई मुरादाबाद भी थोड़ा
0: नहीं साहब थोड़ा नहीं नहीं बहुत जब तक आप आएंगे, और आपको स्मार्ट सिटी मुरादाबाद में बहुत चेंजेस होंगे और बहुत ही अच्छा साहब। ऐसे ही आप खूब खूब खूब खूब सब अच्छे से खुशियों के साथ रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके आपके लिए एक गाना हम इस बार प्ले करेंगे और एक डेडिकेट करते हैं आपकी तरफ से सभी के लिए। ओके तो श्रोताओ, हमारे साथ जुड़े थे टेक्सास अमेरिका से हमारे डॉक्टर साहब, और कह रहे थे कि वो भी मुरादाबाद को उतना ही मिस करते हैं जितना आप मुरादाबाद में रह के मिस करते हैं। तो खान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए गाना बढ़िया सा जो बहुत ही प्यारी आवाज़ में है और आपको पता चल जाएगा आतिफ असलम साहब की आवाज़ में है, और ये गाना सच में दिल के करीब में है लोगों के, तो चलिए आप भी इसको एंजॉय कीजिए। और उसके बाद हम करेंगे आनंद जी से बात, जो इस समय ठीक रामलीला मैदान में खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब अपडेट मिले कुछ और अखिल से बात हो। तो चलिए इस गाने के बाद हम करेंगे आनंद जी से बात, तो आप लोग भी कहीं ना जाएँ और थोड़ा सा आनंद लें इस जगह।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो चलिए श्रोताओं, अभी हम बात करने जा रहे हैं अपने आरजे आनंद से, जो इस समय बिल्कुल लाइव रामलीला मैदान में हैं, और देखते हैं क्या कर रहे हैं वहां पे वो आज। हेलो आनंद जी, कैसे हैं आप?
1: हेलो अखिल भैया, कैसे हो? नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार आनंद जी, क्या कर रहे हैं इस समय आप रामलीला मैदान में?
1: बस भैया, रामलीला मैदान में आपका फोन आया तो मैं थोड़ा साइड में आ गया हूँ। यहाँ पे तो बहुत तैयारी चल रही है, आज रामलीला की शुरुआत हो गई है और यहाँ टीम वालों ने मेरे को इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है और काफी बढ़िया जो है दृश्य देखने को मिल रहा है। आप कहाँ है इस वक्त?
0: मैं आपके पास ही हूँ, बस 100 मीटर दूरी
1: में है। अच्छा, आप लाइव है क्या?
0: हाँ, आप लाइव है आनंद जी इस समय?
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे श्रोताओं को गुड इवनिंग और जहाँ जहाँ पे मेरी आवाज जा रही है सभी को, और आप लोगों से मैं यही कहना चाहेंगे कि आज से देखिए अपने रामलीला ग्राउंड में मुरादाबाद की सबसे बड़ी और खूबसूरत रामलीला का जो है आज आगाज हो गया है। अखिल भाई, तो मैं चाहूंगा आप भी शो के बाद जरूर बता रहे हैं, भगवान राम के दर्शन करें।
0: जरूर जरूर जरूर, शो के बाद मैं जरूर रामलीला मैदान पहुंचूंगा।
1: और बाकी रामलीला के साथ साथ यहाँ झूले, मेले, खाने पीने के स्टॉल्स और मतलब खूबसूरत जो एक माहौल है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, और बाकी तो लोग मेरे इंस्टा हैंडल पे या हमारे एफएम के हैंडल पे देख सकते हैं। और अखिल जी, अगर आप आएंगे तो आप भी अपने हैंडल पे जरूर डालेंगे, मुझे ऐसा लगता है।
0: मैं जरूर डालूंगा और अपडेट देता रहूंगा। बाकी आप हैं वहाँ पे, आपने आज कोई ऐसा कोई एक दृश्य जो अभी आप देख के आए रामलीला में शेयर करना चाहेंगे?
1: वंदना का जो है यहाँ पे देखा, इसका आगाज हुआ जैसे किसी भी काम की शुरुआत गणपति महाराज के नाम से होती है, प्रथम पूज्य है वो, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है हुई, सबसे पहले गणेश वंदना हुई, उसके बाद अब भगवान श्रवण कुमार का जो है एक छोटा सा अभी दृश्य दिखाया जा रहा है, बहुत खूबसूरत सीन चल रहा है, उसके बाद जो है फिर वही दिखाएंगे आगे की कला क्या होगा आगे, मतलब रामलीला में क्या क्या और चीजें जो आगे आगे धीरे धीरे वो लोग करेंगे। आज तो फिलहाल मतलब शुरुआत हो गई है रामलीला की कहीं ना कहीं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। और श्रोताओं, मैं आप सभी से कहना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि हमारे आनंद जी के जो पिताजी हैं वो वापस आ गए हैं, और जैसा आप सभी लोगों को अपडेट है, तो आनंद जी कैसा, अब कहते हैं ना कितने 1.5 महीने बाद जब पिताजी वापस आए हैं, तो कैसा?
1: या आपको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ, सभी लिसनर्स का बहुत बहुत थैंक यू। आज हालांकि मैं रेडियो पे डिस्कस नहीं कर पाया कि मेरे पापा जी वापस आ गए हैं, बट आपने अब रेडियो पे ऑन एयर कर ही दिया है, तो ये श्रोताओं का प्यार है, उनकी दुआओं है, उनकी कहते हैं ना जब आप दिल से दुआ मांगो तो वो कबूल हो जाती है, और आप सभी की जो प्यार है, मोहब्बत है अखिल भाई, उस सब ने पिताजी को वापस सुरक्षित ले आए हैं, वो सकुशल हैं, एकदम बढ़िया हैं, और इस वक्त वो हमारे साथ ही हैं, तो ये बस प्रभु का चमत्कार है और आप लोगों की दुआओं का असर है।
0: बहुत ही बहुत, मतलब कहते हैं आनंद जी, बहुत ही अच्छा, मतलब जो फीलिंग दिल से आई है ना एकदम कि हाँ कुछ हुआ है, जो अब हम दिवाली मनाएंगे, अब हम आनंद जी आपके साथ सच में दिवाली मनाएंगे।
1: बिल्कुल, अब हमारी दिवाली तो भैया कल ही हुई है जब हमारे फादर साहब अपने घर को लौटे, है ना। कहते हैं ना कि इंसान का सबसे बड़ा पर्व होता है जब उसके घर पे वो कोई व्यक्ति खोया हुआ आ जाए, वो बहुत बड़ी खूबसूरत का एक मैं आपको शब्दों में नहीं बया सकता, बहुत ही खूबसूरत चीज होती है भैया, आपको पता है ना।
0: हम सब
1: राम भी 14 वर्ष के बाद जब आए तो दिवाली मनाई गई।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
1: बस मेरे घर में भी वैसे ही दिवाली सेलिब्रेट हो रही है और एक तरीके से खुशियां सेलिब्रेट हो रही है, और मैं अपने लिसनर्स के साथ भी सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और मैं तो कहूंगा आप शो के बाद आइए, कहीं चलते हैं, स्वीट खा के आते हैं।
0: जरूर जरूर जरूर आऊंगा।
1: और जो श्रोता है वो भी अपने घरों पे कुछ लेकर जाएं, देखिए मतलब बढ़िया, अब तो फेस्टिवल ओकेजन आने वाला है वैसे भी और 2-3 दिन के बाद।
0: हाँ जी, तो जरूर हमारे सभी श्रोताओं जो हैं खूब अपना मुंह मीठा करेंगे, और मैं आता हूँ शो के बाद जरूर आपसे।
1: हाँ बिल्कुल, और बाकी सभी श्रोताओं को एक बार फिर से मेरी तरफ से आने वाले नवरात्रों की, आने वाले जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनकी शुभकामनाएं, बाकी तो सुबह मिलेंगे प्रोग्राम में। और आपके प्रोग्राम में बस यही कहना चाहूंगा कि अखिल भैया के साथ ऐसे जुड़े रहिए दिल से दिल तक, और जब भी मौका मिले रामलीला ग्राउंड में रामलीला देखने जरूर आइए, और हो सकता है हम लोग भी वहां आपको भटकते हुए मिल जाए।
0: हाँ, तो और जब भी आप भटकते हुए पहुंचे वहां पे तो कम से कम हमें अपडेट जरूर दें, हम सभी आपके थ्रू, आपके जरिए हम एक बार कहते हैं ना।
1: मैं कोशिश करूंगा अखिल भाई कि हम यहाँ के सदस्यों से भी लाइव एक्सक्लूसिवली बातचीत सुनवाएं, क्या कुछ स्पेशल है इस तरीके से जो भी चीजें चल रही है ना।
0: बिल्कुल जरूर, बिल्कुल जरूर। तो चलिए
1: अखिल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऑन एयर किया, और मैं थोड़ा रामलीला का और आनंद ले लूं अंदर चल के।
0: आप आनंद लीजिए, और हमने भी आपकी बातों से बहुत आनंद लिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि भैया।
0: शुभ रात्रि, शुभ रात्रि,
1: थैंक यू भैया।
0: तो श्रोताओं, हमारे साथ थे आनंद जी, जिन्होंने सारी बातें बताई कि रामलीला मैदान में इस समय रामलीला चालू हो गई है, और आप भी थोड़ा सा समय निकाल के अगर हो तो आएं और बच्चों के साथ, जो कहते हैं ना कि जब बच्चे देखते हैं और अपने सामने उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका अलग ही कुछ मजा होता है। तो चलिए तब तक एक छोटे से म्यूजिक ब्रेक के बाद खूब सारी बातें करेंगे। 10:02 हो गए हैं, अभी हम हैं 10:30 तक, क्योंकि भाई साहब जब आए हैं देर से तो देर तक खर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। तब तक एक गाना सुनते हैं और खूब दिल की बातें समझते हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जहां हिसाब नहीं होता, कौन कितना देता है इसका कोई जवाब नहीं होता। तो साहब अपने इन रिश्तों को बिल्कुल भी, मतलब कहते ना, बिना हिसाब किताब के ही चलाते रहिए और अपने दिल की बातें जो है ना, उन दिल की बातों को सुनिए, ना कि औरों के दिल की बातों को। तो चलिए बात करते हैं हमारे लिसनर से, और क्या कर रहे हैं वो उनसे ही जानते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, क्या नाम है आपका?
1: शमसुल इस्लाम।
0: शमसुल इस्लाम जी, क्या काम करते हैं आप?
1: घर पे हैं, काम तो कोई खास नहीं है।
0: काम कोई खास नहीं है, ये घर पे ही है, यही बहुत बड़ा काम है। तो आज क्या है जो दिल से निकला हुआ है और आपने जो कॉल लगाई है, इतने देर से हमने आपको कह रखा है कि भैया अपनी दिल की बात निकाल के रखो, जैसे ही आप ऑन एयर होंगे तो आपकी दिल की बात भी निकालनी है हमें। तो क्या है जो कुछ कहना चाहेंगे आप? नींद तो नहीं आ रही है कहीं इस्लाम जी आपको?
1: नींद नहीं आ रही सर।
0: नींद भगानी पड़ेगी आपको, अभी तो 10:10 ही हुए हैं। कोई बात कोई कहना चाहेंगे या कोई ऐसी बात जो बहुत दिल के करीब हो, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताई मुरादाबाद से जुड़ी हुई उनकी दिल की बात है, तो कोई ऐसी भी आपकी
1: बात सुनकर दिल बाग बाग हो गया बेचारे। अपने पढ़ाई के लिए कहाँ कहाँ पढ़े हैं बेचारे, अमेरिका में यूएसए में पढ़े हैं,
0: तो
1: और वो कह रहे हैं मुरादाबाद के सिरों पर रहने वाले हैं गांव के एक, तो बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुनते, बहुत दिल को खुशी महसूस हुई।
0: आप
1: भी ऐसे ऐसे बनते की बहुत अच्छे से यानी उन्होंने बात।
0: आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जिसका नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आज बताना चाहेंगे?
1: ऐसे इंसान के इंसान तो सब अच्छे होते हैं, मगर यह जो भी भगवान ने बनाया है, जिसे भी सब अच्छे अपने साथ में डाल के बनाया है।
0: बिल्कुल सही कहा, मगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त, कहते हैं ना कोई शरारती दोस्त भी होता है, अरे उसका नाम ले लिया तुमने और जैसे उसका नाम लिया तो छोटी सी स्माइल आपके चेहरे पे आ जाती है, तो ऐसा कोई दोस्त है आपका जो शैतानी करता रहता है, पता चलता है उसका नाम आते ही उसने जो हरकत की आपके साथ या आपने उसके साथ कोई शैतानी जो की वो याद आ जाती है और स्माइल आ जाती है चेहरे पे आपके?
1: हमारा एक दोस्त है जी, वसीम भाई नाम है, जो हमारे लिए यानी इतना भरोसा है, जान भी दे देगा।
0: क्या बात है साहब, जो इतना भरोसा है ना, इसे कहते हैं कि वो दिल जिगर जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए, है ना
1: जी।
0: क्या बात, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप?
1: गाना सुनना है, दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
0: सही है सर, तो वसीम भाई से ही पूछ लीजिएगा कि वो तो आपके लिए जान दे देंगे, क्या आप वसीम भाई के लिए जान दे देंगे?
1: अरे बिल्कुल साहब, अगर वो जान मांगेंगे तो जान तैयार है।
0: चलिए, तो जान माल की बात हम आपके साथ करते रहेंगे, और आपने जो गाना भी आपने चूज किया है वो भी बहुत बढ़िया चुना है, दिल ने ये कहा है दिल से, तो ये गाना किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: हम सुनेंगे, तालिब भाई है, परिवक्त कामिल भाई है, वसीम भाई है, सबके साथ में सुनेंगे,
0: सभी के साथ सुनेंगे।
1: तो
0: चलिए ये गाने को हम फरमाइश को पूरी करते हैं और आपके दिल की आवाज भी इसमें निकालते हैं। धन्यवाद शमसुल भाई। तो शमसुल जी जो है अभी आराम फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल ने ये कहा है दिल से, ये ज़रूर हमारे लिए प्ले कर दीजिए। तो होता है साहब, कोई ना कोई आपके लिए इतना करीब आपके होता है, जब आप उसका नाम लेते हैं या जैसे ही उसका नाम आपके जहन में आता है तो प्यारी सी स्माइल चेहरे पे अपना आप आ जाती है। तो चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं और फिर आपकी भी फरमाइश को पूरी करते हैं जो दिल से निकली हुई है। 9837896896 पर इस छोटे से एड ब्रेक के बाद।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

साहब थोड़ा सा हो गया है साइलेंट, क्योंकि कभी कभी आदमी हैंग नहीं होता साहब, सिस्टम भी हैंग हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें हो रही है ना खूब सारी दिल की, और वो भी आपके और मेरे नहीं, अपने अपने दिल की साहब। अभी हमारे पास कॉल आया था हमारे नरेंद्र जी का, जो खूब सारी मस्त भरी बातें करते हैं, और उनके साथ उन्होंने अपनी फरमाइश बताई थी। तो ज़रूर नरेंद्र जी आपकी वो फरमाइश पूरी करेंगे और आपसे अगली बार खूब सारी बातें भी करेंगे। और अब बारी है आपके प्यार की, क्योंकि दिल से दिल तक का असली मज़ा तभी है जब इसमें आपकी आवाज़, आपके मैसेज और आपकी फरमाइश शामिल हो, जिसे आज कोई गाना डेडिकेट करता है और जैसे कोई नाम भेज के लिख देता है साहब हमारी तरफ से। तो चलिए पढ़ते हैं मैसेज कौन कौन से आए हैं। सबसे पहला मैसेज आया हमारे पास, सूरज निकलता है पूरब की ओर से, अखिल सर जी को प्रमोशन होने की बधाई हमारे पूरे परिवार की ओर से। हमारे पूरे परिवार की तरफ से अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार, यादव फैमिली लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा गली नंबर 2। धन्यवाद यादव फैमिली का। और ये जो प्रमोशन वाली बात करी है ना, ये पहले मैं खुद ही सोचूंगा कि मेरा ऐसा कौन सा प्रमोशन हुआ जो मुझे ही नहीं पता है। तो चलिए आपका भी फेवरेट गाना जो है ना मेला दिलों का आता है, ये जरूर हम प्ले करेंगे और खूब सारी बातें भी करेंगे। अगला मैसेज, एक शायरी हमारे पास आई है, इनका नाम पढ़ते हैं जरा क्या कह रहे हैं ये। खुशियां बांटने से कम नहीं होती, मुस्कान देने से चेहरे कम नहीं होते, कुछ पल किसी के साथ हंस लिया करो, ये पल जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं। नगमा फ्रॉम रामपुर। क्या बात है नगमा जी, आपने इतनी बढ़िया शायरी लिखी है, एकदम कहते हैं ना एकदम बहुत बढ़िया नगम भी लिखी है। तो चलिए उसी के ऊपर एक बात हम आपके इसी शायरी के जवाब से देना चाहेंगे। कल की चिंता में आज मत खो जाना, बीती बातों में खुद को मत उलझाना, जो पल मिला है उसे जी लो दोस्तों, जिंदगी दोबारा ये पल नहीं लाएगी। तो हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना इस पलों को अपने जी लो अच्छे से और मुस्कुरा लो। तो चलिए एक छोटे से गाने के बाद आपसे करते हैं फिर से ढेर सारी बात। अभी हुए हैं 10:23 और अभी भी हम एक कॉल बढ़िया से जो आपके दिल के करीब हो वो लेंगे और आपकी दिल की बातों को भी सुनेंगे साहब। तो तब तक ये गाना सुनते हैं और थोड़ा सा खो जाते हैं।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। खूब सारी बातें हुई और पता ही नहीं चला कि ये एक घंटा भी कैसे निकल गया। जाने से पहले एक प्यारी सी और आखिरी शायरी आपके लिए। महफिल रोज नहीं सस्ती, दोस्त रोज नहीं मिलते, कुछ पल जो मिल जाए हंसने के उन्हें यूं ही जाने नहीं देते। जी हाँ, चेहरे पर मुस्कान रखिए, दिल में अरमान रखिए, ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो जीने का अंदाज शानदार रखिए। तो दोस्तों, एक घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला, लेकिन याद रखिए, टेंशन आए तो मुस्कुरा देना, दिल भारी हो तो किसी अपने से बात कर लेना। 9837896896 यहाँ भी हल्का हो सकता है, और ज़िंदगी मुश्किल लगे तो थोड़ा मस्ती कर लेना, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं, ज़िंदगी का नाम है जीना, मुस्कुराना और अपनों के साथ खुशियाँ बांटना। तो मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं फिर नई एक शाम, एक नई शाम को, और नई शायरी, नई मस्ती और नई मुस्कान के साथ। तब तक दिल खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए दिल से दिल तक अखिल संग। तो चलिए साहब, मेला लगा है तो इसी बात पे मेले वाला गाना भी हो जाए, और कल मुलाकात होगी आपसे ठीक इसी समय पे। आज का शो स्पॉन्सर था ग्रिल्स तंदूरी जंक्शन MDA कांट रोड मुरादाबाद की तरफ से। कहते हैं आइए आप और खाइए चाप। तो चलिए साहब, इसी के साथ लेते हैं इजाज़त और आपसे अलविदा, बाय बाय।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: Now listen, get up, that's right.